श्रोताओं, सुप्रभात। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026 ईस्वी। प्रातः के 5:48 हो चुके हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम चिंतन।
1: जीवन में जो कुछ भी स्थितियां हैं उन्हें खेल खेल में निभाया जाए तो हम देखेंगे कि हमारा दुख भी सुख में बदलेगा। ये जीने के अंदाज हैं जो मनुष्य को सीखने को मिलते हैं शास्त्रों से, सत्संगों से,

0: कब्र साधकों के नजदीक बैठने से। जैसे जैसे हम अपने दोषों को छोड़ते हैं हमारा बल बढ़ता जाता है, हम छोटी मोटी बाधाओं से पार होते जाते हैं, हमारी सहन शक्ति बढ़ती है और आत्मिक बल भी बढ़ता है। कहा जाता है मानव परिस्थितियों का दास है, यानी कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और वो जिस प्रकार चाहती हैं मनुष्य को चलाती हैं। हम परिस्थितियों के मकड़ जाल में उलझते जाते हैं, लेकिन यदि परिस्थितियों को हम भाग्य का एक खेल मानकर देखें और उनके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करें, उनसे संघर्ष करें, विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य न छोड़ें, तो हम पाएंगे कि हमारी जो बाधाएं अभी हमें बहुत ही कठिन लग रही हैं वो बाद में आसान दिखेंगी। भगवान सच्चिदानंद सद्गुरु के रूप में मानव की शक्ति के स्रोत होते हैं। जीवन में मनुष्य को सत्य, दान, कर्मठता, दया, क्षमा जैसे सद्गुणों को अपनाते हुए किसी की निंदा नहीं करना, जिसे अनुसूया कहते हैं, इस गुण को अपनाना चाहिए। किसी के गुणों की प्रशंसा करें, निंदा करने की प्रवृत्ति से बचें, सद्गुण के ग्राहक बने, इसे कभी छोड़े नहीं। जो सद्गुण हैं वो मानव की महान शक्तियों के स्रोत हैं। विशेष करके क्षमा करने का जो गुण है वो मनुष्य को बहुत ऊंचा उठा देता है। वैसे कहा गया है क्षमा उसी भुजंग को शोभती है जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। कहने का आशय ये है कि क्षमा यदि आप करते हैं किसी को, तो ये भी जरूरी है कि आपके अंदर वो शक्ति हो कि आप किसी का नुकसान कर पाए, तभी आपको क्षमा शोभा देती है। यानी कि अपने व्यक्तित्व को, अपने आत्मबल को इतना अधिक बढ़ाना है कि हम में ये आत्म सम्मान का भाव आ जाए कि हम किसी को क्षमा करने के गुण से आप्लावित हो जाएं। मनुष्य के अंदर जब ये गुण आ जाता है तो व्यक्तित्व में चमक पैदा हो जाती है। मनुष्य को सद्गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए। बनावटी जीवन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम इससे जितना ही बचेंगे उतनी ही शांति की ओर जाएंगे। हमारी ज़िंदगी जितनी बनावटी, दिखावटी, कृत्रिम होगी उतने ही हम अशांत रहते हैं, और हम जितने सीधे, सरल, सच्चे ढंग से जीवन निर्वाह करते हैं उतने ही शांत रहते हैं। आवश्यकताएं तो अनंत हैं, कभी समाप्त हो सकती हैं क्या? आज हमें कहीं अगर एक बित्ता जगह मिल जाए तो हम एक हाथ की कामना करते हैं, एक हाथ मिल जाए तो 10 हाथ की, और ये हमेशा बढ़ती जाती है। ज़रूरतें कभी सिमटती नहीं, सदैव सुरसा की तरह मुँह फाड़े रहती है। ज़रूरत है कि इसे हम छोटा करें, तब हम जीतेंगे। इससे जीवन की छोटी छोटी कमजोरियां घटेंगी, एक एक करके समाप्त होती जाएंगी। हमारी कामनाओं का जो आवेग है उसे अगर हम रोक लें तो आगे बढ़ते जाएंगे। अपने अभिमान को विनम्रता से जीतना होगा, उन्नति होगी। ईर्ष्या द्वेष को सम्यक दृष्टि से देखना होगा, सब अपने नजर आएंगे। इस दुनिया में कौन पराया है, सब तो उसी आत्मा के अंश हैं, तो फिर बैर किससे करना। प्रसन्नता यहीं शुरू होती है, भक्ति यहीं शुरू होती है। परिस्थितियां जो भी हो उनके साथ तालमेल बिठाकर आवश्यकताओं को कम करते जाएं तो सुखी होने का इससे उत्तम मार्ग कोई दूसरा नहीं है, और इसी को भक्ति प्राप्त करने का साधन मानते हैं। ये पहली सीढ़ी है ईश्वर को पाने की। ऋषि मनुष्यों ने सूत्र कहा है, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आवश्यकताओं को सीमित करें। मानव जीवन में सद्गुणों का बड़ा महत्व है। गुणों को प्राप्त करें, क्रोध को जीतें, बैर का परित्याग कर दें, कामनाओं का त्याग कर दें। भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है, ईश्वर की ओर जाने का रास्ता यही है। आइए इस दिशा में सोचें, विचार करें।
1: ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है किसान श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि चर्चा।
2: आजुक कृषि चर्चा के संग हम आशुतोष कुमार झा। आजुक चर्चा का विषय है उर्वरक का शुद्धता का जांच आवश्यक है। किसान भाई लोकन, अपना सभक देश एकटा कृषि प्रधान देश है और देशक अधिकांश आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते है। नीक फसल प्राप्त करवाक लेल उन्नत बीया, पटौनी, आधुनिक कृषि तकनीक संग ही संतुलित उर्वरक का महत्वपूर्ण योगदान होते है। उर्वरक पौधा सभक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते है, जाहि से

0: हुनका में नीक वृद्धि होइत अछि और उत्पादन में वृद्धि सेहो होइत अछि। लेकिन यदि किसान भाई मिलावटी या घटिया गुणवत्ता वाला उर्वरक का उपयोग करे छथि ते कर सीधा असर फसिल माटि आ किसान का आय पर पड़ैत अछि। ताहि कारणे उर्वरक सभक शुद्धता के जांच केनाय अत्यंत आवश्यक अछि। किसान भाई लोकनि, उर्वरक का मुख्य उद्देश्य माटि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर आ आन आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व सबके पूर्ति केनाय अछि। यदि उर्वरक निर्धारित मानक का अनुरूप शुद्ध नहीं अछि तखन पौधा का पर्याप्त पोषण नहीं भेट पाबैत अछि। परिणाम स्वरूप फसलक वृद्धि रुकि जाइत अछि, उत्पादन कम भ जाइत अछि और किसान भाई का आर्थिक नुकसान उठबय पड़ैत अछि। किसान भाई लोकनि, वर्तमान समय में बाजार में नकली और मिलावटी उर्वरक समस्या सेहो सामने आबैत रहैत अछि। कई एक बेर किसान भाई आकर्षक पैकेजिंग और
1: कम दाम के नाम पर एहन उर्वरक बेच देल जाइत अछि जाहि में आवश्यक पोषक तत्व निर्धारित मात्रा में नहीं होइत अछि। एहन उर्वरक का प्रयोग केला सँ माटिक उर्वरता धीरे धीरे घटि सकैत अछि, संगहि फसलक गुणवत्ता सेहो प्रभावित होइत अछि। ताहि कारणे किसान भाई के केवल प्रमाणित विक्रेता सबसँ उर्वरक किनबाक चाही और कीनैत समय बिल अवश्य लेबाक चाही। किसान भाई लोकनि, उर्वरक शुद्धता के जांच के लेल पैकेट पर अंकित निर्माता का नाम, उत्पादन तिथि, बैच नंबर, समाप्ति तिथि, संगहि पोषक तत्व का मात्रा अवश्य देखवाक चाही। पैकेट पर सरकारी मानक सब और गुणवत्ता संबंधी जानकारी सेहो अंकित हेबाक चाही। यदि कोनो उर्वरक गुणवत्ता पर संदेह हो तखन ओकर जांच संबंधित कृषि विभाग वा फिर अधिकृत प्रयोगशाला सँ कराओल जा सकैत अछि। एहिसँ किसान भाई के सही जानकारी भेटैत अछि और नकली उत्पाद सब पर रोक लगेबा में सहायता सेहो भेटैत अछि। किसान भाई लोकनि, सरकार और कृषि विभाग समय समय पर उर्वरक सभक नमूना के जांच करैत अछि, संगहि मिलावटी उर्वरक बेचय वाला सभक विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सेहो करैत अछि। एकर बावजूद किसान भाई में सेहो जागरूकता भेनाय सबसे महत्वपूर्ण अछि। यदि किसान भाई स्वयं सतर्क रहता आ गुणवत्ता के जांच करैत समय नीक उर्वरक किनता और गुणवत्ता के जांच कए कऽ उर्वरक किनता तखन धोखाधड़ी के संभावना बहुत बेसी कम भ जाइत अछि। किसान भाई लोकनि, उर्वरक संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग सेहो एकरे संग आजुक कृषि चर्चा के विराम दैत आशुतोष कुमार झा के विदा देल जाओ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे किसान श्रोताओं को हम संबोधित हमारा कार्यक्रम कृषि चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब हिंदी में समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
4: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी.
5: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर

0: काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुँचा सकेंगे।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिग्रेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
3: स्वास्थ्य चर्चा के इस अंक में हम हाजिर हैं डॉक्टर रमन कुमार वर्मा जी के साथ, जो प्रख्यात नेत्र रोग चिकित्सक हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसका उपचार वो कैसे करे। डॉक्टर साहब,
4: देखा जाए मोतियाबिंद का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दवा से संभव नहीं हो पाया है। हालांकि दावे किए जाते हैं, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। मोतियाबिंद जब मरीज को होने लगे या हो गया है और मरीज को अपना काम करने में कठिनाई हो और चश्मे से आँखों की रोशनी, दृष्टि उतनी न बढ़े जिससे कि वो देख पाए, तो उसे नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में ऑपरेशन ही उपचार रह जाता है, चाहे मोतियाबिंद कच्चा हो या पका हो। ये पुराना कंसेप्ट है कि जब मोतियाबिंद पूरी तरह पक जाए तभी उसका ऑपरेशन कराना चाहिए।

0: यानी कि चश्मा आपके काम लायक नहीं रह गया, कितना भी पावर बढ़ा लो आपकी दृष्टि अगर नहीं आ रही है, आप चीजों को सही ढंग से नहीं देख रहे हो, तो आप तय मानो कि आपका ऑपरेशन कराना ही एकमात्र विकल्प आपके पास बचता है मोतियाबिंद का।
1: जी हाँ, पकने तक इंतजार नहीं करना चाहिए, और अब तो यह ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित हो गया है।
0: क्या इसमें मौसम का भी कुछ असर होता है? कुछ लोग कहते हैं जाड़े में ऑपरेशन कराना चाहिए या गर्मी में नहीं कराना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: नहीं, वैसी बात नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन 12 महीने हो सकता है, लेकिन हाँ, चूंकि मरीजों को हिदायत दी जाती है, सभी मरीजों को, मोतियाबिंद के मरीजों को, कि ऑपरेशन के बाद 10-15 दिन सर से न नहाएं, इसलिए कुछ मरीज कठिनाई अनुभव करते हैं और उनकी मंशा होती है कि जाड़े में ही ऑपरेशन कराएं, लेकिन ये कोई मोतियाबिंद के ऑपरेशन को टालने का कारण नहीं है कि सिर्फ जाड़े में ही इसे इसका ऑपरेशन कराया जा सके।
0: आजकल लेंस वगैरह प्रत्यारोपित किया जाता है, उससे क्या आंखों को नई दृष्टि मिल जाती है?
1: हाँ बिल्कुल, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है विगत 2-3 दशकों से, और अब लेंस प्रत्यारोपण के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है, और इसके साथ ही एक नए विजुअल वर्ल्ड की शुरुआत हो जाती है मरीज के लिए। पहले जो ऑपरेशन होता था उसमें मरीज को मोटा चश्मा लगाना पड़ता था, बाएं दाएं देखने के लिए उसे सर घुमाना पड़ता था, हर चीजें बड़ी नजर आती थी, लेकिन अब जो ऑपरेशन हो रहा है लेंस प्रत्यारोपण के साथ, उसमें ऐसी बात नहीं रह गई है। लेंस प्रत्यारोपण में हमारे देश में, हमारे राज्य में लगभग सभी जिला और अनुमंडल स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा यह ऑपरेशन बहुत ही कुशलता से और सफलता के साथ हो रहा है, और उसमें भी एक नई पद्धति आ गई है जिसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, वो है फेको इमल्सिफिकेशन पद्धति। ये नवीनतम पद्धति है लेंस प्रत्यारोपण का।
0: इसमें क्या होता है?
1: इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन में चीरा जो लगाते हैं इंसिजन, वो बहुत छोटा लगाने की जरूरत होती है, 2 या 3 मिलीमीटर, और ऑपरेशन के बाद टांके की जरूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही पतला 1 मिलीमीटर का टिटेनियम नीडल होता है जिसमें प्रति सेकेंड 40,000 कंपन पैदा होते हैं, इसके द्वारा ही यह ऑपरेशन संपन्न किया जाता है। अंदर से कॉर्टिकल मैटर न्यूक्लियस निकाल देने के बाद फोल्डेबल लेंस डाल देते हैं, मरीज को 2 घंटे के बाद घर भेज दिया जाता है, मरीज को कोई कठिनाई नहीं होती है, इसमें समय भी पहले के मुकाबले कम लगता है, और रोगी का पहला रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है।
0: और कुछ क्या ऑपरेशन के पहले या बाद में कोई सावधानी बरतनी पड़ती है क्या?
1: जी हाँ, ऑपरेशन के बाद हम लोग आमतौर पे रोगियों को हिदायत देते हैं कि उन्हें काला चश्मा पहनना है, और जो दवाई विशेषज्ञ उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें आंख में अवश्य डालना चाहिए, आंखों को कभी नहीं मलना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि आंखों में चोट न लगे। ऑपरेशन किए गए आंख की तरफ करवट लेकर 2 या 3 सप्ताह तक सोने से हम लोग मना करते हैं, और भारी वजन उठाने से भी हम लोग मरीज को रोकते हैं।
0: तो अभी आपने डॉक्टर आर के वर्मा से सुना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन अगर आप कराते हैं तो क्या क्या सावधानी रखें, और इस ऑपरेशन की जो नवीनतम तकनीक है वो भी हमारे पास अब उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि अनुमंडल स्तर तक इसके विशेषज्ञ जो कृत्रिम लेंस है उसका प्रत्यारोपण करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ये था आज का स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना की शुरुआत कर रहे हैं इस देश वंदना से।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

रामचरितमानस गान अभी आपने सुना आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के विषय में। अब से कुछ देर बाद यानी प्रातः 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। समाचार प्रभात आप सुनते हैं प्रातः 8:00।

प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 8:48 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होता है 9:10 पर। 10 बजे आनंद ले सकेंगे आप फिल्म संगीत का और 10:30 पर सुनेंगे कुछ भक्ति संगीत। प्रातः 11 बजे आप सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। 11:30 से 12:30 पर आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। 12:30 पर आप सुन सकते हैं श्रोता बहनों को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार। आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद होगा 1:15 पर। दोपहर 2 बजे प्रादेशिक समाचार और 2:10 पर रोजगार सूचना। दोपहर 3:00 पर आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का और 3:00 आप प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत कुछ गुजराती गीत सुनेंगे सुरेश रावल के स्वर में। ये थे हमारे इस सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा की शुरुआत शाम 5:00 युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवाणी के साथ की जाती है, जिसमें आज आप सुनेंगे कार्यक्रम तरुण मिथिला। शाम 5:40 पर आनंद ले सकेंगे आप कुछ नए फिल्मी गीतों का। शाम 6:10 पर सुनेंगे विद्यापति गीत और 6:25 पर मैथिली संवाद। 6:30 पर गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कार्यक्रम झरोखा और खेती गृहस्थी का समय होता है शाम 7:00। 7:30 पर जिले की हलचल के साथ प्रादेशिक समाचार। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे रात्रि 8:00 और रात्रि 8:15 पर होगा हमारा पर्यावरण। पर समाचार संध्या 9:00 न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू खबरें। रात्रि 9:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृति भारती और रात्रि 10:00 से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। अब आप सुनेंगे समाचार क्रमशः संस्कृत और हिंदी में। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार समझौते की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और

0: और मजबूत होंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर 30 जुलाई को मतदान होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मेरिनो ने 28वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: सबके सुविचार अहाँ सुना देबनि तऽ ओ आओर अति उत्तम भऽ जेतै।
1: बिल्कुल, जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है उसे जहर की तरह अस्वीकार कर दे, ये कथन है स्वामी विवेकानंद का।
0: बिल्कुल, देखियो जे अपने सब विचार ने दुर्वचन किनको कही ने दुर्वचन किनको से सुनी।
1: बिल्कुल,
0: दुर्वचन में दूर अबै छे यानी अपना आप के अपनो से दूर केनाई, ओई अपन से अपना के दूर केनाई। जे भी चीज छे शारीरिक और बौद्धिक विकास जे अपन सबके छे ओ आध्यात्मिक विकास पर टिकल अछि और ओ अगर कमजोर बनि जाइत अछि तो ओ जहर के समान होइत अछि, ओकरा अपने सब को अस्वीकार करबा के चाही।
1: और बिल्कुल, और ये भी कहा गया है कि हम जो खुद के लिए चाहते हैं जैसा व्यवहार वैसा ही व्यवहार हमें सामने वाले के साथ दूसरों के साथ भी करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और आजुक दिन में की सब अछि खास से हो श्रोता सबको सुना दै छियन।
1: बिल्कुल,
0: 11 जुलाई 1922 ईस्वी में हॉलीवुड बाउल के आरंभ भेल छल। 2002 में चांग सांग दक्षिण कोरिया के पहिल महिला प्रधानमंत्री बनल छलथि। 2003 में लाहौर में दोस्ती बस आ दिल्ली से सदाए सरहद बस के परिचालन भेल छल। 11 जुलाई 2007 में चर्चित चित्रकार M.F. हुसैन न्यूयॉर्क के कला प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने छलथि। जौ आजुक दिन जन्म लेल व्यक्ति पर दृष्टि डाली तो 11 जुलाई 1956 ईस्वी में अमिताभ घोष जे अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार छथि हुनकर जन्म भेल छल। 1920 ईस्वी में B.R. नेदुन चेजियन तीन बेर तमिलनाडु राज्य के जे कार्यवाहक मुख्यमंत्री छलथि हुनक जन्म भेल छल। 1902 ईस्वी में सरदार बलदेव सिंह जे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राजनीतिज्ञ आ प्रथम रक्षा मंत्री सेहो छलथि हुनक जन्म भेल छल। 11 जुलाई 1899 ईस्वी में C.S. वेंकटाचार राजस्थान के भूतपूर्व दोसर मुख्यमंत्री छलथि हुनक जन्म भेल छल। 1857 ईस्वी में सी शंकरन नायर भारतीय न्यायाधीश आ राजनेता छलथि हुनक जन्म भेल छल। आजुक दिन निधन के दिस जँ देखी तो 11 जुलाई 2003 ईस्वी में भीष्म साहनी जे भारतीय लेखक छलथि हुनक निधन भेल छल। 1912 ईस्वी में फर्डिनांड मोनोयर जे प्रसिद्ध फ्रांसीसी नेत्र विशेषज्ञ छलथि हुनक जन्म निधन भेल छल। 1957 ईस्वी में आगा खां तृतीय सियाओ के निजारी इस्माइली मत के आध्यात्मिक नेता रह चुकल छथि हुनक निधन भेल छल। 2011 ईस्वी में सेकेंड लेफ्टिनेंट रामा राधोबा राणे जे परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक छलथि हुनक निधन आजुक दिन भेल छल। और आज जे महत्वपूर्ण दिन अछि ओ अछि विश्व जनसंख्या दिवस जे प्रत्येक जुलाई 11 तारीख के मनायल जाइत अछि। तो ई छल आजुक दिन में दिन किया अछि अपने सबके खास और चर्चा अन्य छी सेहो कविता।
1: बिल्कुल,
0: फिल्म संगीत मैथिली सुगम संगीत सब श्रोता सबके समक्ष धीरे धीरे परसब, मुदा एखन समय भऽ गेल अछि मैथिली सुगम संगीत के, तऽ आओ पहले सुनि लै छी मैथिली सुगम संगीत।
1: बिल्कुल, श्रोताओं को सुनवाते हैं ये मैथिली सुगम संगीत।

0: स्वागत है पुनः श्रोताओं का इस मैथिली सुगम संगीत के बाद कार्यक्रम नमस्कार मिथिला में।
1: आ देखियो जो बसहा बरदिया पर जो गीत सुनेलहुँ बहुत निक लागल, किएक तऽ देखियो जे ईश्वर के आराधना हुए या मन में शांति के आवश्यकता हुए तो भगवानक गीत सुन ली,
0: वो भी सुबह सुबह,
1: ओहो सुन सुबह सुबह। और आशा है जो श्रोता सब अहाँ के धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जे अपन कार्यक्रम छै ने से अपन निर्धारित समय के साथ चलत रहे छै, तो एखन समय भ गेल छै
0: हालचाल का, तो हालचाल लेकर उपस्थित हैं अंजनी जी।
1: धन्यवाद कविता जी, आप सुनो हमरा से हालचाल। शुक्र दिन भोर में भेल बरखा से शहर के जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिलक। आधा घंटा के तेज बरखा में शहर के ठाम ठाम जल जमाव भ गेल अछि, जाहि से स्थानीय से ल क आवाजाही करय वाला लोक सब के परेशानी का सामना करय पड़ैत अछि। ओतबे नहि, शहर में बनि रहल एलिवेटेड आर ओ बी सड़क नाला निर्माण नारा के निर्माण स्थल सब के हालत और खराब अछि। यात्री सब के लगातार बढ़ रहल भीड़ असुविधा के ल क रेलवे स्पेशल ट्रेन सबक परिचालन के अवधि बढ़ा दिलक अछि। ई निर्णय दरभंगा मधुबनी आ झंझारपुर के यात्री सब के लेल राहत के विषय अछि। समस्तीपुर मंडल के दिस जारी विज्ञप्ति के अनुसारे ए ट्रेन सबक परिचालन पूर्व निर्धारित अवधि से आगू

0: ओ बढ़ा कऽ जुलाई के अंत धरि कयल गेल अछि। हायाघाट प्रखंड में शुक्र दिन नव सीओ आनंद कुमार मंडल अपन योगदान देलनि। एहि अवसर पर ओ कहलनि जे पारदर्शी आ समयबद्ध तरीका सँ सब काज होयत, एना में जनता के कोनो तरहक परेशानी के सामना नहि करय पड़त। एहि अवसर पर आर ओ महेश्वर राम हुनका बुके भेंट कऽ सफल कार्यकालक कामना कयलनि। सुपौल बाजार स्थित डुमरी रोड में प्रथम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में एम्स से जुड़ल डॉक्टर विश्वनाथ झा मेडिसिन विभागक जिम्मेदारी सम्हारलनि। आब बिरौल आ आसपास के मरीज सबके बुखार, मधुमेह, बीपी, थायराइड, श्वसन रोग सहित अन्य जटिल बीमारी सबके विशेषज्ञ से उपचार एतौ भऽ जाय। डीएमसीएच में चिकित्सा व्यवस्था के और अधिक सुदृढ़ बनेबाक लेल स्वास्थ्य विभागक पहल आब नीक देखाय लागल अछि। विभाग के दिस सँ नव नियुक्त कयल गेल 32 गोट सीनियर रेजिडेंट चिकित्सक सब में से एखन धरि करीब 20 गोट योगदान देलथि अछि। योगदान देबय वाला चिकित्सक सबके अस्पताल प्रशासन हुनक विशेषज्ञता के अनुसार विभिन्न विभाग में तैनात कऽ देलनि अछि। एहिसँ मरीज सबके बेहतर स्वास्थ्य सुविधा समय पर भेटत। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आ दरभंगा कारागार के संयुक्त तत्वावधान में कारागृह परिसर में नशा मुक्ति सह तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन विषय पर 7 दिवसीय कार्यक्रम विधिवत उद्घाटन कयल गेल। उद्घाटन कारागृह अधीक्षिका स्नेहलता आ ब्रह्म कुमारी दरभंगा के मुख्य संचालिका आरती बहिन कयलनि। एहि अवसर पर अधीक्षिका कहलनि जे कारागृह के बंदी भाई बहिन के जीवन में सुख शांति केना आयत आ ओ केना नशा आ तनाव से मुक्त रहता, एहि उद्देश्य से ब्रह्म कुमारी जी के सहयोग से ई कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल अछि। रुकि रुकि कऽ भेल बरखा सँ शुक्र दिन जतऽ धूप आ उमस भरल गर्मी सँ राहत भेटल, ओतहि धानक बिचरा देल किसान सभक चेहरा पर उदासी सेहो देखल गेल। ओतहि कतेक ठाम बिचरा रोपनी योग्य भऽ गेल मुदा मजदूर नहि भेटलासँ रोपनी मे देरी भऽ रहल अछि, जाहिसँ किसानक परेशानी बढ़ि गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पीजी भूगोल विभाग में 31 अक्टूबर से 1 नवंबर धरि एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स बिहार आ झारखंडक वार्षिक सम्मेलन आ सेमिनार होयत। तैयारी सबके लऽ कऽ 16 जुलाई के बैसार होयत। विभागाध्यक्ष आ सेमिनार संयोजक डॉक्टर अनुरंजन अंगीभूत आ संबद्ध कॉलेज सबके भूगोल विभागक शिक्षक सबके बैसार में सम्मिलित होयबाक आग्रह कयलनि अछि।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

शेष हालचाल विरामक पश्चात बेनीपुर प्रखंड में मदर टेरेसा एकेडमी बेनीपुर के पूर्व छात्र आ भरवारा निवासी आदित्य राज आनंद के चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में वैज्ञानिक के पद पर चयन भेल अछि। ओ बेंगलुरु स्थित यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में पदभार ग्रहण कऽ लेलनि अछि। एहि उपलब्धि सँ विद्यालय शिक्षक सब छात्र छात्रा सब आ हुनक पैतृक गांव भरवारा में खुशी के माहौल अछि।

0: आदित्य सर्वेशा मेधावी आ अनुशासित छात्र रहलन अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागार्जुन चेयर के दिशा हमारा समय कबीर और नागार्जुन की विरासत विषय पर संगोष्ठी भेल। तीन तकनीकी सत्र में साहित्यकार सब आ शिक्षाविद सब कबीर आ नागार्जुन के साहित्य और सामाजिक चिंतन के समकालीन प्रासंगिकता पर विचार रखलन। पीजी हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमेश कुमार कहलन जे कबीर आ नागार्जुन भारतीय सांस्कृतिक आ साहित्यिक विरासत के एहन स्तंभ छथि जिनका समाज के नव दिशा देबाक कार्य करय में योगदान देबाक लेल उत्कृष्ट स्थान प्राप्त भेल अछि। आइयो हुनक चिंतन प्रेरणा स्रोत अछि। बीज वक्ता प्रोफेसर विजय कुमार कहलन जे मध्यकालीन संक्रमण के दौर में कबीर समाज के संभाल के कार्य केने छलथि। दरभंगा प्रेक्षागृह में सैनिक डीएम कौशल कुमार आ एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी 12 जुलाई के आयोजित होबय वाला अवर निरीक्षक मध्य निषेध भर्ती लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के तैयारी के समीक्षा कैलन। केंद्राधीक्षक सबके दंडाधिकारी सबके आ पुलिस पदाधिकारी सबके आवश्यक दिशा निर्देश देलन। परीक्षा के पूर्ण तरह से स्वच्छ निष्पक्ष कदाचार मुक्त आ शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न करबा पर जोर देल गेल। डीएम बतौलन जे 12 जुलाई के जिला के 19 गोट परीक्षा केंद्र पर परीक्षा एक पाली में भोर 11 बजे से दोपहर 1 बजे धरि आयोजित हैत। अभ्यर्थी सबके प्रवेश भोर 9:30 से 10:30 धरि हैत। निर्धारित समय के बाद कोनो अभ्यर्थी के कोनो परिस्थिति में प्रवेश नहीं देल जायत। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सत्र 2026-27 के लेल नव विश्वविद्यालय कार्यकारिणी के घोषणा केलक अछि। विश्वविद्यालय अध्यक्ष गौतम झा कहलन जे छात्र हित में प्रभावी ढंग से मुद्दा उठेबाक संगठन के मजबूत बनेबाक आ विश्वविद्यालय में छात्र छात्रा सबके समस्या के समाधान के उद्देश्य से नव टीम के गठन कयल गेल अछि। नव कार्यकारिणी में मोहम्मद सिराज आ विश्वनाथ कुमार के विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष, शिवम प्रताप सिंह के कोषाध्यक्ष, आशीष देव के संगठन मंत्री, आदर्श मिश्रा के महासचिव, शुभम ठाकुर के सचिव, रजत रंजन के संयुक्त सचिव आ आनंद पासवान के विश्वविद्यालय प्रवक्ता सह मधुबनी जिला कॉलेज प्रभारी बनायल गेल अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आ व्यवहारिक प्रशिक्षण बोर्ड BOPTER कोलकाता के बीच विश्वविद्यालय के 4 गोट अंगीभूत कॉलेज सब में एन एप्रेंटिसशिप एबेडेड डिग्री प्रोग्राम संचालित करबाक लेल शुक्र दिन समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कयल गेल। कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के अध्यक्षता में आयोजित एहि कार्यक्रम में बिहार शिक्षा विभाग के पूर्व सचिव आ CRISP बिहार के अध्यक्ष वैद्यनाथ यादव आ BOPT के निदेशक डॉक्टर SM एजाज अहमद उपस्थित छला। तो ई छल हालचाल। और देखियो कविता जे हालचाल में तो अपने से सामाजिक सांस्कृतिक और जे भी अगल बगल के खबर होइ छै ओ सब अपने सब सुनते छी।
1: बिल्कुल।
0: मौसमक जानकारी के संबंध में जो श्रोता सब के बताबी तो ओना तो देखियो बरखा भेले अछि और हवा त अपना गति से चलते अछि।
1: बिल्कुल।
0: मुदा ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर दिस से जे मौसमक जानकारी अछि ओ अवश्य हम श्रोता सबके सुना दी।
1: बिल्कुल, ताकि जो किसान श्रोता है हमारे उन्हें इस जानकारी से कुछ लाभ मिल सके।
0: हाँ, ओ 15 जुलाई धरि के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार है, यानी 11 से 15 जुलाई धरि के उत्तर बिहार के अधिकांश स्थान पर 11 से 13

0: जुलाई के बीच मध्यम वर्षा होबाक अनुमान अछि। समस्तीपुर, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण आ पश्चिमी चंपारण जिला में किछु स्थान पर 11 से 12 जुलाई के आसपास भारी वर्षा होबाक संभावना अछि। वर्षापात के समय कतौ कतौ वज्रपात सेहो भऽ सकैत अछि आ तेज हवा चलबाक सेहो संभावना अछि। पूर्वानुमानित अवधि में ज्यादातर दिन में आसमान में हल्लुक सँ घना बादल लागल रहि सकैत अछि। वर्षा के गतिविधि के कारण एहि सप्ताह अधिकतम तापमान में पछिला सप्ताह के तुलना में कमी रहबाक संभावना अछि। अधिकांश जिला में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहबाक अनुमान अछि, जखन कि बेगूसराय, वैशाली आ सिवान जिला में ई तापमान 34 से 36 डिग्री के बीच रहि सकैत अछि। न्यूनतम तापमान के जँ गप करी तऽ 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहि सकैत अछि। भोर में सापेक्ष आर्द्रता के जँ गप करी तऽ 90 से 95% आ दोपहर में सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 55% के बीच रहबाक अनुमान अछि। श्रोता सब, एहि दौरान हवा मुख्यतः दक्षिण से पश्चिम दिशा से 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलबाक संभावना अछि। मुदा देखियो, ये जहिना मौसम और मनुखक व्यवहार अपने सब जानि नहीं सकै छी, तहिना सावधानी आवश्यक अछि। मौसम के जानकारी देनाय तऽ हमर सबके कर्तव्य अछि, किएक तऽ किसान अपने सब किसान देश में रहै छी। भारत जे अछि कृषि प्रधान देश अछि,
1: उसमें भी बिहार,
0: ओहोमे बिहार,
1: बिल्कुल।
0: तऽ ई तऽ हमर सबके कर्तव्य अछि जे हम जानकारी दी, मुदा सावधानी रखनाय अवश्य अछि। और देखिए जी, कार्यक्रम में सेहो अपने सब बहुत चीज परिष्कार आनै छी, और आजुक चर्चा अपन सबके जे अछि
1: जी,
0: ओ अछि स्वस्थ। जब अपने सब स्वस्थ छी तऽ एकटा समृद्ध समाजक निर्माण कऽ सकै छी, और अपन सबके समाज एकटा स्वस्थ परिवार सबसँ मिल कऽ बनल अछि।
1: बिल्कुल, कहा भी गया है कि स्वास्थ्य जो है हमारी पहली पूंजी होती है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हम जीवन में कोई भी काम जो है वो हर्षपूर्वक कर सकते हैं,
0: और समाजक समृद्धि में सेहो बढ़ोतरी होइत अछि। स्वस्थ परिवार सब एकटा समृद्ध समाजक आधार राखि सकैत अछि। जखन परिवार सदस्य, परिवार में जे सदस्य छथि ओ स्वस्थ रहै छथि तऽ शारीरिक आ मानसिक दुनू तरहे, तहने ओ समाजक निर्माण में सहायता कऽ सकै छै।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और अपने सबके कार्यक्रम में जो अपने सब समय समय पर श्रोता सबके सब किछु प्रसित रहै छी, तखने श्रोतो सब खुश रहै छथि।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका इशारा समझ रही हूँ अंजनी जी।
0: हाँ,
1: आइए श्रोताओं के साथ हम भी आनंद उठाते हैं एक फिल्म संगीत का।

0: स्वस्थ जखने छी, स्वस्थ के स्वस्थता के बात केलहुँ तो स्वस्थ छी तो समाज में अपने सब खुशी से जीवन व्यतीत कर सकै छी। किएक तो परिवारों देखियो ना, जै घर में रोगी विशेष छथिन या मानसिक रूप से होथिन या कतौ
1: शारीरिक रूप से, हाँ, किसी भी तरह से, तो एक तो यदि कोई भी रोगी है, मरीज है, तो उनके साथ साथ उनका जो पूरा परिवार है वो सफर करता है,
0: सफर करे। अब वैचारिक मतभेद से
1: बहुत सारी समस्याएं होती है।
0: हाँ, स्वस्थ शारीरिक तो भेबे कैल, मानसिक में हम ई कह चाहलहुँ जो वैचारिक मतभेद जो परिवार से लग समाज तक रहित अछि तो अपन सबके जीवन में कखनो सुखी नहीं रह सकै छी और समृद्ध नहीं रह सकै छी।
1: बिल्कुल, और ये परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी अच्छा नहीं है।
0: और समय समय पर अपने सब जे जना अपना सबके घर में देखियो जो कोनो पावनि तिहार होइत अछि तो बाहर से जे आदमी अबै छथि तो सब समाज से अपने सब भेंट घाट जे भी चीज छै ओ विचार करै छी, कोनो चीज जे घटित तो होइवला अछि ओहि पर पहिने से विचार कऽ लै छी तो समाज के लोक सब के मनमुटाव छोड़ कऽ प्रेम के भावना अछि और जहाँ प्रेम छै ओतय तो सुदृढ़ता छै ही।
1: बिल्कुल अंजनी जी, एक स्वस्थ व्यक्ति है यदि है, परिवार है, तो वो समाज के निर्माण और प्रगति दोनों में अपना संपूर्ण योगदान देने में सक्षम होंगे और ये तभी संभव है जब वो स्वस्थ होंगे। अगर हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की बात किए हैं तो ये केवल बीमारियों की बात नहीं है, यहाँ समाज के हर स्थिति को अपने स्तर से अपनाने की बात हो रही है, जहाँ हम शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तर से हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे। इसमें हमें परिवार में मिलने वाले संस्कार और उसके मूल्यों पर भी ध्यान देना आवश्यक
0: छै। और शरीर के देखियो, शरीर के जे ऊर्जावान बनाबैत अछि ओ अपना सबके मन के शांति अछि, और मानसिक शांति जो अपने सबके पास नै अछि तो संकीर्णता के भाव, अपना सबके विचार में संकीर्णता नै आबो दियो, ई सब से आवश्यक अछि, तखने अपना सब स्वस्थ रह सकै छी। समाज में अनेको तरह के लोक रहै छथिन, जखने परिवार में पाँचो अंगुली हाथ में जे पाँचो अंगुली अछि अहाँ देखियो ना, जे हाथक अंगुली में आर पैरक अंगुली में सेहो फर्क छै, और हाथक अंगुली में पांचो अंगुली सब सब रंग छे, तो तहिना समाज में सब तरहक व्यक्ति।
1: बिल्कुल अंजनी जी, अगर हमारे हाथ में पांचो अंगुली एक जैसी होगी तो फिर हमारा मुट्ठी नहीं बन पाएगा, हम जितने भी काम करते हैं वो आसानी से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारे उंगली का छोटा बड़ा होना जरूरी है। इसी तरह परिवार में भी हर इंसान को अलग अलग होना भी जरूरी है, यदि सारे लोग एक जैसे ही होंगे तो फिर परिवार भी ठीक से नहीं चल पाएगा।
0: हाँ हाँ, और अपने सब बच्चों में पढ़ने छी जो मनुष्य जे छै से सामाजिक प्राणी छै, हम जन्म लै छी अपना परिवार में नमहर होइ छी, चलै छी, बुलै छी, मुदा जे संस्कार भेटैत अछि ओ अपना सबके संस्कार परिवार से लऽ कऽ समाज तक सब भेटैत अछि, और ओहि संस्कार के लऽ कऽ जे अपने सब चलै छी तो जीवन में बहुत तरहक अनुभव प्राप्त होइत अछि, सुख दुख तो जीवन में लगले रहै छै, जे ओहि चीज के अपने सब अपना अंदर समाहित कऽ लै छी तो जीवन के गाड़ी जे छै से एकदम आधार पर चलित रहते। एकरा अपने सब ई बुझि कऽ चली जे प्रगति जो अपने सबके आवश्यक अछि, समृद्धि जो अपने सबके जरूरी अछि, तो अपने सब समाज के समृद्ध बनाबी, प्रगतिशील बनाबी, ओकरा निर्माण में अपन सहयोग विशेष दिए। तो एखन तऽ हम इशारा अहाँ के बुझि रहल छी कविता जे अहाँ इशारा कऽ रहल छी जे किएक ने एकटा आओर फिल्म संगीत सुनली, श्रोता सबके संगे संगे अपनो सबके मनोरंजन भऽ जाय, तऽ चलू आओ पहिले सुनि लै छी फिल्म संगीत।
1: बिल्कुल।

0: बहुत सुंदर गीत। और देखियौ जे एहि मौसममे अन्न मिलो सजना, एकटा सजनी जे छथिन से अपना प्रीतमसँ गुहार लगा रहल छथिन जे एहि मौसममे आओर अहाँ कतौ आओर छी। एतेक सुंदर गीत छलै, हमरा लागे श्रोता सब सेहो झूम उठल हेता कविता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम और आप तो झूम ही रहे थे यहाँ पे स्टूडियो में बैठे बैठे।
0: और सबसे बड़का बात ई छै ने कि समय अनुसार कोनो भी चीज अगर समय पर अपने सब करै छी, जखन जेना कि अपना सब अपन देश में अपन समाज में और अपन परिवार में खुशी के माहौल राखै छी, स्वस्थ रहै छी, तो स्वस्थ रहै छी तो जरूर मनोरंजन का तो जरूर आवश्यकता होय।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मनोरंजन के लिए गीत संगीत से
0: बेहद आवश्यक छै,
1: माध्यम और कोई हो ही नहीं सकता,
0: कोनो भय नहीं सकै छी। और

0: बहुत सुंदर गीत और गीत बहुत नीक छलै। मैं एकटा चीज देखलहुँ जे प्रेमक शब्द विशेष छलै। देखियो अपने सब परिवार में रहै छी, समाज में रहै छी, तऽ अपना सबके सिखायल जाइत अछि जे छोट सा प्रेम आ नमहर के सम्मान, सब वर्ग सँ उचित व्यवहार करनाइ सिखायल जाइत अछि। ई समाज परिवार सँ सामाजिक सहयोगक शिक्षा जे छै अपना सबके बचपने से भेटैत अछि। और जँ एहि आधारशिला के हम मानि लै छी तऽ देखियो जे अपना सबके समय समय पर खुशी जाहिर करऽ के लेल अपना सबके घूमै छी, जेनाकि अपना सबके तऽ घूमै के बहुत जगह छै। कविता किछु लोक के बाहर घूमनाइ पसंद छन, मुदा अपना सबके मिथिला में तऽ एतेक जगह अछि पर्यटन स्थल जे अपना सब बाहर जाए नहि पाबै छी। मुदा पर्यटन स्थल के जँ निर्माण आगू बढ़ेबाक लेल सरकारो एकर किछु किछु नियम बनेने छथि।
1: बिल्कुल अंजनी जी, हम श्रोताओं को बताते चलें कि हमारे देश में पर्यटन स्थल की कोई कमी नहीं है। पर्यटन न केवल मनोरंजन या इसको यात्रा का साधन भी आप कह सकते हैं जो है, बल्कि स्थानीय विकास और

0: आर्थिक सशक्तिकरण का एक बहुत ही प्रभावी जरिया है। यह दूरदराज के इलाकों, गांवों और ऐतिहासिक स्थलों पर रोजगार के नए अवसर भी लाता है और लोगों की आय बढ़ाने और समग्र सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: हाँ हाँ, देखिए जी, पर्यटन स्थल के यह मतलब छे जतना कि अपने सब अपना सके देखिए गांव घर में भगवती मान ले छी, जत जत भगवती छथिन हुनके दर्शन कर ले छी। नहीं हमरा पास किछ लोग एहनो छथिन जिनका आर्थिक समस्या छन, जिनका एते उपार्जन नहीं छन जे कतौ बाहर जा सके छथिन, हमरा अहाँ के छै तो हम वहाँ चल जाए छी।
0: बिल्कुल, भगवती मंदिर के साथ साथ जहाँ पे महादेव का मंदिर है हमारे आसपास दूर दराज, हम वहाँ भी जाते हैं।
1: हाँ हाँ, अपने तो देखियो संग्रहालय छै, बहुत चीज एहन छै देख वाला, जिनका अगर ज्यादा नहीं छन तो कमो में खुशी हासिल कर ले छथिन। और जो अपने सब जीवन में सुख सबसे बड़ी बात खुशी पावे के लिए कतौ किछ करी, कतौ घूमी, ककरो से बातचीत करी, और स्थानीय विकास के माध्यम के रूप में जो पर्यटन स्थल पर आजीविका आ रोजगारक सृजन पर एकटा नजर दी तो देखियो ठाम ठाम होटल परिवहन जे गाइडेंस करे छथि ओ स्थानीय होटल आ जे टूर ऑपरेटर छथिन जे अहाँ हमरा के बतबै छथिन जे एतो ई चीज छै एना अहाँ के जाय के हैत, उनका माध्यम से अपने सब प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न जे होइत अछि ओ आजीविका के सशक्त माध्यम अछि हुनका सब के लेल। और एकरा संगहि उत्पादक के मांग जे छै सेहो बढ़ि गेल अछि। और एकरा अप्रत्यक्ष रूप से जे हम देखी तो पर्यटन स्थल के सब लोग के लाभ भेटत अछि। और कलाकृति देखियो, स्थानीय कलाकृति अपनो सब के ठन एखने कहलौं कि संग्रहालय छै अपना सब के,
0: बिल्कुल
1: ओतो जब हम घूमै छी तो भरि दिन घूमते रहब। संस्कृति के बात जो अहाँ एखन केलौं, भगवती के महादेव मंदिर के बात केलौं, तो वो सब जे छै से अपना सब के प्रकृति से उत्पन्न भेल जतेक भी चीज छै से देखै छी। जेना अहाँ देखियो एखन हाट मिथिला हाटे अछि मिथिलांचल में, ओहो अपन सब के एकटा देशक गौरव में शामिल अछि। और बिहार और भारत सरकार के प्रमुख पहल जे छै पर्यटन स्थल के सशक्त बनेबाक लेल ओ योजना चलायल गेल अछि जे मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना अछि, जे ग्रामीण पर्यटन के प्रोत्साहित करबाक लेल बिहार सरकार प्रति कमरा 2.5 लाख यानी 2.5 लाख तक के सब्सिडी अधिकतम 1 लाख दैत अछि, जाहि में युवा और महिला के लेल अतिरिक्त प्रोत्साहनक प्रावधान अछि। ओहिमे एकटा योजना और अछि जे अछि बिहार दर्शन योजना। सरकारी कर्मचारी आ अधिकारी सबके सपरिवार राज्य के पर्यटक स्थल के भ्रमण आ ओत रात्रि विश्राम के लेल प्रोत्साहित कयल जाए तो अछि। तेसर योजना अछि प्रसाद, PRASHAD आ स्वदेश दर्शन 2.0। भारत सरकार के ई योजना के माध्यम से धार्मिक आ ऐतिहासिक स्थल के कायाकल्प कयल जा रहल अछि, जखन ताकि मतलब पर्यटन के लाभ जे अछि से सीधा जनता के
0: मिल सके। बिल्कुल।
1: और यदि बिहार में अपन क्षेत्र के बात करी तो देखियो जना दरभंगा में अपने बात केलौं, विशिष्ट स्थान सब के भगवती मंदिर छे, महादेव मंदिर छे, संग्रहालय के गप अपने सब केलौं, पूसा जे अछि अपन सब के विश्वविद्यालय ओत देखियो जे ठाम ठाम विद्यालय सब से बच्चा सब के सेहो लऽ जायल जाय छन। आ लोको सब के एक बेर हमहू गेल छी पूसा घुमले तो बहुत भीड़ रहत अछि। और जखन
0: और हमारा ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है दूर दराज से गांवों के बच्चे यहाँ भी तो आते हैं के लिए पढ़ने के लिए।
1: हाँ,
0: देखने के लिए।
1: हाँ, देखियो ना जत बहुत बड़का बड़का विश्वविद्यालय छै तत्तौ से बच्चा सब आवे छथिन अपना विश्वविद्यालय में पढ़ले।
0: अंजनी जी बात करी थी स्थानीय कलाकृति हो या पर्यटन स्थल की संस्कृति हो उसको भी प्रोत्साहन मिलता है। कारण है ये कि अब जहाँ तहाँ हस्तशिल्प, पारंपरिक कला, स्थानीय व्यंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को वैश्विक मंच मिल रहा है। इससे पारंपरिक कारीगरों को अपनी कला का उचित मूल्य प्राप्त होता है, जैसे हमारे यहाँ मधुबनी पेंटिंग, सिक्की कला, अरिपन की कला, लोक नृत्य, झिझिया, इन सभी सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान हमारा ये मिथिलांचल है। वैसे ही हर जगह की अपनी परंपरा है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, देखियो नालंदा विश्वविद्यालय छै सेहो सब छै अपना सबके। देखियो जगह जगह घूमऽ के बात पे जना पटना भेल अपना सबके बिहार में, पटना में चिड़ियाघर भेल,
0: चिड़ियाघर है, वहाँ भी म्यूजियम है, तारामंडल है, हमारे यहाँ भी दरभंगा में भी तारामंडल है।
1: तो ये बात छै जे स्थानीय विकास में पर्यटन के की स्थान

0: छै आओर स्थानीय विकासमे जेनाकि ओतऽके जे स्थानीय लोक सब छथिन जिनका रोजगार नहि भेट रहल छनि ओ अपन रोजगारके लेल पर्यटन स्थलके इस्तेमाल कऽ सकै छथि आओर सरकारके तरफसँ जे मिलऽवला योजना छै ओहि योजनाके लाभ उठाकऽ अपन पर्यटन स्थलके समीप अपन रोजगार चला सकै छथि आओर देखियौ कार्यक्रम जे छै से धीरे धीरे अपन समय पर जा रहल छै मुदा जे अपने सब बतियाइ छी श्रोता सबसँ तऽ बहुत मन लगैत अछि आ देखियौ श्रोता सब जे छै से एखन अपने सब हाथमे मोबाइल रखने रहै छी मोबाइल तऽ सभक हाथमे छनि लोकसब कहै छथिन कि रेडियो मतलब हमरा पास नहि यऽ मुदा नहि आब तऽ रेडियो मोबाइले पर अछि सब किछु मोबाइल पर अछि सोशल मीडिया जे छै से हमेशा अपने सब सोशल मीडियासँ जुड़ल छी चाहे नीक व्यवहार करियौ एकर या खराब व्यवहार करियौ ओ अपना उंगली पर निर्भर छै
1: बिल्कुल ये हम पर निर्भर करता है कि हम सोशल मीडिया है या फिर हमारे पास जो फोन है हम उसका यूज किस तरह से लेते हैं अच्छे से लेते हैं या बुरे से लेते हैं उसमें क्या देखते हैं क्या पढ़ते हैं
0: अहाँ एखने देखियौ ने अपने सब स्वस्थ समाजके परिवारके गप केलहुँ तऽ परिवार नीक सिखबैत अछि हमरा तऽ समाजके सङ्गे अपने सब नीक व्यवहार करै छी आओर समाजमे जते भी लौकिकता कार्यक्रम होइत अछि कार्यक्रममे कहि सकै छी ओकरा जेना विवाह भेल मुंडन भेल
1: या अंजनी जी एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी हम बात अभी कर रहे थे मोबाइल फोन की तो श्रोताओं को मैं बता दूं कि श्रोताओं आप अपने मोबाइल फोन अपने स्मार्टफोन के माध्यम से हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं आप अपनी बात को बताएं आगे
0: नहीं सही गप छे क्या तो श्रोता सब अपने सब जुड़ल के ना रहे
1: बिल्कुल बिल्कुल यदि आप कहीं जाते हैं तो रेडियो सेट को लेकर नहीं जा सकते नहीं लेकिन फोन को तो लेके जा सकते हैं ना तो आप जहां भी जाएं कहीं भी कभी भी आप अपने रेडियो सेट पे न्यूज ऑन AIR इस ऐप के माध्यम से आकाशवाणी के किसी भी कार्यक्रम को कहीं भी सुन
0: सके छी और कार्यक्रम के जे समय आय छी कविता से हो अपना चरम सीमा पर चल गेल अछि जे अपना सब के श्रोता सब से विदा लेबा के आज्ञा द रहल अछि तो एहि के लेल कि काल हम फेर या समय पर उपस्थित हैत हमरा अंजनी के
1: और कविता को दीजिए अनुमति नमस्कार मिथिला।

0: घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी
1: जिंदगी कैसी है बहेली हाय
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे
3: श्रोताओं कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है बल्कि बेरोजगारी और

अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, यह है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 0627222481। हमारा दूसरा नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 12 जुलाई 2026 यानी कल दिन के 11 बजे।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: अब नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब आपको सुनवाएंगे समाचार प्रभात अपने दिल्ली केंद्र से रिले करके। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों

0: ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरि को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
4: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल प्रसिद्ध इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और

0: जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
1: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
4: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबार

0: के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा। सरकार ने कहा, हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नुस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1, Norway to face England in third quarter-final tonight. And in Wimbledon tennis, Czechia Karolina Muchová to face compatriot Linda Noskova in women's singles final today. And now the news in detail. India and New Zealand today signed 5 key memorandums of understanding, MOUs, covering defence, animal husbandry and dairy, tourism, sports and disaster management, marking a new chapter in bilateral ties between the two nations. The deals were inked following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. We have more from our correspondent.
3: The two countries signed a memorandum of arrangement between the Ministry of Defence and the New Zealand Defence Force to enhance maritime cooperation aimed at strengthening security in the Indo-Pacific region. The agreement on animal husbandry and dairy will promote research, innovation and exchange of best practices. The tourism pact is expected to boost visitor exchanges and strengthen cooperation in the travel sector. Both sides also adopted a joint action plan on sport to deepen collaboration in sports development and athlete exchanges. An MOU on disaster management will enhance cooperation in disaster preparedness, emergency response and resilience. The 5 agreements reflect the growing India-New Zealand partnership and the shared commitment to expand cooperation across strategic, economic and people-to-people sectors. With Manju Meena's report.

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया है जिसे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदाम की हिदायत दी। फीफा आलमी कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उधर आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला अपनी हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज 5 अहम मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें दिफा, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेरी, सियाहत, खेलकूद और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के शोबे शामिल हैं। ये दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में एक नया बाब है। इन माहिदों पर दस्तखत ऑकलैंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद किए गए। इससे पहले वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड उनका ये दोतरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेकाम और सलामती को मुस्तकम बना

0: में अहम रोल अदा कर सकते हैं।
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जनाब मोदी के दौरे को एक तारीखी संगे मील करार दिया, जो पिछले 40

0: करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने जनाब मोदी के दौरे को एक तारीखी संग मील करार दिया, जो पिछले 40 वर्षों में भारत के किसी वज़ीर-ए-आज़म का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है। जनाब लक्सन ने जनाब मोदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी मेज़बानी उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात की बढ़ती हुई ताकत का अंदाज़ा होता है। दोतरफा बातचीत से पहले गवर्नमेंट हाउस में एक इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में वज़ीर-ए-आज़म मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब ने ऑकलैंड में 2026 की भारत न्यूजीलैंड तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की खबरें देने वाली हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सरकर्दा ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारती समझौता महज 9 महीने में ही मुकम्मल कर लिया गया है, जिससे दोतरफा ताल्लुकात में एतबार और रफ्तार का अंदाज़ा होता है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि दोतरफा तिजारत 2030 तक दोगुना हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के न्यूजीलैंड के अज़्म को भी उजागर किया। उन्होंने इसे बढ़ती हुई इकतसादी शराकत दारी में एक बड़ा संगमेल करार दिया। भारत को मौक़ों की सरजमीन करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत महज एक मार्केट नहीं है, बल्कि ये आलमी सतह पर तरक्की करने के लिए एक लॉन्च पैड भी है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पॉलिसी असलाहत, मैनुफैक्चरिंग तरगीबात, आलमी दर्जे की मसनूआत साजी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से भारत आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुल्क बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दोनों मुल्कों के नौजवानों के दरमियान मजीद सरगर्मियों के लिए भी कहा। उन्होंने तजवीज़ रखी कि 35 साल से कम उम्र के कारोबारी जज्बे वाले अफराद पर मुश्तमिल तजारती वफूद को एक दूसरे के मुल्कों में लगातार दौरे करते रहना चाहिए, ताकि तवील मुद्दती शराकत दारी कायम की जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवान मुस्तकबिल में इख्तिराकारों और कारोबारी भारत न्यूजीलैंड इकतसादी तआवुन की तश्कील करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के रिश्तों की अक्कासी के सिलसिले में आज भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल ऑकलैंड पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का दौरा किया था। भारतीय बहरिया अपने छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में अपने मशरकी बेड़े में शामिल करेगी। इस तकरीब की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। ये दिफा के शोबे में खुद किफालत और जंगी जहाज़ों को मुल्क ही में तामीर करने की जानिब एक और अहम कदम है। इस जहाज को बहरिया में शामिल किए जाने की तकरीब के मौके पर बड़ा खाना के दौरान बहरी अमले से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बहर हिंद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के बुनियादी जामिन के तौर पर भारत के मौकफ को दोहराया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ों को डिज़ाइन करने वाले ब्यूरो के डिज़ाइन करदा और मुंबई में मेज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का तामीर करदा ये जहाज़ महेंद्रगिरी एक ऐसा जंगी जहाज़ है जो जदीद तरीन हथियारों, हसास आलात और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लैस है। ये जहाज दुश्मन के हथियारों को फजा और जमीन में नीज आबदोज कर सकता है। ये समंदर में सलामती के लिए गश्त, तलाश और बचाव का काम भी अंजाम दे सकता है। ये जहाज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद, कुदरती आफात की सूरत में राहत कार्रवाई और बहरे हिंद खित्ते में मुस्तकिल तैनाती की खिदमात भी अंजाम दे सकता है। इस जहाज का नाम मशरकी घाट के महेंद्रगिरी पहाड़ी सिलसिले पर रखा गया है। हुकूमत ने कहा है कि इसे कामकाज में शामिल किए जाने से भारतीय बहरिया की कार्रवाई की सलाहियत में इजाफा होगा और बहरी जहाज़ों की मुल्क ही में तामीर के मैदान में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर भारत की हैसियत उजागर होगी। इस जहाज से बहरे हिंद खित्ते में भारत को सलामती के शोबे में शराकतदार मुल्क के तौर पर एक तरजीही मुल्क की हैसियत कायम होगी। विशाखापट्टनम से अल्लू मुराली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: कोयले की वजारत ने कोयला ब्लॉकों की तजारती नीलामी के 15वें मरहले के लिए बोलियों का अमल शुरू कर दिया है। वजारत ने बताया कि इन मरहलों में जिन 23 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई थी, उनमें से 8 के लिए कुल 21 बोलियां मौसूल हुई हैं, जिससे भारत के तिजारती कोयला कानकनी के फ्रेमवर्क में सनतों की मजबूत शिरकत की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। खवातीन क्रिकेट में लंदन के शहर लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी पहले टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली बारी के अपने स्कोर एक विकेट पर 21 रन से आगे खेल की शुरुआत करेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तीन ममालिक के दौरे के आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचने की खबर को अहमियत दी है, जहां न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया, जबकि रोजनामा प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ के जरिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में तआवुन बढ़ाने के लिए एक रोडमैप जारी किए जाने की खबर पर तवज्जो मरकूज की है। ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु के कदीम विरसे की वापसी पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने खुशी का इजहार किया और कहा कि भारत के मालामाल सकाफती विरसे को उसके मकाम पर वापस लाने की समझ में ये एक अहम कदम है। इस खबर को रोजा प्रताप ने उजागर किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहिमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया जिससे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज शाम विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत बहर हिंद खत्ते में अमन इस्तेकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदाम की हिदायत दी। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
4: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
3: जब होगा पूरा प्रयास हमारा तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज गया जी में बिहार विधानसभा के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाजीपुर में करेंगे शुभारंभ। वरिष्ठ न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और अररिया समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी आ रहे हैं। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: गया जी के बीपाड़ परिसर में विधायकों के लिए दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। शिविर का उद्देश्य नए और पुराने सभी सदस्यों को संसदीय कार्यप्रणाली और विधानसभा की नियमावलियों से परिचित कराना है। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और प्रोटोकॉल की तैयारियां पूरी कर ली है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह में इस सुविधा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की भी शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन मंत्री मदन सहनी भी मौजूद रहेंगे।
2: यह व्यवस्था प्रदेश के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में लागू होगी। निबंधन के पूर्व संबंधित व्यक्तियों को अंचलाधिकारी को जमीन के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए GIS तकनीक से निरीक्षण किया जाएगा। वहीं मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से जमीन, फ्लैट या प्लॉट की घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध होगी। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए ebandhan.bihar.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1-4-5-4-4 पर भी संपर्क किया जा सकता है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारी।
0: प्रदेश में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर विकास और आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने बताया कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए 3008 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। श्री कुमार ने पटना, सारण, गया और मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारियों को टाउनशिप के सामाजिक प्रभाव का आकलन करने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधान सचिव ने बताया कि सोनपुर में हरिहरनाथ टाउनशिप के लिए 2000 एकड़, गया जी के मगध टाउनशिप के लिए 1629 एकड़ और मुजफ्फरपुर के तिरहुत टाउनशिप के लिए 1191 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों का नियोजित विकास और विस्तार तथा नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सैटेलाइट टाउनशिप मददगार साबित होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के निर्णय के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा के नाम की घोषणा की। श्री सिन्हा ने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है।
3: मैं शुरू से मैं बूथ मंत्री बना, बूथ अध्यक्ष बना, महामंत्री बना और मैं दो बार से मंडल अध्यक्ष रहा और जिला उपाध्यक्ष का भी कार्य मैं युवा मोर्चा में किया हूँ। जीत तो बहुत जबरदस्त होने जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हमारे आम जनता हम लोग बांकीपुर नमन को बहुत बहुत आशीर्वाद देने जा रही है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनके कार्य को देख करते हुए आज ही लोग यहाँ पे देंगे।
0: प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री

0: सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन करेंगे। इससे पहले पार्टी ने अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। श्री कुमार ने 9 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। पटना में पार्टी प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।
1: मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
0: गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित है। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 3 अगस्त को कराई जाएगी। बिहार और हरियाणा के बीच सुरक्षित और सुलभ परिवहन के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में दोनों राज्यों के बीच कल द्विपक्षीय बस परिचालन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर बिहार सरकार की ओर से राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत दोनों राज्यों के बीच नियमित बस सेवाओं का संचालन किया जाएगा, जिससे यात्रियों को किफायती दरों पर सुरक्षित, आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हरियाणा के गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत, पानीपत सहित अन्य निर्धारित शहरों से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 6 प्रमंडलों पटना, पूर्णिया, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर के लिए आधुनिक वातानुकूलित बसों का नियमित परिचालन किया जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के वरीय न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय आज सेवानिवृत्त हो रही हैं। कल उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन में आयोजित समारोह में उन्हें औपचारिक विदाई दी गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से पटना समेत कई जिलों में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सीवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के अधिकांश स्थानों पर, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान पटना, अरवल, खगड़िया, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, वैशाली और मुजफ्फरपुर समेत 20 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटाड़ में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोपालगंज, वैशाली

पूर्णिया और मधेपुरा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में हर महीने की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल 97,84,000 से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजने के बाद यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर महीने की 10 तारीख को पात्र लाभुकों के खाते में पेंशन राशि पहुंच जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हर पात्र व्यक्ति को पेंशन योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। श्री सिन्हा ने पटना में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने को भी कहा गया है। श्री सिन्हा ने उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने किसानों से आग्रह किया है कि वे उर्वरक खरीदते समय रसीद अवश्य लें। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा 26 जुलाई को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में ली जाएगी। बिहार की टीम हैदराबाद में खेली जा रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय जूनियर बालक रग्बी 7 प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में बिहार का मुकाबला केरल से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में बिहार ने छत्तीसगढ़ को 34-0 से पराजित किया। और अब जिलों से प्राप्त अन्य समाचार। भोजपुर जिले के अगियांव थाना क्षेत्र अंतर्गत आहर के पास छापेमारी कर पुलिस ने सामुदायिक सेवा केंद्र को लूटने की योजना बना रहे अपराधी गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपराधियों की तरफ से फायरिंग होने पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है। मौके से फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है। मधुबनी पुलिस ने बेनीपट्टी थाना के डायल 112 टीम के जवानों पर जानलेवा हमला करने के मामले में अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार के दौरान 96 मामलों की सुनवाई की। कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, पेंशन योजना के पात्र व्यक्तियों को जोड़ने का अभियान चलेगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, केंद्र ने E20 की लागत अधिक बताकर कीमत भी नहीं घटाने का दिया संकेत। सरकार का स्पष्ट संदेश, शुद्ध पेट्रोल या E10 लौटना अब संभव नहीं। दैनिक भास्कर ने बांकीपुर उपचुनाव पर लिखा है, भाजपा ने 72 घंटे में प्रत्याशी बदला, नीरज कुमार सोमवार को करेंगे नामांकन। प्रभात खबर लिखता है, राहत, बीपी, शुगर, कैंसर समेत 39 नई दवाओं की कीमत तय। आज अखबार की सुर्खी है, 15 अगस्त के बाद जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज गया जी में बिहार विधानसभा के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए होम रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी शुरू। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हाजीपुर में करेंगे शुभारंभ। वरिष्ठ न्यायाधीश सुधीर सिंह पटना उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा और अररिया समेत 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है।

घर घर केरवाणी आकाशवाणी हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर हमर स्टेशंस लाइव मनक बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर हमर सबक वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नव भारत नव आकाशवाणी।

हवाओं से होकर कुछ आवाजें गईं दूर दूर तक रेडियो तरंगों के वेश में। ये अनमोल तरंगे जिन तक पहुंची वे बने रेडियो श्रोता। बचपन गुजरा, जवां हुए, बुढ़ापे ने दस्तक दी। किसी का साथ रहा, किसी का छूटा, पर नहीं छूटा रेडियो, उसकी यादें, उसकी कही बातें। आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दरभंगा के नए कार्यक्रम में। हर महीने के पहले रविवार को

0: दोपहर 2:30 पर रेडियो की बात श्रोताओं के साथ।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
3: श्रोताओं, आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें। कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है, बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर हैं 0627222481। हमारा दूसरा नंबर है 9430029353। समय याद रखें रविवार 12 जुलाई 2026 यानी कल दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

0: एक बार फिर हम हाजिर हैं अंजुमन के साथ। सामीन, एक बेहतरीन नावल निगार भीष्म शाहनी की मादरी जबान वैसे तो पंजाबी थी, पर उर्दू जबान पर भी उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल था। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी तख्लीकात के लिए हिंदी जबान का इंतखाब किया। उनका सबसे बड़ा अदबी शाहकार उनका नावल थॉमस तकसीम हिंद के दौरान होने वाले फसादात पर मबनी है, जिसके लिए उन्हें 1975 में साहित्य अकेडमी अवार्ड तक से नवाजा गया है। सामिन, हम अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे। फिलहाल आई एच की खास पेशकश उर्दू ड्रामा घुटन समाप्त करने का वक्त हुआ चाहता है। समाप्त करते हैं उर्दू ड्रामा घुटन, तहरीर शकीलुर रहमान की और पेशकश है प्राण किशोर की।
1: ये क्या कम है, राजी के राजकुमार खन्ना को सुदेश अब तक याद है।

0: दरवाजा खुला है, कौन है, अंदर आ जाओ। कौन?
1: राजेश्वरी, तुम अब तक जाग रहे हो?
0: हाँ, नींद नहीं आ रही है।
1: राज,
0: बैठ जाओ राजेश्वरी। लेकिन इतनी रात में तुम मेरे कमरे में इस तरह, मेरा मतलब है,
1: मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। राज,
0: क्या पूछना चाहती हो?
1: यही कि तुम यहाँ क्यों आए।
0: ये सवाल तो राजेश्वरी मैं खुद अपने आप से पूछ रहा हूँ। समझ में नहीं आता मैं यहाँ क्यों और किस तरह आ गया। मुझे अब तक जवाब नहीं मिला। भला मैं तुम्हें क्या जवाब दूँ?
1: मुझ पर दया करो राज, यहाँ से चले जाओ। तुम्हें देखकर जाने मेरा कलेजा क्यों कांप रहा। ऐसा ना हो राज,
0: के कर्नल सुदेश को सब कुछ मालूम हो जाए। उसी का डर है ना, तुम्हें देख वो दीवानी राजेश्वरी याद आ जाती है, जिससे मैंने प्रेम किया था। अभी तक तुम वही हो, कोई फर्क नहीं आया। भला कर्नल सुदेश को ये किस तरह मालूम होगा कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं और हम दोनों ने एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत की थी। ब्याह करना चाहा था कि दरमियान में दीवार आ गई, मैं तुमसे और तुम मुझसे बिछड़ गई। ये बातें तो सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम है, तुम्हारे साहब को इसकी भला क्या खबर होगी।
1: नहीं राज, तुम उन्हें नहीं जानते। उनका दिमाग उनके दिल को चलाता है, कौन जाने कब उन्हें कुछ मालूम हो जाए। और
0: दीवानी पगली,
1: जो चाहे कहो, लेकिन मेरे लिए, भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। राज, मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि तुम इतने बरसों के बाद मेरे घर आए हो और जाने कब क्या हो जाए।
0: मैं तुम्हारे पति, अपने दोस्त और कन्नर सुदेश के मिजाज को अच्छी तरह समझ चुका हूँ राजेश्वरी। स्टेशन से बंगले तक चंद ही लम्हों में मालूम हो चुका है कि उसके उसूल बड़े सख्त हैं। खरा आदमी है, जो सोचता है वही करता है और वही कहता भी है, मैं उसे पहचान चुका हूँ।
1: इसके बावजूद तुम यहाँ रहना चाहते हो? लेकिन क्यों?
0: एक वजह तो ये है कि मैं तुमसे बिछड़ने के बाद बीमार हो गया, मुझे टीबी हो गई, बहुत इलाज किया,

0: अब कुछ अच्छा हूं। ऐसी खूबसूरत पहाड़ी जगह पर आराम करना चाहता हूं। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं अच्छा हो जाऊं
1: राज?
0: और दूसरी वजह यह है कि मैंने एक बार तुमसे कहा था कि जब तुम्हारा ब्याह हो जाएगा तुम्हें खूबसूरत बंगले में अपने पति अपने बच्चों के साथ रहने लगोगी, तो एक दिन मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। मुझे क्या मालूम था कि मेरा मजाक इतना संगीन हो जाएगा और मैं इस तरह तुम्हारे घर आऊंगा। सच जानो राजेश्वरी, मुझे मालूम न था कि जिस दोस्त के घर आ रहा हूं उस घर की देवी तुम हो।
1: अब क्या सोच रहे हो?
0: यही सोच रहा हूं।
1: हाँ, क्या?
0: यही सोच रहा हूं।
1: क्या सोच रहे हो राज?
0: यही सोच रहा हूं राजेश्वरी। क्या जरा सोचो, हम दोनों किस उम्र में पहुंच रहे हैं? भला इस उम्र में हम क्या सोच सकते हैं? मेरी उम्र 55 बरस की हो गई है और तुम भी तो, मेरा मतलब है राजेश्वरी, इस उम्र में तो हम सिर्फ अपनी खूबसूरत यादों के सहारे सांस ले सकते हैं। तुम इत्मीनान रखो, कल सुदेश को कुछ मालूम ना होने दूंगा। मैं उसे महसूस होने ना दूंगा कि जिसकी पूजा मैंने की थी उसे उसने अपने घर के मंदिर में सजा लिया है। मैं तुमसे वायदा करता हूँ मुझे कुछ दिनों यहाँ रहने दो। हाँ राजेश्वरी, मैं कल मर गया होता तो ठीक था, आज मैं मरना नहीं चाहता। मुझे इस खूबसूरत रंगीन दुनिया में बड़ी कशिश महसूस होती है। रंगों की दुनिया कितनी हसीन है, जी चाहता है तेज तेज सांस लेता जाऊं और ये जिंदगी कभी खत्म न हो। मैं मरना नहीं चाहता। मैं यहाँ कुछ दिन रहकर अच्छा हो गया तो इसे मैं तुम्हारी प्रार्थना समझूंगा। मैं ये समझूंगा कि एक बार तुमने मुझे फिर जिंदा कर दिया।
1: मैं अब जा रही हूँ।
0: ठीक है, बहुत रात हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। कल तुम्हारी बेटी मोना की सालगिरह है ना? भगवान उसे जिंदा रखे, उसे तो मैंने अब तक देखा नहीं। कितने साल की होगी?
1: 18 साल की।
0: कल उसे जी भर कर देखूंगा। तुम्हें याद है ना, एक बार मैंने कहा था कि हमें पहले बेटी होगी, गुड़िया जैसी। मेरे हाथ की लकीर धुंधली और तुम्हारे हाथ की लकीर गहरी थी। हुई ना बेटी? किस पर गई है, बाप पर या तुम पर? जरूर तुम्हारी तरह उसका नाक नक्शा होगा। अरे कहाँ गई, चली गई?

0: morning, Mona, my sweet daughter. Happy birthday to you.
1: Oh, thank you, Daddy.
0: Oh, मैं कल शाम से काम पर क्या गया भी लौटा हूँ. ये रहा तुम्हारा तोहफा, मेरा प्रेजेंट.
1: Oh,

0: darling Mona, my sweet daughter. Happy birthday to you.
1: Oh, thank you, Daddy.
0: मैं कल शाम से काम पर क्या गया अभी लौटा हूँ. ये रहा तुम्हारा तोहफा, मेरा प्रेजेंट.
1: Oh, thank you, Daddy, thank you.
0: ये हर तरफ खामोशी क्यों छा गई? मैं कोई देव हूँ कि तुम लोगों को निगल जाऊंगा? बजाओ गिटार, नाचो, गाओ. हेलो राजकुमार, हाउ आर यू? यार मैं कल शाम को पहाड़ी इलाकों में गया और अभी आ रहा हूँ. तुमसे तो मुलाकात ही नहीं. देखो राजी, जल्दी केक मंगाओ. हाँ योगी, योगी पाइप लाओ.
2: आइए, केक आ चुका है, इधर आ जाइए.

0: राजी, तुमने अब तो सबका मुंह मीठा, मेरा मतलब आई मीन
1: ये लीजिए।
0: थैंक यू डार्लिंग।
1: आप भी लीजिए ना। क्या सोच रहे हैं?
0: हाँ, थैंक यू राजी। छोरी
1: कहिए।
0: एक मिनट।
1: क्या बात है?
0: वो वहाँ वो लड़का कौन है?
1: कौन? वो गौतम है। मोना के साथ कॉलेज में पढ़ता है। बहुत अच्छा लड़का है। आज दूसरी बार यहाँ आया है।
0: बहुत हैंडसम और हेल्दी है। अभी मोना के साथ डांस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने ही जोड़ी पसंद की है।
1: ये नीलिमा है।
0: अच्छा।
1: ये संतोष कुमारी है।
0: ओ।
1: ये राजेंद्र है।
0: ठीक
1: और
0: है।
1: ये है यशोधरा। डैडी बिल्कुल पगली है।
0: पगली है?
1: आंखों पर देखिए ना, इतने मोटे शीशे की तो ऐनक लगा रखी है। खाक नजर आएगा इसे कुछ। ये शोभा है। ये जूलिया है।
0: ओ।
1: हर वक्त हंसती रहती है डैडी।
0: ठीक है।
1: ये फायजा है। और ये है गौतम। ये सब मेरे साथी हैं डैडी।
0: प्लीज टू सी यू। बड़ी खुशी हुई तुम लोगों को देखकर। हाँ तो क्या नाम बताया इसका?
1: डैडी गौतम।
0: अच्छा डांस करते हैं।
2: थैंक यू अंकल।
0: अच्छा नाउ इट इज 11:30। पार्टी खत्म, सब चले जाए।
1: नहीं डैडी अभी नहीं।
0: नो बहुत रात हो गई। इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ असूलों की पाबंदी करनी चाहिए। नाउ इट विल बी टू मच। मोना तुम सबका शुक्रिया अदा करो और ड्राइवर से कह दो सबों को उनके घर छोड़ा है।
1: कुछ तो अपनी गाड़ियों में आए हैं डैडी।
0: ठीक है बाकी दोस्तों और सहेलियों को अपनी गाड़ी में भेज दो। हाँ मिस्टर गौतम, तुम जरा मुझसे मिलकर जाना। योगी योगी पाइप लाओ।

0: सिद्धेश्वरी आओ मेरे साथ।
1: कहाँ?
0: मेरे कमरे में, सब तुम्हारे इंतजार में है। दरीचा, दरख्त और मोहब्बत भरे दो दिल। देखो उधर उस दरख्त के नीचे कौन है? वहां हमारी मोना है ना, और वो गौतम।
1: तुम बहुत डरते हो।
2: डरने की बात ही है, एक ही गोली में बस साफ हो जाऊंगा, प्रेम व्रेम सब धरा रह जाएगा मेरा।
1: इतना डरते हो मेरे डैडी से?
2: बाप रे बाप, कन साफ तो बस कन साफ है, ऐसा हुक्म देते हैं जैसे मार्शल लॉ लग गया हो। तुम कल से यहाँ नहीं आ सकते।
1: और तुमने हुक्म नहीं माना डैडी का?
2: ओ, कुछ समझ में नहीं आता मोना, तुम्हारे हुक्म पर चलूं या तुम्हारे डैडी के।
1: तुम बहुत अच्छे हो गौतम, लेकिन डरते बहुत हो।
2: जो चाहे कह लो, मुझे तो

0: ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन कर्नल साहब के पिस्तौल की गोली मेरा काम तमाम कर देगी।
1: छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करूं?
0: कौन सी बात करूं, समझ में नहीं आता अंजाम क्या होगा। मोना, हमें एक दूसरे के नजदीक इस तरह नहीं आना चाहिए था।
1: आप ख्याल आए सरकार को।
0: क्या करूं, कर्नल साहब की बात दिल को लग गई है।
1: बहुत पसंद आई डैडी की बातें तुम्हें?
0: हाँ, बहुत पसंद आई। पसंद ना आती तो क्या आती।
1: गौतम, तुमने तुमने कहा था तुम रूहों को बुलाकर इनसे बातें करते हो।
0: कहा था?
1: सच कहा था?
0: हाँ, रोजी तो बुलाते हो रूहों को।
1: किसी दिन मुझे भी बुलाओ, मेरी आत्मा को भी।
0: कल तुम्हें बुलाया था मैंने, तुम्हारी आत्मा से बहुत देर तक बातें करता रहा।
1: सच?
0: और क्या,
1: किस वक्त बुलाया था मुझे?
0: कल सुबह 7 बजे।
1: लेकिन मैं तो जिंदा हूँ।
0: मैं जिंदा लोगों की रूहों को भी बुलाता हूँ।
1: वाह वाह वा, क्या बात है। तुम्हें हिमालय के जंगलों में जाकर रहना चाहिए। सुना है वहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा रहते हैं जो सिर्फ रूहों से बातें करते हैं। लेकिन गौतम, मैं तो अपने घर पर थी, कैसे बुला लिया मुझे?
0: मिट्टी के इस बदन में सिर्फ एक आत्मा नहीं होती मोना, एक से ज्यादा आत्मा होती है।
1: क्या पूछा था मेरी आत्मा से?
0: बहुत कुछ, यही कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, कितना चाहती हो, और क्या मुझसे शादी करोगी।
1: तो क्या जवाब मिला तुम्हें?
0: वही जवाब मोना जो तुम्हारी आत्मा चाहती है।
1: ऐसा करो, मेरे डैडी की रूह को बुलाओ।
0: अरे बाप रे बाप, ये तुम क्या कह रही हो? जिस वक्त उनकी आत्मा को बुलाऊंगा वो मुझे शूट कर देंगे।
1: भला आत्मा शूट कैसे कर सकती है गौतम? तुम उनसे पूछना वो तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं।
0: अरे बाबा, वो काहे को पसंद करने लगे मुझे। कल ही तो ऐसा हुक्म दिया कि पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अच्छा मोना, मैं चला। मोना, ये रहा गुलाब का सुर्ख फूल, तुम्हें बहुत पसंद है ना?
1: बहुत पसंद है गौतम।
0: मुझसे भी ज्यादा।
2: देखा तुमने, क्या सोच रही हो?
1: कुछ नहीं, बस यूं ही।
2: क्यों? कुछ यादें जाग गईं। मेरी बात मानो, कल शाम को डिनर पर गौतम को बुलाओ। सुदेश भी होगा वहां, हम मोना के लिए बात करेंगे।
1: और उन्होंने अगर
2: करेगा क्या, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, सुदेश ये रिश्ता मंजूर नहीं करेगा। तो जाए जहन्नुम में खन्ना सुदेश, हम शादी करेंगे मोना बेटी की।
1: ये तुम क्या कह रहे हो?
2: वही जो सच है। कल तुम गौतम को बुलाओ, मोना से कह दो कि हमने उसे इसी बात के लिए बुलाया है, हम उसकी खुशी चाहते हैं। क्या कमी है उस लड़के में, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, जवान है, बाप बिजनेस करता है। तुम्हारे कर्नल साहब को किसी वजह से बिजनेस से नफरत है, तो इस बात का असर इस खूबसूरत रिश्ते पर क्यों? क्या समझी?
1: समझ गई।
2: मुझे आशा है कि तुम मोना को बचाओगी राजेश्वरी, जरूर बचाओगी। जो खुशी तुम हासिल न कर सकी वो मोना तो हासिल कर ले।

0: नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। होश में कोई नहीं। राजी, तुम्हें क्या हो गया? और तुम्हें राजकुमार खन्ना, आज ये बात कैसी सूझी? कुछ तो सोचा होता कि मोना कर्नल सुदेश की बेटी। मिस्टर गौतम, तुम जा सकते हो। सब बेवकूफ है, किसी में रत्ती के बराबर अकल नहीं। उसूलों के बगैर आखिर किस तरह जिंदगी बसर हो सकती है? मैंने मोना के लिए कुछ और सोचा है। ठीक है ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ।
1: इस बात का फैसला किए बगैर आप नहीं जा सकते।
0: राजी राजी, राजेश्वरी, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर रही हो? मेरे मुकाबले पर खड़ा होने की जरूरत तुम में कहां से आई?
1: ये किसी मुकाबले की बात नहीं।

0: हमारी बेटी के मुस्तकबिल का सवाल है और उसका फैसला मैं भी कर सकती हूँ।
1: तुम कर सकती हो?
0: हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये घुटन मेरी बेटी की जिंदगी का गला घोंटे।
1: कैसी घुटन? मैंने किसका गला घोंटा है?
0: ये आप नहीं समझ सकते।
1: मैं जो चाहता हूँ वही होगा।
0: और अब मैं जो चाहूंगी वही होगा। आप अपनी बेटी को गोली मार देंगे कि उसने अपनी पसंद का लड़का चुना है? वो बालिग है, अपनी मर्जी से अदालत में जाकर भी शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो हमारी रजामंदी चाहती है, हमारा आशीर्वाद।
1: तो जाकर ऐसा क्यों नहीं करती?
0: ये सब होगा जब मेरी शिकस्त होगी।
1: और तुम जानती हो मैंने कभी शिकस्त नहीं खाई।
0: कर्नल साहब सोचिए, नहीं तो अब ऐसी शिकस्त मिलेगी कि जिंदगी भर संभल नहीं सकेंगे।
1: ओह बस बस, बहुत हो चुका। योगी, योगी कोहरा निकालो।

0: शाबाश राजी, शाबाश, जीत तुम्हारी होगी और जरूर होगी। लेकिन आज सुदेश को घोड़े की सवारी, मेरा मतलब है जब से मैं आया हूँ मैंने उसे घोड़े पर कभी नहीं देखा।
1: जब वो ज्यादा परेशान होते हैं तो घोड़े पर बहुत दूर निकल जाते हैं, कभी मुझसे कुछ नहीं कहते।
0: तुम नीचे चली जाओ, ऐसा ना हो तुम्हें मेरे साथ इस तरह देख ले।
1: उस वक्त तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, जब किसी बात में उलझ जाते हैं, जहन परेशान होता है तो वो सिर्फ घोड़े पर नजर रखते हैं। जाने वो ऐसे क्यों है, अपने दिल की कोई बात मुझसे नहीं कहते।
0: अच्छा है जो उलझ गया है।
1: मुझे तो इस बात से दुख होता है।
0: उसका इस तरह उलझ जाना अच्छा है राजेश्वरी, बहुत अच्छा है। कुछ तो सोचेगा, आखिर वो भी तो इसी मिट्टी का बना हुआ है, जिस मिट्टी के हम तुम बने हैं। उसमें थोड़ी तब्दीली आ जाए तो इस बंगले और हम सबों के दिल की घुटन कम हो जाएगी। क्या सोच रही हो?
1: कुछ नहीं।
0: मोना के बारे में सोच रही हो, है ना? जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। तुम मोना को समझाओ, इस तरह रोते रहने से कुछ ना होगा, वो बीमार हो जाएगी। मैं देख रहा था कि कन्ना सुदेश को इस तरह तुम्हारी मुखालिफत की उम्मीद ना थी। वो हकीकत समझ गया है। जीत तुम्हारी होगी राजी, तुम्हारी ही होगी।

0: रोस्ट तो बहुत अच्छा है राजी, तुम मोना को भी ऐसा खाना बनाना सिखा दो। मेरी बेटी जब दूसरे घर में जाएगी तो इसके बनाए हुए रोज खाकर सब दीवाने हो जाएंगे, सब दीवाने हो जाएंगे। सबके मुंह लटके हुए हैं, आखिर बात क्या है? क्यों मोना, राजीव, राजकुमार, ठीक है, मैं तन्हा हंस रहा हूं, कोई मेरा साथ न दे।
1: सुदेश, हो गया है तुम्हें सुदेश?
0: क्या बात, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि मैं इस तरह हंसता रहूं? मैंने आज से हंसी को भी अपने उसूलों में शामिल कर लिया है राजकुमार। आज गौतम को भी खाने पर बुलाया होता, उसे ये चिकन रोस्ट जरूर पसंद आते। तुम सब हैरत से इस तरह क्यों तक रहे हो? मैं कोई मजाक कर रहा हूं? राजी, मोना के लिए मुझे गौतम बहुत पसंद है। तुम दोनों की शादी की तैयारी करो। मैंने बहुत सोचा है, रात भर सोचता रहा और इसी नतीजे पर पहुंचा कि अगर किसी की खुशी के लिए उसूल तोड़े भी जाए तो कुछ बुरा नहीं, कुछ बुरा नहीं।

दोस्तों, भेष मसाणी ने रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बतौर मुतरजम भी काम किया। उन्होंने कई रूसी किताबों का हिंदी में तर्जुमा किया। आपको बता दें सामीन हजरात के उन्हें कई तरह के अवार्ड से नवाजा गया, पद्म भूषण से लेकर के और भी कई अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। उनके अदमी खदमात को हम भूल नहीं सकते। इसके साथ ही सामीन, आइए वक्त हुआ जाता है एक और प्यारी सी गजल समाप्त करने का। समाप्त करते हैं पंकज उदास की आवाज में सजी हुई ये खूबसूरत सी गजल।

दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम आ पहुँचे हैं अंजुमन की आखिरी पड़ाव पर, जहाँ हम आपको कहेंगे अलविदा। लेकिन आपको बता दें कि साहनी ने फिल्मी अदाकारी में भी अपना नाम खूब नुमाया किया और खूब कमाया। मोहन जोशी हाजिर हो से अपने फिल्मी करियर का आगाज़ किया। उनकी आखिरी फिल्म मिस्टर एंड मिसेज अय्यर थी। अपनी गराकदर खिदमात के लिए भीष्म साहनी हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इसके साथ ही सामिन हजरात, हमारी अंजुमन का वक्त हुआ जाता है अख्तिताम की तरफ बढ़ने का। चलते चलते आपकी समातों के हवाले कर रही हूँ एक और प्यारी सी गजल पंकज उधास की आवाज़ में सजी हुई।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। श्रोताओं सुबह के 10 बज रहे हैं, आनंद लीजिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित के गाए इस खूबसूरत गीत के साथ, जिसे लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है खयाम ने, फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

इसी फिल्म का एक और गीत सुना रहे हैं आपको आशा भोसले की आवाज़ में। गीतकार और संगीतकार की जोड़ी है वही, गुलजार और खयाम।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं समय आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शर्मिली से। इस गीत को लिखा है नीरज ने और संगीत दिया है राहुल देव बर्मन ने।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें आपको। कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 0627222481। हमारा दूसरा नंबर है 9430029353। समय याद रखें रविवार 12 जुलाई 2026

लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में भी आप सुन रहे हैं फिल्म प्यासा सावन का ये गीत, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं आपको, आवाजें हैं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की, गीतकार गौहर कानपुरी, संगीतकार राजकमल, फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

ये थे इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा के गाय फिल्म सावन को आने दो के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम जारी है इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहे।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है। कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 0627222481। हमारा दूसरा नंबर है 9430029353। समय याद रखें रविवार 12 जुलाई 2026 यानी कल दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

पुरुषोत्तम दास जलोटा के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। हमारे अगले प्रसारण के लिए कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। आप सुन रहे हैं आज की हमारी पहली सभा। तो पहली सभा के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं हमारा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज सुनेंगे आप पंडित जसराज के स्वर में कबीर भजन राग शुद्ध भरारी में।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। आप सुन रहे थे राग शुद्ध भरारी में करीर भजन पंडित जसराज के स्वर में। प्रसारण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आइए अगला अब आनंद लेते हैं मधुर नए पुराने फिल्म संगीत का। तो सबसे पहले सुनते हैं फिल्म दिल से लिए गए इस गीत को।

फिल्म दिल से लिए गए इस गीत को गा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और अनुरा और उदित नारायण, और इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

फिल्म फूल और अंगार का ये गीत अभी आप सुन रहे हैं। आवाजें हैं कुमार शानू और सुजाता गोस्वामी की, और इस गीत को संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

फिल्म रंग का ये गीत अभी आप सुन रहे थे, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति साथ अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म सौदागर से, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। इस गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

फिल्म सपने साजन का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी मुकुल अग्रवाल और अनुराधा पौडवाल की। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, वक्त हो रहा है हमारे श्रोता बहनों के कार्यक्रम नारी संसार का, तो आइए मिलते हैं आपकी रेडियो सखी आरती से कार्यक्रम नारी संसार में।

कार्यक्रम नारी संसार सुनने वाले सभी श्रोता सखी को आरती का प्यार भरा नमस्कार। सखी हमेशा की तरह आज भी हम अपने चर्चा के जरिए आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, साथ ही आपको मनोरंजन की दुनिया में लेकर के चलेंगे और सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गाने। और हर दिन की तरह आज भी आप वार्ता सुनेंगे हमारी रेडियो सखी श्वेता जी से, पर उससे पहले करते हैं कुछ बातें। बहनों, आपको पता है आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। जी हाँ, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये दुनिया भर में बढ़ती आबादी, परिवार नियोजन, गरीबी, लैंगिक समानता और पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव के प्रति सचेत करना है और लोगों को परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि सीमित संसाधनों के अनुसार एक स्वस्थ और सुखी परिवार की योजना बना सके। हमारे कहने का मतलब है कि अधिक जनसंख्या होने से परिवार चलाना मुश्किल हो सकता है, कठिन हो सकता है, जैसे भोजन, पानी, नौकरी और रोजगारी, बेरोजगारी की कमी भी आ सकती है और घर में भी रहने की दिक्कत भी हो सकती है। जी हाँ, खाने पीने के साथ साथ रहने में भी दिक्कतें होती है, तो इससे वनों की कटाई इसका कारण है। जनसंख्या वृद्धि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर इसका असर पड़ रहा है, जैसे मातृत्व और शिशु की देखभाल में चुनौतियाँ। मातृत्व देखभाल, पोषण सहायता और टीकाकरण में कमी के कारण महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित हैं, इससे रोगों का खतरा बढ़ सकता है। बहनों, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और अशिक्षा, बीमारी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपको बता दें कि किसी भी देश की जनसंख्या के प्रभाव देश के विकास की गति पर अवश्य पड़ता है। शिक्षा व्यक्तियों को उनके अधिकार को समझने में मदद करती है, जिससे वे तय कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, इसके अंतर को हम समझ पाते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति अपने फैसले खुद ले सकता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। और ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, इसका असली अर्थ ये सीखना है कि एक बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक कैसे बने। विश्व जनसंख्या दिवस के इस खास दिन पर समूचे विश्व में अलग अलग प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बढ़ती जनसंख्या और उसके नुकसान के प्रति जागरूक कर सके। जी हाँ, जागरूकता से ही आएगा बदलाव, जनसंख्या नियंत्रण से मिलेगा नया पड़ाव। सोचो, समझो, फिर परिवार बढ़ाओ, खुशहाल जीवन का आधार बनाओ। ये प्रयास गरीबी खत्म करने का है, बेरोजगारी दूर करने का है और स्वस्थ जीवन जीने का है। तो बढ़ती आबादी, बढ़ती परेशानी खत्म करना है, सुखी जीवन जीना है। तो बहनों, बातें आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अंतराल के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम नारी संसार में, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी आरती। बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है, बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियां से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य है, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभाग अध्यक्ष स्नातक उत्तर राजनीतिक विज्ञान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर होंगे 0627222481। हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 12 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। तो बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवा देते हैं वार्ता। वार्ताकार है हमारी रेडियो सखी श्वेता जी, तो आइए सुनते हैं इनसे वार्ता।

आज हम बात करेंगे योग से होने वाले फायदे के बारे में, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर योग है क्या। योग सही तरीके से जीने का विज्ञान है और इसके लिए इसे दैनिक जीवन में शामिल किया जाना जरूरी है। ये हमारे जीवन से जुड़े भौतिक, मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के पहलुओं पर काम करता है। योग का अर्थ है एकता या बांधना। इस शब्द की जड़ है संस्कृत के शब्द युज, जिसका मतलब है जुड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इस जुड़ने का अर्थ है सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। व्यवहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल को बनाने का एक साधन है। यह योग या एकता आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, षटकर्म और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो योग जीने का एक तरीका भी है और अपने आप में परम उद्देश्य भी है। योग सबसे पहले लाभ पहुंचाता है बाहरी शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी को, जो ज्यादातर लोगों के लिए एक व्यवहारिक और परिचित शुरुआती जगह है। जब इस स्तर पर असंतुलन का अनुभव होता है तो अंग, मांसपेशियां और नसें सद्भाव में काम नहीं कर पाती, बल्कि वो एक दूसरे के विरोध में कार्य करती हैं। बाहरी शरीर यानी कि फिजिकल बॉडी के बाद योग मानसिक और भावनात्मक स्तरों पर काम करता है। रोजमर्रा की जिंदगी के तनाव और बातचीत के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग अनेक मानसिक परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। योग इनका इलाज शायद तुरंत तो नहीं, लेकिन इसके मुकाबला ये करने को हमेशा तत्पर होता है। योग करने के कई फायदे होते हैं। इससे शरीर मजबूत होता है और मानसिक स्वास्थ्य

0: भी बेहतर होता है। योग के कुछ नियम और तरीके होते हैं। ऐसे में अगर योग हम शुरू करना चाहते हैं तो इनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। योग की शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी और आज भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग योग का सहारा लेते हैं। योग करने से मन, शरीर और आत्मा संतुलित होता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने योग के चमत्कार को माना है। रोजाना योग करने से चिंता, तनाव और अवसाद दूर होता है, यानी योग मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। इस भागदौड़ की जिंदगी में अगर आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रहे हैं तो ऐसा करना आप पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में आप योग को अपना कर कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। योग को अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसे प्राणायाम योग भी कहते हैं। ये एक आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है जिससे शरीर, मन और आत्मा संयुक्त होते हैं। शरीर के साथ योग हमारे दिमाग को भी स्वस्थ रखता है। कई बार लापरवाही के कारण छोटी सी समस्या गंभीर रूप ले लेती है। योग से न सिर्फ आप शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत रहते हैं। योग अस्थमा, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, गठिया, पाचन विकार और अन्य कई बीमारियों से राहत दिलाने का काम करता है। योग कई तरह की बुरी आदतों के प्रभाव को भी कम करता है, जैसे कि कम फिजिकल एक्टिविटी, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल, खान पान में गड़बड़ी। अगर हम जानें तो इसके बेहतर परिणाम के लिए हमें हमेशा योग करनी चाहिए, यानी कि अगर हम योग की शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 30 दिनों तक लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। योग अभ्यास को पूरा करने के लिए और इसका पूरा लाभ पाने के लिए कुछ सरल नियमों का पालन करने की जरूरत होती है, जैसे कि आप योग शुरू करने से पहले एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लें, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय योग को करें, योग करने से पहले स्नान जरूर करें, योग शुरू करने से 2 घंटे पहले तक कुछ भी न खाएं, खाली पेट ही योग करना चाहिए, योग करने के 30 मिनट के बाद तक यानी कि आधे घंटे के बाद तक कुछ भी न खाएं, आरामदायक कपड़े पहने, शांत वातावरण में योग का अभ्यास करें, उस वक्त मन को भी शांत रखें, खुद के साथ किसी भी तरीके की जबरदस्ती ना करें। कहने का तात्पर्य है कि जबरदस्ती किसी भी प्रकार के योग अभ्यास को ना करें। यदि आपको पहले से किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक समस्या हो तो योग शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, और अगर योग करने के दरमियान किसी भी प्रकार की परेशानी आती हो तो योग अभ्यास को रोक दें। अंत में शवासन करें। ये थे कुछ योग से होने वाले फायदे, और योग को नियमित तौर पर अगर अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो बहुत सारे असाध्य रोगों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ता का विषय था योगा के फायदे। वार्ताकार थी श्वेता। तो बहनों, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम में। बरसात का मौसम जहां एक ओर गर्मी से राहत देता है, वहीं दूसरी ओर अपने साथ साथ बीमारियां भी लेकर के आता है। बारिश में होने वाली बीमारी ज़्यादातर पेट और त्वचा से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा इस मौसम में संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है। इन सब बीमारियों से बचने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और अपने आसपास साफ भी रखना होगा। सखी बहनों, बरसात के मौसम में उमस और मौसम में अचानक परिवर्तन होने के कारण सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और फ्लू की समस्याएं ये काफ़ी बढ़ जाती है। जी हाँ, खिली हुई तेज़ धूप के बाद अचानक बारिश होना, इसे हम मौसम में होने वाला बदलाव कह सकते हैं। बहनों, आपको पता है कि नवजात शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए जैसा मौसम हो उसी अनुसार से शिशु को कपड़े पहनाएं और इस मौसम में बच्चों को तेल की मालिश दें। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अगर आप शिशु को अपना दूध पिला रही हैं तो उसे अलग से पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दूध में ही पर्याप्त मात्रा में उसे पानी मिल जाता है। और ये भी ध्यान दें कि इस मौसम में मच्छर का प्रकोप बढ़ जाता है और लोग मलेरिया के शिकार हो जाते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही घर के चारों ओर पानी जमा ना होने दें। अगर गड्ढे हैं तो उन्हें मिट्टी से भर दें और रुकी हुई नालियों को साफ करें। अगर पानी जमा होने से रोकना संभव नहीं हो तो उसमें केरोसिन तेल जरूर डालें। घर के अंदर सभी जगहों पर हफ्ते में एक बार मच्छर नाशक दवाई का छिड़काव जरूर करें। ये दवाई फोटो फ्रेम्स पर दो, कैलेंडरों और घर के स्टोर रूम यानी कि सभी कोने में जरूर छिड़के। दवाई

ढकते समय अपने मुंह नाक को ढक कर रखें, यानी कि अपने चेहरे को कोई कपड़ा बांधकर ही दवाई का छिड़काव करें। साथ ही खाने पीने की सभी चीज़ों को ढक कर रखें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। जी हाँ, नमी और गंदगी से बैक्टीरिया, फंगल और मच्छर बहुत तेज़ी से पनपते हैं। घर की नमी दीवारों में, सीलन, कपड़ों में बदबू और लकड़ी के फर्नीचर में भी फफूंद लग सकती है। इतना ही नहीं, यात्रा करते समय पूरी सावधानी बरतें। बारिश के समय सर के फिसलने भरी हो जाती है, जलभराव हो जाता है और ब्रेक लगाना कठिन हो जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। तो ध्यान रखें, वाहन चलाते समय धीमी गति रखें, यानी कि धीरे धीरे गाड़ी चलाएं और हेडलाइट्स ऑन रखें। ब्रेक और टायर की समय समय पर जांच कराते रहें। पैदल चलते समय भी सावधानी बरतें। पानी भरे गड्ढों में जाने से पहले वहाँ का रास्ता देखें और जाने से बचें। तो बहनों, ये छोटी छोटी बातों को अपनाकर आप स्वस्थ रह सकती हैं, प्रसन्न रह सकती हैं और खुश रह सकती हैं। तो चलते चलते मैं आपको और एक और प्यारी सी गीत मैं आपको सुना देती हूँ।

बहनों, इस मौसम में हम सभी लोग कम पानी पीते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। मानसून के दौरान चाहे आप घर पर हो या बाहर, साफ और शुद्ध पानी ही पीना सुनिश्चित करें। अगर आप बाहर पेय पदार्थ पीते हैं तो सुनिश्चित करें कि केवल शुद्ध पानी का ही इस्तेमाल किया जाए। बहनों, बारिश के दौरान प्याज और अदरक का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। भोजन में रेशेदार फलों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। नींबू में विटामिन सी मिलता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। पुदीना पाचन तंत्र को मजबूत करता है, तो ये सब चीज़ों को आप अपने भोजन में ज़रूर शामिल करें। मानसून के मौसम में स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है नियमित हाथ धोना। तो बहनों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है और इसे बेहतर कैसे बनाएं, हमें पत्र के माध्यम से लिखकर भेज सकती हैं। हमारा पता है सखी बहनों का कार्यक्रम नारी संसार, द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 8460004। इसी के साथ दीजिए अपनी सखी आरती को विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से नारी संसार, आपकी रेडियो सखी लालती के साथ। हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार बस कुछ ही देर में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में

0: विदेशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
3: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

दे दें। साथ ही साथ आपको साप्ताहिक कार्यक्रम के विषय में भी जानकारी देंगे। अब से कुछ ही देर में यानी दोपहर के 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। दोपहर के 2:02 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। और 2:05 पर आप सुनेंगे उर्दू खबरें, हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से ही प्रसारित किया जाएगा।

दोपहर के 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से, और देश दुनिया की खबरें आप सुनेंगे दोपहर समाचार में हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किया जाएगा 2:15 पर।

फिल्म संगीत का आनंद फिर से लेंगे दोपहर के 2:30 पर, और दोपहर के 3 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का हमारा कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे सुरेश रावल की आवाज़ में गुजराती गीत। हमारी दूसरी सभा के कार्यक्रम में शाम 5 बजे आप युवाओं पर आधारित कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं। शाम के 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत, और शाम 6:30 पर हमारे ग्रामीण श्रोता भाइयों के कार्यक्रम गाम घर का प्रसारण किया जाएगा। चर्चा का विषय होगा विश्व जनसंख्या दिवस। शाम 7 बजे के करीब हमारे किसान श्रोता भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का प्रसारण होगा। चर्चा का विषय होगा खरीफ तिल की आधुनिक खेती।

रात्रि के 8:08 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान और रात के 8:15 पर पर्यावरण संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे कार्यक्रम हमारा पर्यावरण में निर्माण एवं वाचन कल्याण कुमार झा प्रस्तुतकर्ता अस्तत दाऊद। रात्रि के 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम संगीत भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण आप सुनेंगे रात्रि के 10:00 हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। आइए श्रोताओं अब आपको साप्ताहिक कार्यक्रम की जानकारी दे दें। कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने के में सक्षम बनाने का ना सिर्फ एक प्राथमिक साधन है बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव विभाग अध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें रविवार 12 जुलाई 2026 दिन के 11:00। तो श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण हमारे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, अब वक्त हो रहा है फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो चलिए आनंद लेते हैं इस सुरीले सफर का आपकी रेडियो दोस्त चंदना के साथ।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आपकी रेडियो हम सफर फिर से आ गई है आपके ढेरों पत्र के साथ, आपके ढेरों पसंदीदा गीतों के साथ। तो मैं आपकी रेडियो हम सफर आपकी दोस्त चंदना आपको लेकर चलती है एक सुरीले सफर पर जो आपके पसंदीदा गीतों से सजा है। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं इस सुरीले सफर का इस पहले गीत के साथ, जो कि आए हैं पुणे से प्रियंका आर्य, पंकज बोर्डे, बाबा साहेब बोर्डे, मीनाक्षी चरपे, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, प्रमानंद आर्य, पंकज आर्य, अभयनंद आर्य, प्रमोद, रोहित और मोहित, प्यारे लाल मनोहर, अमर लाल मनोहर, दुलारी लाल मनोहर, प्रेम लाल मनोहर, सुंदर लाल मनोहर, ये हैं टावर चौक आशापुर से, और छत्तीसगढ़ पथरिया भैरवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और नव्या सिंगरौल। और ये सुनना चाहते हैं फिल्म दीवाना से लिए गए इस खूबसूरत से गीत को। नदीम श्रवण के संगीत से सजाया गया है इस गीत को, और इस गीत को गाया है कुमार शानू और साधना सरगम ने। तो आइए चलिए सुनते हैं ये आपका पहला गीत

बहुत ही खूबसूरत सा गीत। आइए श्रद्धा अब अगले गीत की ओर चलते हैं, जो कि है फिल्म शराबी से, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। बरसात के इस मौसम में ये गीत बहुत ही ज़्यादा रंग लाएगी, और इस गीत को सुनना चाह रहे हैं बेड़ी से हुकुम कर्मकर, सुनीता कर्मकर, हार्दिक कर्मकर, प्राची और तनु कर्मकर। इसी को सुनना पसंद किया है झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरे राम पासवान, जयशंकर पासवान, काजल कुमारी और रानी कुमारी ने। ग्राम महेशवाड़ी मलकाल तहसीलपुर महाराष्ट्र से

0: शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीना जी धाड़े, स्वप्निल और अजय खिरोटकर, और इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं शुभंकरपुर दरभंगा बिहार से मिट्ठू जी, रंजना जी, राजेश जी, चंचल जी, शालू, साक्षी, अनिकेत, अनमोल बाबू, मिष्टी और मौली इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म शराबी से।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना, ना।

तो श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। मैं आपके रेडियो हम सफर आपको सुनवा रही हूं अपने पसंदीदा गीत, आपके पसंदीदा गीतों को जो कि पत्रों के माध्यम से आपने हमें भेजा है। श्रोताओं, हर शनिवार को ढेरों पत्र मेरे पास आते हैं और मुझे ये बहुत खेद है कि मैं हर पत्रों को शामिल नहीं कर पाती हूँ इस कार्यक्रम में, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पत्रों को इस कार्यक्रम में शामिल कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप श्रोताओं का मनोरंजन कर पाऊँ, मगर एक समय सीमा के कारण मैं ये नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अगला गीत सुनते हैं फिल्म सपने साजन के से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपतु साहू, थनक्ष अरु साहू इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राम शर्मा, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ और साइना, साथ में नवीना शर्मा। इसी गीत की पसंद आई है सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाईकारी रायकारी, पुरंज राज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिकी, रिंकी, नीतून, फारूक भाई, ललन मिश्रा, जयंत कुमार बैरागी, एस बाग पिली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, पलक पंखुड़ी, कांति निकेतन राजनगर से, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुरा कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। तो ये सुनना चाहते हैं ये गीत फिल्म सपने साजन के से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं ये पसंदीदा गीत।

ये गीत है फिल्म निगाहें से सुरेश वाडेकर और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में, और इस गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं कैरना मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, पलक, नितिन, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी, बुल्की वाली, फलना झा, नयानगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ और गजेंद्र कुमार निराला। इसी गीत को सुनना पसंद कर रहे हैं बर्डी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अंजु, अर्जुन गोविंदकर और सिराज सर्वाश्री।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म 1942 लव स्टोरी से कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाज़ में, और इस गीत को सुनना चाह रहे थे छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा तेतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, ज्ञानवेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति रेयांश ठाकुर, साथ ही साथ नरहन स्टेट फुटानी चौक से भाई फटफटिया झा, फुलेश्वरी देवी, फूल कुमारी, फोकली झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, गोविंदपुर धनबाद से सराफत हुसैन अंसारी, बेगम रेहाना, परवेज अशरफ, हसन इमाम, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रामेश कुमार जाजुरिया, गीता रानी जाजुरिया, गगनदीप जाजुरिया, बेबी आरजू जाजुरिया, महाराजा रेडियो संघ श्रोता संघ जिला खांडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिनमा वैद और नीतू वैद। तो आइए श्रोताओं अगला गीत सुनते हैं। फिल्म हम आपके हैं कौन से बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में।

और इस गीत को सुनना चाह रहे हैं इनामा टोल भगवतीपुर पंचायत से नूतन सैनी, रासु देवी, कंचन देवी, रिंकू देवी, बबीता सैनी, कोमल सैनी, नव्यार, सुधा, विभा, ज्योति, पार्वती, त्रिपुरारी सैनी, संतोष कुमार सैनी, रासु देवी, रिंकू देवी, रुचि कुमारी और एस के सैनी, नाज बंजल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, अक्रम हुसैन प्रिंस, नवीन अक्रम, अर्जी आरिज वसीम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, बेगम इशरत अक्रम, रूबीना वसीम, रदीम अक्रम, अमन अक्रम, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख, केरल बिहार, मोहम्मद आसिफ, बेगम निखत परवीन, नूर महल महसौल से हुमेरा नाज, सुमेरा लाज, अहिबा नाज, अरहान बाबू, हमजा और मुजमिल बाबू, झंझारपुर लंगड़ा चौक से हरेराम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी।

तो श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित हमारे कार्यक्रम आपकी पसंद का। अब वक्त की सुई हमें बोल रही है कि अब आप श्रोताओं से इजाज़त ले लेनी चाहिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आप सबों को एक ये कि आप हमें हमेशा पत्र लिखते रहें और हम आपको सुनवाते रहेंगे आपके पसंदीदा गीतों को। पता तो आपको याद ही होगा, लेकिन एक बार फिर से इस पते को नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड है 846004। तो श्रोताओं, अब अगले हफ्ते तक के लिए दीजिए आपकी इस रेडियो दोस्त चंदना को इजाज़त। अगले हफ्ते इसी समय इसी वक्त पर और इसी दिन को इसी रेडियो सेट पर आपसे फिर से मिलने हाजिर हो जाऊंगी आपके ढेरों पसंदीदा गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 31.5 मीटर। आइए श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर।

0: हमारे पटना केंद्र से प्रसारित
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और जन कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। श्री राधाकृष्णन गया जी के पीपाट परिसर में विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विकसित

0: के बिना विकसित भारत का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। समारोह को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य नए और पुराने सभी सदस्यों को संसदीय कार्य प्रणाली और विधानसभा की नियमावलियों से परिचित कराना है। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि, प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह से इस सुविधा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की भी शुरुआत की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहे। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत बुजुर्गों को घर बैठे भूमि, प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की सुविधा उपलब्ध होगी। सेवा के अंतर्गत पेपरलेस निबंधन, सीओ द्वारा निबंधन संबंधी पूर्व जानकारी तथा जीआईएस तकनीक के माध्यम से स्थल निरीक्षण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में लागू होगी। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है। श्री सिन्हा ने पटना में विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने किसानों से आग्रह किया कि वे उर्वरक खरीदते समय रसीद अवश्य लें। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के विक्रम में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राजधानी पटना में भी लगभग 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने आज मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बगहा की एक अदालत ने मानव तस्करी के एक मामले में पश्चिम बंगाल के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी। यह मामला मात्र 24 दिन पुराना है। अररिया जिले के बतना थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक चारपहिया वाहन से 18 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। किशनगंज में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित 10 दिवसीय स्पंदन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में पूर्णिया आदिवासी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम विजेता बनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

रोजगार सूचना में आज लेखा परीक्षक एवं सहायक 2026 कुल पद 1829 आवेदन शुरू होने की अंतिम तिथि 14/7/2026 आवेदन की अंतिम तिथि 3/8/2026

न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर से जानकारी हासिल कर सकते हैं। JKSSB 2026 कुल पद 130। आवेदन शुरू होने की अंतिम तिथि 22/6/2026, आवेदन की अंतिम तिथि 21/7/2026। न्यूनतम उम्र सीमा कुछ नहीं, अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।

बैंक ऑफ इंडिया 2026 कुल पद 779। आवेदन शुरू होने की अंतिम तिथि है 30। आवेदन शुरू होने की तिथि है 30/6/2026। आवेदन की अंतिम तिथि है 20/7/2026। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष हो और अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष। ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.bank.in में जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे RRB टेक्नीशियन एग्जामिनेशन 2026 कुल पद 6557। आवेदन शुरू होने की तिथि है 30 जून 2026 और आवेदन की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष हो और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष हो। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए और 33 वर्ष, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए।

अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। आइए अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना आपको दे दें। श्रोताओं, कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभाग अध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए फोन नंबर है 0627222481 और हमारा मोबाइल नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार 12 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे। हमारे अगले प्रसारण के लिए थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा

0: बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे

0: आटे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के

0: दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप इनसे दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

फिल्म हम तुम पे मरते हैं का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म तुम बिन से।

फिल्म कसूर का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। आइए अगला गीत आपका आगे सुनाते हैं, फिल्म हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम से सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की।

आइए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे गुजराती गीत सुरेश रावल की आवाज़ में।

सुरेश रावल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत में गुजराती गीत। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो के घड़ी में 3:20 हो चुके हैं। यहीं समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। हम अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की फरमाइश की थी। एनआर श्रीवात्री ने सागर मध्य प्रदेश से, शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन और इनके अन्य साथी, और नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पेठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुक्त हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारू मित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओ मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कोड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंज

0: सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूँ मिस मित्रा?
0: ओह यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मुगल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूता पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूता पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, ये पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खां महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए।

0: अल्लाह अल्लाह।
1: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
0: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
1: हाँ पीर बाबा।
0: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
1: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
0: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
0: कैसे?
1: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म

0: तिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा।
2: ये सूरज मगरिब से उगा है इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
3: कैसे?
2: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
0: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
2: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
0: बेटे रहीमा, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
2: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
0: क्यों भला?
2: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
0: अल्लाह, ऐसी दलील हरकत, तूने जान नहीं लेनी उसकी?
2: होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
0: तो तू कहां था?
2: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
0: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूं?
2: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
0: मगर इस रास्ते में चैन कहां है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
2: जेल से तो निकल ही आया हूं और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
0: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहां?
2: अभी तो आपकी पनाह में हूं, जहां का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
0: और तेरे साथी?
2: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
0: देख रही मां, यहां इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
2: हाँ बाबा।
0: तेरा यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
2: जो हुक्म पीर बाबा।
0: अल्लाह।
2: बाबा
0: बोल बेटे।
2: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
0: हाँ हाँ बोल।
2: इस फकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
0: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमा, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
2: अच्छा बाबा। खुदा हाफिज बाबा।
0: अल्लाह हाफिज।

0: घने खम्बान दाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग बांगड़ियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजर करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुक्म अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी कुछ सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुक्म अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोंडी पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते।
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या अब डकैत और मुजरिमों को शरण देने का रह गया है?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस चीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी जबान से बगावत की बू आती है।
3: वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
5: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
1: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
3: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
1: तो फिर ठीक है दीवान जी।
0: हुकुम।
1: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
0: जो हुकुम अंदाता।
1: बस इसका खुफिया नाम होगा राम सिंह।
3: घनी घनी खम्मा अंदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: बैंक में से भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, बैंक का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस में भारी डकैती।
1: साथियों,

0: खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
1: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
0: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
2: मुर्दाबाद,
0: वतन के दुश्मन
2: मुर्दाबाद,
0: इनकलाब
2: जिंदाबाद,
0: हिंदुस्तान
2: जिंदाबाद।
0: अब चलो, ऊंटों के पिलान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांधकर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, Welcome, Mr. Harrison. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया। हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से Mr. Harrison, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोड़ा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हरसन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
1: राम सिंह
3: हुकुम अंदाता।
2: हरसन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
4: hey. रहीम खां का सलाम दीवान जी।
5: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
4: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूँ दीवान जी, अंदाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पुख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
5: कैसी वारदात?
4: वहाँ अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
5: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
4: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
5: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
4: यहां मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
5: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
4: अच्छा, अलविदा।
5: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
0: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और

छोटी बारी की जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खां को भी गोलियां लगी लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: रहीम भाई, पानी। कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूं करीमा। माल कहाँ?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं। जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहने दे इसे।
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूं।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंदाता को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रही भाई। चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।
1: रो मत करीमा, इधर देख पगले। मैं कितना खुश हूं, जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज होता है। आगे ये काम तुम लोग करना, फिरंगी रात से टक्कर

0: कौन सी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
1: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
0: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ।
2: अल्लाह अल्लाह
0: या खुदा, तेरी खुदाई पीर बाबा आप यहाँ।
1: पीर बाबा आपने जहमत उठाई, या मेरे मौला इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमान, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह

0: अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
1: आमीन। अलविदा बाबा।
0: वो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वहीं बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी। ये रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
2: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
3: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ऊझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिए जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
2: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
3: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
2: अच्छा।
3: हम सब बहन भाइयों का। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे। उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददीहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील।
2: जी,
3: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े श्री मदन लाल कपूर, और मेयो कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है।

0: वहां पढ़े वो, उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था, वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का, तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना
1: जी।
0: तो मेरा जो ननिहाल था वो चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है, तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माता जी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी, तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसोन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी हैं, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की और ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत रंगमंच वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए, तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता
1: और। जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है
0: जी।
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन लें।
0: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
1: जी,
0: रोशन साहब का म्यूजिक है और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया।
1: क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
0: जी।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपने अपने विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ही जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी।
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा हमेशा।
1: जी
0: जी। तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ, क्योंकि देखिए जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता।
0: जी।
1: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते।

0: है ना, तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे। और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा छुट्टी है मैं करूंगा। मैं वो बैठ नहीं सकते थे,
1: हाँ।
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
1: फ्री नहीं बैठ।
0: हाँ फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करती गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा क्या कौन सी स्क्रिप्ट है कौन से? बोले नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति के इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूं, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है।
1: जी, जी।
0: और वही पुरी साहब ने था
1: जी।

ओमपुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनके जज्बात, फीलिंग्स, वो

0: पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी, और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था। तो उसमें हम तीनों ही वहां थे, तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फेनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो जारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म खत्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं
0: जी
1: कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी जी जी
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: जो सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं,
0: हाँ
1: तो अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं वो, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते
0: जी
1: हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको, सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है,
0: बिल्कुल
1: हंसाना बहुत
0: बहुत
1: मुश्किल
0: मुश्किल।
1: है। तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी
0: जी
1: इनको
0: जी और
1: मैं। जी
0: इंटरनेशनल लेवल के कलाकार उनकी, मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से
1: जी
0: प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं हो
0: बिल्कुल।
1: सकता।
0: आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना,
1: जी
0: और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं
1: जी
0: तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी,
1: जी
0: तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं, और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूं तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं। और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
0: महत्व। जी।
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूं ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
0: तो
1: जी
0: अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनो ये तो आपने
0: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है। जी
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ। मेरी माताजी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: वाह, बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी।
0: अच्छा, छुपकर क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी, उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक

0: गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच और माँ जिस तरह की शायरी करती थी उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
1: जी। तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे
0: जी
1: पहला क्या लिखा गया होगा?
0: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस
1: क्या
0: यहीं
1: बात,
0: तक।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।
0: जी बिल्कुल।
2: रिम, रिम।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, और कहते हैं ना, जहां जहां पढ़े पग संतन के वहीं वहीं भंडा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली।
0: हाँ,
1: में
0: जी।
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे, और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद, चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
0: जी।
1: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी कई मैंने बनाई है डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
0: जी
1: गाने से
0: जी,
1: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊं। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड,
0: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
1: महानदी।
0: महानदी,
1: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहां पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीजों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुंच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहां पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
1: जी।

0: प्रतिमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाए। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है।
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उनके

0: किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं, फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
1: तो आपकी रचनाओं में जो आपके किरदार है वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं, या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूं, आसपास की घटनाओं से लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
0: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं तो आपको भाषा भी उसकी वैसे ही लेनी पड़ेगी, ना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी।

0: में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं तो आपको भाषा भी उसकी वैसे ही लेनी पड़ेगी, बिना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
1: जी,
0: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना। हाँ
1: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है।
0: जी,
1: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
0: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहां माता जी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहां पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहां आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे। वो 9 महीने आप तो निश्चिंत थे,
1: बिल्कुल
0: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो। 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपए आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं, मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपए देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
1: माध्यम बनी।
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके। तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी,
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी।
1: जी जी, एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
1: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी।
0: जी,

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिससे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही है, छलांगे मारती है। ये भी लिख दो, वो भी लिख दे, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना। आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं। और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरूह होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
0: बिल्कुल,
1: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
0: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
1: देखिए, क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा, खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
0: हर पलम सीखते हैं।

0: जी
1: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
0: बहुत संघर्ष रहा है जीना, जो है ना वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और हम उपस्थित है युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युववाणी को लेकर के, अभी से लेकर के 5:40 पर 40 मिनट तक दोस्तों हम आपके साथ बने रहेंगे इस कार्यक्रम में। अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में कुछ लोकगीत। तो देर न करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं बोध नारायण सिंह के स्वर में ये लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है, बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 0627222481, मोबाइल नंबर हमारा होगा 9430029353। कृपया एक बार पुनः नंबर सुन लें 0627222481, मोबाइल नंबर होगा 9430029353।

0800-293-353। प्रसारण समय याद रखें रविवार 12 जुलाई 2026, समय होगा दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए कल्याणी कुमारी के स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप उषा देवी के स्वर में ये लोकगीत सुन रहे थे। और देखिए ना दोस्तों, यूं गीत सुनते सुनवाते धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। और अब आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब वक्त हो चला है फिल्म संगीत का, तो कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म भूल भुलैया 3 का यह गीत, श्रेया घोषाल की आवाज़ में। बोल हैं समीर के और संगीत निर्देशन अमाल मल्लिक एवं प्रीतम का है।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म कनेक्ट का यह गीत सुनिए, बेनीदयाल हानिया नफीसा की आवाज में। बोल हैं आकांक्षा सेट्ठी के और संगीत निर्देशन पृथ्वी चंद्र शेखर का है।

अब सुनिए हाउसफुल फाइव का यह गीत मधुवंती बागची एवं सुमंतु मुखर्जी की आवाज़ में, बोल हैं कुमार के और

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म यारियां टू का यह गीत अरिजीत सिंह एवं मनन भारद्वाज की आवाज़ में। बोल थे मनन भारद्वाज के और संगीत निर्देशन भी मनन भारद्वाज का था। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, श्रोताओं, कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 0627222481, मोबाइल नंबर होगा 9430029353। प्रसारण समय याद रखें रविवार 12 जुलाई 2026, समय होगा दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से। शाम के 6 बजने ही वाले हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग

0: पासवान ने कहा कि यह योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित दो दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। गाम घर संध्या 6:30 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 7:00। फिल्म संगीत का वक्त होगा संध्या 7:52 पर तथा रात्रि 8:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। हमारा पर्यावरण कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात 9:30 पर आप सुनेंगे संस्कृति भारती, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन, कृषि चर्चा 5:55 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा 6:05 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य चर्चा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनते हैं प्रातः 6:10 पर प्रतिदिन। रामचरितमानस गान 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे प्रातः 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त होगा दिन में 9:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे तथा 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। बच्चों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा फुलवारी, जिसे हम

दिन में 10:30 पर प्रसारित करेंगे। एक बार पुनः सुन लीजिए, 10:30 पर आप सुनेंगे फुलवारी कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। हेलो जिंदगी कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। सखी बहिन कार्यक्रम आप सुनते हैं दोपहर 12 बजे रविवार को। मैथिली नाटक आप सुनेंगे 12:30 पर। देशभक्ति गीत दिन में 1:10 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा कार्यक्रम आपके अनुरोध पर आप सुनेंगे 1:15 पर। रोजगार सूचना दोपहर 2:10 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे गजल या गीत जो गैर फिल्मी होंगे। विद्यापति गीत संध्या 6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा मैथिली संवाद आप सुनेंगे 6:25 पर शाम में। 6:30 पर आप सुनेंगे गाम घर कार्यक्रम तथा फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे संध्या 7:52 पर। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे क्रीड़ा जगत। रविवार रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत तथा रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत। आज हम आपको सुनवाएंगे एक ही कलाकार गौतम मिश्र के गाए कुछ विद्यापति गीत।

प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, कौशल विकास युवाओं को सुचारू रूप से काम करने में सक्षम बनाने का न सिर्फ एक प्राथमिक साधन है, बल्कि बेरोजगारी और अल्प रोजगार की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। युवाओं में कौशल विकास और विकसित भारत का लक्ष्य, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे फोन नंबर होंगे 0627222481, मोबाइल नंबर हमारा होगा 9430029353। प्रसारण समय याद रखें रविवार 12 जुलाई 2026, समय होगा दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद संवादक संग हम छी कामिनी ठाकुर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कहलनि अछि जे लोकतंत्र मे मतभेद स्वाभाविक अछि, मुदा संविधानक प्रति प्रतिबद्धता आ जनकल्याण सर्वोपरि हेबाक चाही। श्री राधाकृष्णन गयाजी के बिपाड़ परिसर मे विधानसभा सदस्य लोकनिक प्रशिक्षण शिविर सँ प्रबोधन कार्यक्रमक उद्घाटन सत्र के संबोधित कऽ रहल छलाह। ओ जनप्रतिनिधि लोकनि सँ लोकतांत्रिक मूल्य, पारदर्शिता आ जनता के प्रति जवाबदेही के सर्वोच्च प्राथमिकता देबाक आह्वान कयलनि। प्रबोधन कार्यक्रम के संबोधित करैत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन कहलनि जे जनसेवा के प्रभावी बनेबाक लेल जनप्रतिनिधि लोकनि के संसदीय विधायी कार्यक हरेक पहलू के प्रशिक्षण देबाक निर्णय स्वागत योग्य डेग अछि। कार्यक्रम के संबोधित करैत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधायक लोकनि सँ अपन अपन विधानसभा क्षेत्रक समग्र विकास के लेल विस्तृत कार्य योजना तैयार करबाक आह्वान कयलनि अछि। कार्यक्रम के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ विधान परिषदक सभापति अवधेश नारायण सिंह सेहो संबोधित कयलनि। दू दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रमक उद्देश्य नव आ पुरान सभ सदस्य लोकनि के संसदीय कार्य प्रणाली आ विधानसभाक नियमावली सँ परिचित करायब अछि। प्रदेश में आई सँ 80 वर्ष आ ओहि सँ बेसी आयु वर्गक वरिष्ठ नागरिक लोकनिक लेल घर बैसल भूमि, प्लॉट आ फ्लैटक निबंधनक प्रक्रिया शुरू भऽ गेल अछि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह सँ एहि सुविधा के शुभारंभ कयलनि। एहि दरमियान ओ मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के सेहो शुरुआत कयलनि। एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी आ विजेंद्र प्रसाद यादव सेहो उपस्थित छलाह। मद्य निषेध उत्पाद आ निबंधन विभागक मंत्री मदन सहनी जनौलनि जे एहि सेवा के अंतर्गत पेपरलेस निबंधन, CO द्वारा निबंधन संबंधी पूर्व जनतब आ GIS तकनीकक माध्यम सँ स्थल निरीक्षण जकां सुविधा सेहो प्रदान कयल जायत। ई व्यवस्था प्रदेशक सभ 145 निबंधन कार्यालय मे लागू होयत। बांकीपुर विधानसभा उपचुनावक लेल भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा 13 जुलाई के नामांकन दाखिल करताह। पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी पटना में संवाददाता लोकनि सँ गपशप में ई जनतब देलनि। एम्हर जनसुराज पार्टीक उम्मीदवार प्रशांत किशोर सेहो 13 जुलाई कऽ अपन नामांकन पर्चा भरता। उपचुनाव में एखन धरि 4 प्रत्याशी लोकनि अपन नामांकन पर्चा दाखिल कयलनि अछि। जे उम्मीदवार लोकनि पर्चा भरलनि अछि ओहि मे प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया के प्रेम शंकर प्रसाद, प्रगतिशील जनता पार्टीक मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव आ निर्दलीय सिकंदर कुमार आ मिथिलेश कुमार सम्मिलित छथि। उपचुनावक लेल नामांकनक अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित अछि। ओतहि उम्मीदवार 16 जुलाई धरि अपन नाम आपस लऽ सकैत छथि। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा कहलनि अछि जे प्रदेश मे उर्वरक के पर्याप्त उपलब्धता अछि। श्री सिन्हा किसान लोकनि सँ आग्रह कयलनि अछि जे ओ सभ उर्वरक किनबा काल रसीद अवश्य लथि।

0: प्रदेश मे मॉनसूनक सक्रियता सँ राजधानी पटना सहित कतेको जिला मे काल्हि राति सँ लगातार रूकि रूकि कऽ वर्षा भऽ रहल अछि। मौसम विभागक अनुसार अगिला 24 घंटा के दरमियान मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी आ पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार, पूर्णिया जिला मे भारी वर्षा हेबाक चेतावनी जारी कयल गेल अछि। विभाग कहलक अछि जे अगिला 7 दिन धरि राज्य मे वर्षा के स्थिति बनल रहत। आइ विश्व जनसंख्या दिवस अछि। हरेक वर्ष 11 जुलाई के मनाओल जायवला ई दिवस बढ़ैत जनसंख्या सँ जुड़ल चुनौती आ अवसरक प्रति जागरूकता बढ़ेबाक लेल मनाओल जायत अछि। एहि वर्ष विश्व जनसंख्या दिवसक विषय अछि युवा सभक आशा आ आकांक्षा के साकार करब आइ आ भविष्यक लेल। विश्व जनसंख्या दिवस पर प्रदेश भरि मे कतेको जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। अरवल जिलाक सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर एक हाईवा आ ऑटो रिक्शा के भेल टक्कर में 4 गोटा के मृत्यु भऽ गेलनि, जखनकि 2 गोटा घायल भऽ गेलाह। सब मृतक अरवल जिला के रह वला छलाह। बगहा के एक अदालत मानव तस्करीक मामला में पश्चिम बंगालक 2 आरोपी के दोषी करार देलक अछि। सजा के बिंदु पर 13 जुलाई के सुनवाई होयत। अदालत मात्र 24 दिन में एहि मामला के सुनवाई पूरा कयलक अछि। अररिया जिला के बथनाहा थाना क्षेत्र सँ पुलिस आ एसटीएफ के टीम एक 4 पहिया वाहन सँ 18 किलो गांजा के संग एक तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि। किशनगंज में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित 10 दिवसीय स्पंदन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट फुटबॉल प्रतियोगिता सम्पन्न भऽ गेल। फाइनल स्पर्धा में पूर्णिया आदिवासी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के टीम विजेता बनल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम काम घर।

के संभावना जताओल जा रहल अछि। एहि अनुमान के तैयार करबाक हेतु सेंसस ब्यूरो जनसंख्या, प्रजनन दर, मृत्यु दर और माइग्रेशन से जुड़ल उपलब्ध आंकड़ा के विस्तृत विश्लेषण कयल जाइत अछि। कईटा देशक आंकड़ा में त्रुटि के सुधारे के लेल आवश्यक संशोधन सेहो कयल जाइत अछि। चूंकि किछु देशक उपलब्ध डेटा कई वर्ष पुरान भऽ चुकल अछि, एहि लेल वर्ल्ड पॉपुलेशन क्लॉक में प्रदर्शित आंकड़ा पूर्व अनुमान के आधार पर तैयार कयल गेल प्रक्षेपण होइत अछि। नव आंकड़ा उपलब्ध भेला पर एहि अनुमान और भविष्यवाणी में बदलाव सेहो संभव अछि। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और अमेरिका दुनिया के 5 सबसे बेसी आबादी वाला देश शामिल अछि। 1 जुलाई 2026 के अनुमानक अनुसार अमेरिका के जनसंख्या 34,26,00,000 भऽ गेल। उल्लेखनीय अछि कि अमेरिका के अलावा शेष चारू सबसे बेसी आबादी वाला देश एशिया महाद्वीप में स्थित अछि, जे विश्वक जनसंख्या संरचना में एशिया के महत्वपूर्ण भूमिका के दर्शाबैत अछि। तऽ ई जे बढ़ैत जनसंख्या अछि, ई बढ़ैत जनसंख्या के आवश्यकता सेहो बढ़ि रहल अछि। एहि आवश्यकता के पूरा करै लेल पृथ्वी के जे संसाधन अछि ओकर अंधाधुंध शोषण भऽ रहल अछि। ई अंधाधुंध शोषण हमरा विनाशक दिस लऽ जा रहल अछि। एहि लेल आवश्यकता ई अछि कि जनसंख्या के जे तीव्र वृद्धि दर अछि एकरा पर तत्काल विराम लगायल जाय और विकासक जे व्यवस्था अछि ओ एहन व्यवस्था हुए जे अहाँके टिकाऊ हुए, जाहिमे आजुक जे पीढ़ी अछि ओकर आवश्यकता के ध्यान में रखले जाय, संगे संग जे आबे वाला पीढ़ी अछि ओकर आवश्यकता के ध्यान बेसी राखल जाय, ताकि जैसे आबे वाला पीढ़ी लेल ई पृथ्वी जे रहा ई सुंदर सुरक्षित रहा और हुनक भविष्य सुंदर हुए। आगू हम सब गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने किया ने एकटा गीतनाद सुन ली।

सखी हे करियो मैया के ध्यान। वास्तव में माँ भगवती के ध्याने से जीवन का संपूर्ण और समग्र विकास होते हैं। अब हम सब एक आवश्यक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनब। श्रोतालोकिन, कौशल विकास युवा के सुचारू रूप से काज करवा में सक्षम बनेबा के हेतु मात्र एक प्राथमिक साधन नहीं है, परंच बेरोजगारी और अल्प रोजगारक चुनौती से निपटे में सेहो सहायक है। युवा लोकन में कौशल विकास और विकसित भारतक लक्ष्य यह है। आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी का अगला अंकक विषय विशेषज्ञ हेता प्रोफेसर मुनेश्वर यादव जे विभागाध्यक्ष थे स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़वा के हेतु हमर सबक फोन नंबर होयत 0627222281। एक बार फिर से सुन लिया 0627222281 और मोबाइल नंबर है 9430029353। एक बार फिर से सुन ले जाओ 9430029353। समय याद रखब रविवार कल 12 जुलाई 2026 दिन के 11 बजे सूचना संपन्न भेल। श्रोता लोकन, एखन जे जीवन के जीवे के शैली है, जे खान पान या और जेहन तनाव भरल जीवन है, एमे टाइप टू डायबिटीज एकटा क्रॉनिक दीर्घकालिक स्थिति है जैमे शरीर इंसुलिनक उचित उपयोग नहीं कर पाबित है या पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाबी है। एकरा कारण रक्त में ग्लूकोज जे शुगर का स्तर है बढ़ जाते है, जे शरीर के अंग के नुकसान पहुंचा सकेत है। टाइप टू डायबिटीज के जे किछ मुख्य गप है वो एहि प्रकार है कि बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली और आनुवंशिक कारण से होइत अछि। इंसुलिन प्रतिरोध शरीरक कोशिका इंसुलिनक प्रति उचित तरीका से प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करैत अछि, जैसे खून से शुगर कोशिका तक नहीं पहुँच पाबित अछि। अग्नाशय पैनक्रीज पर प्रभाव, शुरुआत में पैनक्रियाज बेसी इंसुलिन बनाबित अछि, मुदा समय के संग ई पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाबित अछि। आब एकर जे सामान्य लक्षण अछि, ओ लक्षण अक्सर अहाँके बहुत धीरे धीरे विकसित होइए, बहुत बेसी प्यास लगने, बार बार पेशाब एने, बहुत बेसी थकान महसूस होने आ बिना कोनो कारण के वजन कम होने, घाव या चोट का बहुत देर से भरने, धुंधला दिखाई देने। बचाव और उपचार डायबिटीज का अपने सब संपूर्ण तरीका से खत्म करवा के अगर कोनो निश्चित इलाज नहीं है, मुदा एकरा नियंत्रित और रोकल जा सकैए। आहार में चीनी, प्रोसेस्ड फूड, कार्बोहाइड्रेट कम कर के फाइबर और पौष्टिक खाना खाए, व्यायाम में नियमित शारीरिक गतिविधि इंसुलिन के प्रति शरीर के संवेदनशीलता के बढ़ावित, नियमित रूप से योगा करी आसन।

संग अहाँके व्यायाम सेहो करी। दवाई आओर इन्सुलिन जँ आहार आओर व्यायामसँ शुगर नियंत्रित नहि होइए तऽ डॉक्टर मुँहसँ खाइवला दवा या इन्सुलिनके इंजेक्शन लिखैत अछि। तऽ जँ हम ईसब गपके ध्यानमे राखब तऽ निश्चित रूपसँ छै से अहाँके ई टाइप 2 डायबिटीज जे अछि एकरा नियंत्रित कऽ सकै छी, कम कऽ सकै छी आ स्वस्थ रहि सकै छी शारीरिक आ मानसिक रूपसँ। ओनाही शारीरिक आ मानसिक रूपसँ स्वस्थ रहिके एकटा प्रमुख आधार अछि अहाँके गीत संगीत। गीत संगीत जे अछि ओ शारीरिक आओर मानसिक तनावके दूर करैत अछि, थकानके दूर करैए आओर शरीर आ मनके मस्तिष्कके तरोताजा करैए। तऽ किया नहि हमसब एकटा गीत सुनी।

थायराइडक समस्या, थायराइड का अति सक्रियता और अल्प सक्रियता दोनों जो है बिसरे की बीमारी का कारण बन सके। अवसाद और चिंता मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और याददाश्त का बहुत प्रभावित करते हैं। जो हम चिंताग्रस्त छी या अवसादग्रस्त छी, अपर्याप्त नींद, स्लीप एपनिया और अनिद्रा मस्तिष्क का कार्य क्षमता और स्मृति के जे ओकर समेकन अछि ओकर कम करिए। दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या जेना मधुमेह भेल, हृदय रोग भेल या उच्च रक्तचाप स्मृति संबंधी समस्या के खतरा बढ़ाबित अछि। तो एहि कारणक समाधान करैसँ अक्सर अस्पष्टता वापस आबि जाइत अछि आ बिसरे की बीमारी सेहो कम भऽ जाइए। अब 60 वर्षक आयु के बाद मस्तिष्क स्वास्थ्य के सहारा देने, मस्तिष्क के ध्यान राखैसँ स्मृति सुरक्षित रहते और संज्ञानात्मक गिरावट अहाँ के धीमा भऽ जाइए। किछु जे सिद्ध उपाय अछि ओहि प्रकार के मानसिक रूप से सक्रिय रही, किताब पढ़ी, पहली सुलझावी, पजल्स के सुलझावी या नव कौशल सीखी, शतरंज भेल या शब्द पहली जेहन रणनीति वाला खेल खेली, बातचीत और सामाजिक गतिविधि में भाग ली, शारीरिक स्वास्थ्य का प्राथमिकता दी, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट पैदल चली या व्यायाम करी, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह को नियंत्रित करी, नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवावी, पोषण पर ध्यान केंद्रित करी, पत्तेदार हरियर तीमन तरकारी, जामुन, मेवा, साबुत अनाज जेहन पोषक तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थ खाए, मछली या अहाँ के तीसी के बिया से प्राप्त ओमेगा 3 फैटी एसिड को अपना आहार में शामिल करी आ पर्याप्त मात्रा में जल पीवी और शराब पीवे से एकदम परहेज करी, नींद के गुणवत्ता में सुधार करी, राति में समय पर सवेरे सुति जाए आ सुते से पहिने हाथ पैर के धो कर किछु देर ध्यान करी आ ओकर बाद छै से आर बेडरूम पर जाए आ तखन सूती। बेडरूम का अंधेरा, अन्हार और ठंडा रखी आ सूते से पहिने कैफीन, कॉफी, चाय या छै से मोबाइल के उपयोग एकदम सीमित कर दी। योग, ध्यान या छै से अहाँ के प्राणायाम सब गहरा सांस लै के अभ्यास करी। जे दोस्त लोकनि छथि या मित्र लोकनि या परिवार के संग सामाजिक रूप से जुड़ल रही आ एहन शौक अपना भी जैसे अहाँ के खुशी और आनंद भेटा। जीवन शैली में ई बदलाव मात्र मस्तिष्क के स्वास्थ्य के बेहतर नहीं बनाबी है बल्कि समग्र स्वास्थ्य के लाभ सेहो पहुँचाबी है। आ जो स्मृति में कोनो प्रकारे परिवर्तन भ रहल अछि तो चिकित्सकीय सलाह लेनाय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण अछि। दैनिक गतिविधि या काज में बाधा अन्य जे आबि जाइए, ऐसे समय, स्थान आ लोक के बारे में बार बार भ्रम उत्पन्न होइए, ऐसे व्यक्तित्व या मनोदशा में होइ वाला परिवर्तन शामिल होइत अछि आ किछु समय में स्थिति तेजी से बिगड़ जाइत अछि। तब प्रारंभिक मूल्यांकन से प्रतिवर्ती कारण के पहचान करे में अहाँ के सहायता भेटत अछि और जो आवश्यक हुए तो MCI या मनोभ्रंश जेहन स्थिति के लिए उपचार प्रदान कैल जाइत अछि। 60 वर्षक आयु के बाद याददाश्त कमजोर भेने हमें बराबर अल्जाइमर के संकेत नहीं होते हैं, मुदा कखनो कभार जो हम जो बिसरी छी इस सामान्य उम्र बढ़े का हिस्सा है, मुदा लगातार जो बनल रहिया स्थिति तो बिगड़ित लक्षण का अहाँक अनदेखा नहीं करवा के चाहिए। स्वस्थ खान पान का आदत अपनाबी आ सकारात्मक सोच और चिंतन राखी, खुश रही, प्रसन्न रही, किछु देर भगवान का ध्यान करी, भजन करी, स्वास्थ्य का ध्यान रखैत और मानसिक रूप से सक्रिय रहकर वरिष्ठ नागरिक के रूप में मस्तिष्क स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के बनाकर रखबा के चाहिए। और जो याददाश्त में बदलाव चिंताजनक लागे तो डॉक्टर से जल्द परामर्श लेबा के चाहिए और बेहतर उपचार और देखभाल के योजना बनाबे में अहाँक देर नहीं करवा के चाहिए। अब हलुक जे निर्जलीकरण नहीं जैसे वृद्ध व्यक्ति के एकाग्रता, ध्यान और स्मृति प्रभावित हो, पर्याप्त मात्रा में जल पीबी आ इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थ पीने बेहद आवश्यक है। 60 वर्ष का आयु के बाद कैफीन याददाश्त में मदद करते मुदा एकदम कम से कम चाय या कॉफी पीबी। जो अधिक मात्रा में सेवन कर नींद में खलल आबी जकर जै कारण मस्तिष्क के दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़े तो कम से कम चाय और कॉफी पीबा के चाहिए। और यो देखबा के अबैया कि

अहाँके 60 वर्षके बाद सुनैके क्षमतामे सेहो कमी आबैत अछि। तऽ एहिमे अछि कि अहाँके जे श्रवण यंत्र यऽ ओकर उपयोग करू या श्रवण समस्याके समाधान कऽ अपन स्मृतिके बेहतर बनाबैमे सहायक भऽ सकैए। आ भोरके समय आमतौरपर छै से एकदम उठबाके चाही, किया तऽ कहल गेल अछि कि जँ सूर्यके उगलासँ पहिने हम उगै छी, अहाँके उठै छी, तऽ हमर सब काज यऽ ओ अगुआयल रहैए, आ सूर्यके उगलाके बाद उठै छी तऽ सब काज हमर पछुआयल रहैए। तऽ एकदम छै से अहाँके सूर्यके उगैसँ पहिने उगी उठी आओर निश्चित रूपसँ छै से अहाँके योग करी, व्यायाम करी, किछु देर ध्यान करी, तऽ निश्चित रूपसँ हमसब स्वस्थ रहब। आ आरामके बाद एकाग्रता आओर ऊर्जाके स्तर बेसी बढ़ैए, तऽ जखन किछु थकि जाइ छी तऽ निश्चित रूपसँ छै से आराम करबाके चाही। आ महत्वपूर्ण काजके योजना दिनके शुरुआतेमे बना लेनाइ अहाँके लेल ई मददगार होइए, किएक तऽ जँ अहाँ योजना बना लै छी, ओकरा लिख लै छी कि आइ हमरा दिनमे की करैके यऽ, ताहिमे बिसरैके सम्भावना नहिके बराबर रहैए। तऽ गाम घरके जे समय अछि ओ सम्पन्न भऽ रहल यऽ। आब हमसब खेती पथारीके कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस चली। तऽ श्रोता लोकनि, एखन जे समय अछि ओ खरीफ मौसममे तिलक जे आधुनिक खेती यऽ ओ कम लागत आओर कम जलमे बेहतरीन छै से अहाँके लाभ दैए। वैज्ञानिक तरीकासँ खेती जे हमसब करै छी तऽ एहिमे अहाँके उन्नत किस्मक चयन, बीया उपचार आओर पाँतिमे बाओ आओर संतुलित खादक प्रयोग से करै छी। एकर फसिल जे यऽ ओ 85-90 दिनमे पाकि कऽ तैयार भऽ जाइत अछि। तिलक जे उन्नत खेतीके उचित समय आओर एकर जे भूमि अछि ओ एहि प्रकारे अछि कि एकर समय यऽ खरीफ तिलक बाओके लेल जूनक अन्तिम सप्ताहसँ लऽ कऽ आ जुलाईके मध्य सबसँ उपयुक्त समय होइत अछि। एकरा लेल जे खेतके तैयारी करी ओ अहाँके एहन प्रकारके हेबाके चाही कि खेत जे हेबा हुए ओ रेतीली हुए, दोमट हुए, हलुक माटि सबसँ नीक होइत अछि, जाहिमे जलक निकासीके व्यवस्था नीक हेबाके चाही। आ जल भरावला जे खेतमे एकर खेती बिल्कुल नहि करी। आ जुलाईसँ अक्टूबरमे ई जे तिलके आधुनिक खेती करै छी तऽ एहि प्रति हेक्टेयर 1000-1200 किलोग्राम लगभग 10-12 क्विंटल तक उपज आसानीसँ पाबि सकै छी। आ अपन क्षेत्रक जलवायु माटिक अनुसार जे प्रमाणित बीया अछि ओकरे चुनाव करी। किछु प्रमुख जे खरीफ किस्म अछि ओ एहि प्रकारे अछि, RT46, ई 85-90 दिनमे पाकि कऽ तैयार होइए आओर एकर जे उपजा होइए ओ लगभग 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होइए। TKG 308 ई 80-85 दिनके फसिल अछि जे 6-7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन दैत अछि आओर कोनो प्रकारक रोगके प्रति सहनशील होइए। खेतक तैयारी आ बाओ जे करै छी एहिमे खरीफ तिलक जे बाओके सबसँ उचित समय अछि ओ जूनके अन्तिम सप्ताहसँ जुलाईके मध्य धरि होइत अछि। बाओके तरीका, बीयाके छिटकबा विधिके बजाय पाँतिमे एकर बाओ करबाके चाही। आ पाँतिके बीच 30-45 सेंटीमीटर आओर गाछक बीच 10-15 सेंटीमीटरके दूरी रखबाके चाही। आ बीया दर जे हेबाके चाही ओ 1 हेक्टेयर खेतक लेल 506 किलोग्राम बीया पर्याप्त होइत अछि। आ बीयाके उपचार कऽ ली ताहिसँ की होइए कि फसिल जे होइए ओ स्वस्थ होइए, आरोग्य होइए आ पुष्ट होइए। तऽ बाओसँ पहिने बीयाके उपचारित केनाइ बड़ जरूरी अछि ताकि फसिल फफूंद जनित रोगसँ बचल रहए। प्रति किलो बीयाके 2 ग्राम थायरम या कार्बेन डाजिम से उपचारित करी। एकर बाद बीयाके ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो सुपचारित सेहो कऽ सकै छी। खाद आओर उर्वरकमे नीक उपजाके लेल माटि परीक्षण बहुत आवश्यक अछि। सामान्यतः खेतक तैयारीके समय 2-4 टन सरल गोबरक खाद बाओके 10-15 दिन पहिने खेतमे मिला दी। आ बाओके समय रासायनिक उर्वरकके रूपमे लगभग 12 किलो यूरिया, 112 किलो DAP आओर 34 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर दी। पटौनी आओर खरपात नियंत्रणमे

पटौनी, खरीफ तिल मुख्य रूपसँ वर्षा आधारित फसिल अछि। जँ वर्षा नहि हुए आ बेसी अंतराल पर हुए तऽ आवश्यकता अनुसार पटौनी करी। जल भराव के स्थिति नहि बनो दी, किया तऽ तिल के फसिल जल भराव सहि नहि सकैए। आ बराबर कमौनी करैत रही, बाग के 15-20 दिन के बाद गाछ का छटाई करी और खर पात निकाले के लेल पहिल कमौनी करी। आ कटाई और मराई में जखन गाछ के पात पियर भ के झड़ लागैए और फलिया के रंग हलुक पियर या छै से अहाँ के भुअर भ जाइए, तब फसिल के निश्चित रूप से कटाई करी। कटाई के बाद गाछ के खेत में किछु दिन सूख दी आ फिर डंडा से ओकरा पीट के मराई के बिया अलग कर ली। भंडारण से पहिने बिया के रौद में नीक जेना सुखा दी ताकि नमी जे अछि ओ 8-10% से बेसी नहि रहे। तो एहि प्रकारे जे हमसब छै से अहाँके तिल के खेती करब तऽ निश्चित रूप से जे होयत उपजा अहाँके ओ खूब नीक होयत। आ एकर जे सबसे नीक जे वैरायटी अछि ओ अछि तिल के सबसे नीक वैरायटी। अहाँके क्षेत्रक जलवायु और माटि पर निर्भर करैए। बम्पर उपजा के लेल आ नीक तेलक लेल RT 351, TKG 22, गुजरात तिल 2 और 408 नंबर सफेद तिल सबसे नीक किस्म मानल जाइए। तो आगू हम सब गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने एकटा जे प्रायोजित कार्यक्रम अछि उड़ान से सुनी।

0: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं अनकर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हमेशा की तरह आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें, क्या पता कार्यक्रम सुनने के बाद आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें। तो श्रोताओं, हमारा नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
2: आज हम बात करते हैं नशे की। नशे के कारण कई घर बर्बाद हो जाते हैं। नशा बहुत सी समस्याओं का जड़ है, ये तो हम सब जानते हैं, पर फिर भी आज युवा पीढ़ी नशे में फंसी हुई है। श्रोताओं, आज हम आपको एक नाटक के द्वारा सुनाते हैं कि ऐसे परिवार के बारे में जो नशे के कारण बर्बाद हो गया था।
3: अरे सुनती हो राजू की माँ, राजू के लिए रिश्ता आया है। लड़की अच्छे घर की है और सुशील है।
4: सुनो जी, हमारा बेटा बहुत सुंदर है तो लड़की भी सुंदर होनी चाहिए।
3: हाँ हाँ, लड़की बहुत सुंदर है।
4: फिर ठीक है, एक बार राजू से भी पूछ लेते हैं।
3: अरे जब राजू श्याम को घर आ जाएगा तुम उससे बात कर लेना।
4: अरे आ गया बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। चलो हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो।
5: ठीक है माँ।
4: राजू बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी।
5: कहो माँ, क्या कहना है?
4: बेटा आज तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, लड़की बहुत सुंदर है और सुशील भी। तुम कहो तो हम लड़की वालों से बात करें।
5: जैसा तुम्हें ठीक लगे माँ, आप वैसा ही करें। आप मेरा अच्छा बुरा मुझसे अधिक जानती हो, ठीक है?
4: ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, कल बात करेंगे।
3: राजू की माँ, क्या तुमने कल राजू से बात की थी क्या?
4: हाँ जी, मैंने शाम को राजू से बात की थी, वो शादी के लिए तैयार है। अब आप लड़की वालों से बात कर लीजिए।
3: ठीक है, फिर आज मैं लड़की वालों से बात कर लेता हूँ।
2: फिर राजू के पिताजी लड़की वालों के घर चले जाते हैं और राजू के रिश्ते की बात करते हैं। वहीं लड़की के पिताजी राजू के पिताजी से पूछते हैं कि लड़का क्या करता है। राजू के पिताजी बताते हैं कि राजू मेरा बेटा प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और अच्छा कमाता है। फिर दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं और राजू और लता का रिश्ता पक्का करते हैं। फिर कुछ समय पश्चात राजू और लता की शादी हो जाती है।

0: सुबह उठकर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है और रसोई में काम करने चली जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था और लता भी अपने परिवार में बहुत खुश थी। कुछ समय के पश्चात लता के ससुर की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राजू के कंधे पर आ गई और राजू परेशान रहने लगा और सोचने लगा कि वह सब कैसे संभालेगा।
1: लता, जल्दी से खाना ला दो, मुझे काम पर भी जाना है।
2: जी, खाना तैयार है, खा लीजिए।
3: राजू बेटा, ज्यादा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, तू आराम से खाना खा ले।
1: पता नहीं कब ठीक होगा। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ।
4: राजू, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो।
1: क्या बताऊँ यार, पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि क्या करूँ।
4: दोस्तों से मिलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा।
1: चलो ठीक है, शाम को चलते हैं।
2: माँ जी, वो अभी घर नहीं आए, काफी देर हो गई है। हर रोज तो 6 बजे तक घर आ जाते हैं।
3: बहू, फोन लगा कर तो पूछ, वो कहाँ रह गया है।
2: जी माँ जी।
1: हेलो।
2: हेलो जी, आप अभी तक घर नहीं आए, बहुत देर हो गई है, माँ जी भी पूछ रही है।
1: लता, माँ को कह दो चिंता ना करे, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, थोड़ी देर बाद आता हूँ।
2: ठीक है जी।
3: बहू, क्या कहा राजू ने, कहाँ पर है वो।
2: माँ जी, वो अपने दोस्तों के साथ हैं, जल्दी घर आ जाएंगे, आप चिंता ना करें। चलिए आप खाना खा लीजिए।
0: फिर कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और लता दरवाजा खोलती है। वह देखती है कि राजू नशे की हालत में खड़ा है, उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। यह देखकर लता को बहुत दुख हुआ। वो राजू को चुपके से उसके कमरे में ले गई। यदि माँ जी को इसके नशे के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा।
2: सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कल आप नशे की हालत में घर आए, अगर माँ जी देख लेते तो उन्हें कितना बुरा लगता। यदि आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए।
1: चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना और क्या नहीं, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है।
2: जी वो मैं तो बस।
1: मैंने कहा ना, चुप रहो, जाओ अपना काम करो और जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ।
3: बहू, अरे ओ बहू, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दे।
2: जी माँ जी, ये लो माँ जी।
1: लता, लता, अरे कहाँ मर गई, मैंने खाना लाने के लिए कहा था, अब तक क्यों नहीं लेकर आई।
2: जी अभी आई।
3: अरे बहू, ये राजू को क्या हुआ, वो इतने गुस्से में क्यों चिल्ला रहा है।
2: कुछ नहीं माँ जी, आप चाय पीजिए, मैं अभी आई, ये लीजिए खाना खा लीजिए।
1: थू, ये क्या बनाया है, ना इसमें नमक है ना मिर्च। अरे तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता क्या, अभी बताता हूँ तुझे।
2: माँ, मत मारिए मुझे, क्यों मार रहे हो।
1: अभी बताता हूँ तुझे।
3: अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, क्यों मार रहा है बहू को, छोड़ इसे मत मार, क्या हुआ ये तो बता बेटा, क्या किया है इसने।
1: अरे माँ, आप बीच में मत बोलिए, आपने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है, तभी तो ये कोई काम ढंग से नहीं करती ना, आज नहीं छोड़ता तुझे।
3: तू छोड़ इसे और बाहर जा। बहू चुप हो जा, रो मत, मैं समझाऊंगी उसे, अभी वो गुस्से में है ना।
2: माँ जी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि कुछ पूछूं तो मुझे बताते भी नहीं, क्या हुआ है, इतना नाराज क्यों है।
3: कोई बात नहीं बहू, अभी वो गुस्से में है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा।
0: धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ महीने बाद लता ने एक बेटी को जन्म दिया। लता और उसकी सास बहुत खुश थी। वहीं राजू शराब के नशे में अधिक डूबता चला गया। वह हर रोज शाम को नशे के हालत में घर आता और घर में लड़ाई झगड़े और मारपीट करता। राजू ना तो लता के बारे में सोचता और ना अपनी बेटी के बारे में, बस सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता। धीरे धीरे उसने काम पर भी जाना छोड़ दिया।

0: घर के हालात बहुत ही खराब हो गए।
1: बेटा राजू, तुमने ये क्या हाल बना लिया है? तुझे ना खुद का होश है और ना ही बच्चे के खाने पीने का। घर में कुछ सामान भी नहीं है।
2: माँ जी, आप किसे कह रही हैं? ये तो शराब के नशे में पड़े रहते हैं, इन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। मैंने पड़ोस की बहन से बात कर ली है, कल से मैं मजदूरी करने के लिए जाया करूँगी। आप अपने और अपने पोती का ध्यान रखना।
3: अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई है?
1: अरे बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? बहू घर पर नहीं है।
3: घर पर नहीं है? अरे कहाँ मर गई वो?
1: वो आज खेत में मजदूरी करने गई है, शाम को ही घर आएगी।
3: मजदूरी करने? अरे माँ, वो मजदूरी करने नहीं, मेरी बेइज्जती करने गई है। वो लोगों को दिखाना चाहती है कि मैं काम नहीं करता, बस वही काम करती है। आने दो उसे, आज शाम को मैं बताता हूँ उसे।
2: लो माँ जी, आज जो मजदूरी मिली है, मैं उससे घर का राशन लेके आई हूँ।
1: ठीक है बहू, अच्छा किया, रसोई में रख दो।
3: आ गई कुलटा, किस यार से मिलने गई थी बता मुझे?
2: ये क्या कह रहे हैं आप? आप होश में तो हैं? कुछ भी कह रहे हो, छोड़िए मुझे।
3: चल निकल मेरे घर से, आज मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा, चल निकल।
1: अरे बेटा छोड़ दे बहू को, क्यों मार रहा है, छोड़ दे।
3: माँ तू बीच से हट जा, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, चल निकल यहाँ से। मेरी बेटी तो मेरे पास ही रहेगी, समझी?
0: फिर लता अपने माता पिता के घर आ जाती और वहीं रहने लगती। लता अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने सिलाई करना सीख लिया और वह अपने गांव में सिलाई का काम करने लगी और अपने माता पिता की मदद करने लगी। लेकिन लता हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती थी और उदास हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ राजू शराब के नशे में पड़ा रहता था, ना ही उसे अपना होश था और ना ही अपनी माँ और बेटी का। उसकी नशे की लत के कारण वह बहुत ही कमजोर हो गया था। एक दिन राजू को उसके पुराने दोस्त ने, जो उसके साथ कंपनी में काम करता था, नशे के हालत में सड़क पर पड़े हुए देखा और उसे उठाकर घर ले गया।
4: नमस्ते आंटी जी, मैं राजू का दोस्त हूँ, हम दोनों ही एक ही कंपनी में काम करते थे।
1: नमस्ते बेटा, आओ अंदर आओ, ये कहाँ मिला तुझे? मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ बेटा।
4: आंटी जी, मैं रास्ते से आ रहा था, राजू मुझे वहीं मिला। क्या हुआ इसे, इसकी ये हालत कैसी हुई और भाभी जी कहाँ है?
1: बेटा क्या बताओ, राजू के पिताजी के जाने के बाद कुछ दिनों बाद राजू ने शराब पीना शुरू कर दी और घर में रोज लड़ाई झगड़े करने लगा। बहू के साथ भी बहुत मारपीट करने लगा और उसे घर से निकाल दिया। मैं क्या करूं बेटा, ये छोटी सी बच्ची भी बिना माँ के पूरा दिन रोती रहती है।
4: आप चिंता ना करें आंटी जी, मैं राजू से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा।
3: अरे श्याम यार, तू यहाँ कैसे और कब आया? और सब ठीक है ना?
4: हाँ यार राजू, मैं तो ठीक हूँ, पर तूने ये क्या हाल बना रखा है, तू शराब पीने लगा? तूने इस शराब के कारण अपनी जिंदगी खराब कर ली है और साथ में अपने परिवार की भी। तेरे इस नशे के कारण तेरा पूरा परिवार परेशान है। पहले तेरा परिवार कितना खुश था, तूने शराब के कारण भाभी जी को भी घर से बाहर निकाल दिया है और तेरी बेटी को बिना माँ के कर दिया। यार राजू, तू अपने नहीं, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच।
3: तू ठीक कह रहा है यार, जब से मैं शराब पीने लगा हूँ ना, मेरे परेशानियाँ और बढ़ने लगी हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ। लता के साथ भी मैंने बहुत बुरा किया, वो भी मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरी वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो गया यार।
4: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सब ठीक हो जाएगा अगर तू चाहे तो।
3: वो कैसे?
4: पहले तो तू इस शराब को छोड़ दे और भाभी को घर ले आ और उससे माफ़ी मांग, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। और कल मैं तेरे लिए कंपनी में बात करूँगा कि तुम्हें वो काम पर रख ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
3: ठीक है यार श्याम, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं कल ही तेरी भाभी के घर जाकर उससे माफ़ी भी मांगूँगा और उसे अपने साथ ले आऊँगा। माँ तुम भी मुझे माफ कर दो।

0: फिर राजू अगले दिन लता के घर जाता है और माफी मांग और लता को घर आने के लिए कहता है। लता भी राजू को माफ करती है और उसके साथ अपने ससुराल आ जाती है। लता को देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है। लता अपनी सास के पांव छूती है और अपनी बेटी के गले लगती है। कुछ दिनों बाद राजू को फिर से कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वह काम करने लगता है। वहीं लता भी सिलाई का काम करती है और दोनों मिलकर कर्जदारों का कर्ज चुकाते हैं।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर आज की कहानी से संबंधित अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। जी हाँ श्रोताओं, हमारा नंबर है
2: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
1: और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति। तब तक के लिए नमस्कार।

किसान भाई लोकनि एखन हमसब एक गुट प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुनै छलहुँ। आब हमसब अहाँके जे खेतीबाड़ीके काज करै छी ताहिमे जे मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान अछि ई बड्ड काज आबी, किया तऽ एहिके आधारपर हमसब खेतीबाड़ी करै छी तऽ निश्चित रूपसँ छै से अहाँके खेतीबाड़ीके काजमे आसानी भऽ जाइए। तऽ ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर आ भारत मौसम विज्ञान विभाग दिससँ जारी 11 जुलाईसँ 15 जुलाई 2026 धरि मौसम पूर्वानुमानक अनुसार उत्तर बिहारके बेसीतर स्थानपर 11-13 जुलाईके बीच मध्यम वर्षा हेबाक अनुमान अछि। समस्तीपुर, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिलाक किछु स्थानपर 11-12 जुलाईके आसपास भारी वर्षा हेबाक सम्भावना अछि। वर्षा के संग संग कतौ कतौ वज्रपात सेहो भऽ सकैए आ तेज हवा बहेक सम्भावना सेहो अछि। पूर्वानुमानके अवधिमे बेसीतर दिनमे आकाशमे हलुकसँ घनगर मेघ लागल रहत। वर्षाक गतिविधिके कारण एहि सप्ताह अधिकतम तापमानमे पिछला सप्ताहके तुलनामे कमी रहबाक सम्भावना अछि। अधिकांश जिलामे अधिकतर तापमान 29-32 डिग्री सेल्सियसके बीच रहबाक अनुमान अछि, जखनकि बेगूसराय, वैशाली, सिवान जिलामे ई 34-36 डिग्रीके बीच रहि सकैए। न्यूनतम तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियसके बीच रहबाक सम्भावना अछि। भोरमे सापेक्षिक आर्द्रता 90-95% आ दुपहरियामे सापेक्षिक आर्द्रता जे यऽ ओ 50-55% रहबाक अनुमान अछि। एहि दौरान हवा मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी दिशामे सँ 15-20 किलोमीटर प्रति घंटाके गतिसँ चलबाक सम्भावना अछि। अब किसान भाई लोकनि, अहाँ सबके जे खेतीबाड़ी करै छी ताहि लेल समसामयिक सुझाव अछि कि पिछला किछु दिनसँ जे वर्षा जल भेल हँ एकर उपयोग करैत प्रभात, राजेन्द्र सरस्वती, राजेन्द्र भगवती जेहन अगात किस्मक बाओ जुलाईके मध्य धरि करी। कम वर्षाके स्थितिमे उचास जमीनमे राजेन्द्र भगवती आ राजेन्द्र नीलमके सोझे बाओ करी। बाओसँ पहिने बीयाके कार्बेंडाजिम 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीयाके दरसँ बीजोपचार करी आ 10-15 दिन पुरान नर्सरीमे समयपर खर पातक नियन्त्रण करी आ जे किसानक लग सिंचाईके सुविधा उपलब्ध अछि ओ रोपाई करैत। वर्षाके कमीके देखैत किसानके उचास जमीनमे मिलेट्सके खेती अपनेबाक सलाह देल जाइत अछि। रागीके राजेन्द्र मरुआ RU8, RU3 आ कौनीके राजेन्द्र कौनी 1 किस्मक बाओ नीक जल निकासीवला भूमिमे करी आ उचास जमीनमे धानके बदलामे राहरिके खेती सेहो कऽ सकै छी। बहार, पूसा 9, राजेन्द्र अरहर 1, राजेन्द्र अरहर 2 अनुशंसित अछि। अन्तिम जोताइके समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम

फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास आ 20 किलोग्राम सल्फर के उपयोग करी। एहि के संग खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समय जे अछि ओ सम्पन्न भऽ रहल अछि। खेती गृहस्थी कार्यक्रम से किसान भाई गोपी भाई के आज्ञा दिया, नमस्कार।

ये था खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
4: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, शुगर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
5: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम का किया उद्घाटन, कहा लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि। प्रदेश में आज से वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि प्लॉट और फ्लैट की निबंधन की प्रक्रिया शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक निर्दलीय समेत 4 प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रशांत किशोर 13 जुलाई को करेंगे नामांकन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी और पूर्णिया समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और जन कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए। श्री राधाकृष्णन गया जी के पिपाट परिसर में विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण शिविर सह प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
1: इन अ डेमोक्रेसी वी मे अग्री।
2: लोकतंत्र में हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम सबको एक चीज पर हमेशा सहमत रहना चाहिए और वह है जनता तथा संविधान के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता। सदन के विचार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन संविधान सदैव हमारा साझा मार्गदर्शक होना चाहिए। मैं राज्यसभा में प्राय कहा करता हूँ कि बहस, चर्चा और कभी कभी व्यवधान भी अंततः किसी निर्णय तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि निर्णय के बिना कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।
0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकसित बिहार के बिना विकसित भारत का लक्ष्य साकार नहीं हो सकता है।
2: हमको चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर लड़ना होता है, यही लोकतंत्र है। यह दलों के आधार पर लड़ा जाता है, यह बात ठीक है, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो हम सभी दलों के नेताओं का यह दायित्व बनता है कि हम मिल करके बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए कार्य करें। यही लोकतंत्र की मूल भावना है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित प्रदेश नहीं।
0: प्रबोधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा कि जन सेवा को प्रभावी बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों को संसदीय और विधायी कार्यों के हरेक पहलू का प्रशिक्षण देने का फैसला स्वागत योग्य है।
3: बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए आयोजित इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में भाग लेकर बेहद खुश। संयुक्त रूप से किया गया ये कार्यक्रम सदस्यों के संसदीय ज्ञान, न्यायिक कौशल, लोकतांत्रिक जवाबदारी और अधिक मजबूत बनाने की ओर एक जरूरी पहल है।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की अपील की।
4: बिहार में जो विधायी कार्य हो उसमें माननीय विधायकों की सहभागी कैसे हो, इसकी चिंता के लिए 2 दिवसीय बैठक बुलाइए और 2 दिन लोगों को सीखने का ही कार्यक्रम करना है। अभी तक माननीय मंत्री, माननीय विधायक, हम लोग दूसरे को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं, लेकिन

0: यहाँ पर कैसे विधायी कार्य में आप जुड़ सकते हैं, और महामहिम उपराष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, और इससे ज्यादा गंभीर बात नहीं हो सकती है कि बिहार के विकास में आपका एक एक योगदान मिले, ये पूरा विधानसभा चाहता है।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि यह प्रबोधन कार्यक्रम देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूती प्रदान करेगा।
2: इसलिए जनप्रतिनिधियों का निरंतर प्रशिक्षण लोकतंत्र की आवश्यकता है, औपचारिकता नहीं। यह प्रबोधन कार्यक्रम संसदीय नियमों, प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधेयकों, समितियों, वित्तीय नियंत्रण, संसदीय शिष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर सार्थक विमर्श का अवसर प्रदान करेगा।
1: समारोह को उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी संबोधित किया। दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को संसदीय कार्यप्रणाली और विधानसभा की नियमावलियों से परिचित कराना है। प्रदेश में आज से 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि, प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित जिला निबंधन कार्यालय में आयोजित समारोह से इस सुविधा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के आग्रह पर यह सेवा 75 वर्ष के वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलेगी।
3: सारी सुविधा को घर पे मिले, पूरी सरकार की ये सोच है कि निबंधन का काम जो भी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनके घरों पर पहुंचकर मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट हमारा पहुंचे और आपको लाभ वहां मिले। मुख्यमंत्री विजेंद्र बाबू ने आग्रह किया है कि इसको 80 से 75 कर दीजिए, तो मैं जरूर ये विश्वास दिलाता हूँ बिहार के लोगों को कि जो 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं सबका रजिस्ट्रेशन उनके घर पर हमारा मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट पहुंचेगा और आपके घर पे ही रजिस्ट्रेशन करेगा।
1: इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी भी मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत पेपरलेस निबंधन, सीओ द्वारा निबंधन संबंधी पूर्व जानकारी और जीआईएस तकनीक के माध्यम से स्थल निरीक्षण जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह व्यवस्था राज्य के सभी 145 निबंधन कार्यालयों में लागू होगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक 4 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। जिन उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है उनमें प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया के प्रेम शंकर प्रसाद, प्रगतिशील जनता पार्टी के मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव और निर्दलीय सिकंदर कुमार तथा मिथिलेश कुमार शामिल हैं। इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि पार्टी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे।
4: जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी हैं नीरज कुमार सिन्हा जी, तो बांकीपुर के एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते वो काम कर रहे हैं। 13 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। पूर्व में जो प्रत्याशी थे उन्होंने पारिवारिक कारणों से असमर्थता व्यक्त की चुनाव लड़ने से। उन्होंने कहा मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा, चुनाव में भी पूरी पूरी मेरी सहभागिता रहेगी। तो केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी जो उसी विधानसभा के कार्यकर्ता।
1: जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर 13 जुलाई को ही अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित है। 16 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच एनडीए के उम्मीदवार बदले जाने पर कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की रिक्त हुई सीट पर पार्टी को सक्षम उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। राजद ने कहा है कि हार के डर से भाजपा ने प्रत्याशी बदला है। राजद ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय लेने की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ.
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है. प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं. ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय समुदाय से पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करने का आग्रह किया है.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय समुदाय से पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि हरिमंदिर साहिब में दशमेश गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी के पवित्र श्री चोड़े साहिब मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब भी भारतीय मूल के लोग भारत आएं तो पटना साहिब जाकर इनका श्रद्धापूर्वक दर्शन अवश्य करें।
1: साथियों, मैं आपसे पवित्र जोड़े साहब की भी बात आज करना चाहता हूं। मेरे एक साथी हैं श्रीमान हरदीप पुरी जी। पुरी परिवार के पूर्वज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार थे। हरदीप पुरी जी ने मुझे यह बताया था, उनका परिवार सिख संगत को सौंपना चाहता था। फिर हमने एक समिति बनाई और हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी भारत जाएं पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें।
0: प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पटना के विक्रम में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और सीवान जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, कटिहार और पूर्णिया जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के अधिकांश स्थानों में, उत्तर पूर्व भाग के अनेक स्थानों में, जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों में वर्षा होने की संभावना है, तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर एवं सिवान जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अधिकांश जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात होने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला यह दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार ने लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय जूनियर बालक रग्बी प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता के फाइनल में बिहार ने महाराष्ट्र को एकतरफा मुकाबले में 31-5 से पराजित किया। इससे पहले बिहार की बालिका टीम तीसरे स्थान पर रही थी। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच जारी है। आरा में गठित न्यायिक जांच आयोग के समक्ष आज भरत तिवारी के माता पिता ने अपना बयान दर्ज कराया। वहीं उनके भाई चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके तथा व्यक्तिगत कारणों से बाद में बयान दर्ज कराने के लिए समय मांगा। आयोग ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। बांका के अमरपुर दोहरे हत्याकांड का मुख्य शूटर सचिन सिंह पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज में भर्ती कराया गया है। अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 पर एक हाईवा ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। बगहा की एक अदालत ने मानव तस्करी के एक मामले में पश्चिम बंगाल के 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 13 जुलाई को सुनवाई होगी। कटिहार नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गाछी टोला डहरिया चौक के पास से पुलिस ने 385 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अररिया जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक चारपहिया वाहन से 18 किलो गांजा के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की है। बक्सर जिले के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में पुलिस ने छापेमारी कर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को आमजन तक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य स्तर पर जारी टेली कंसल्टेशन जिला रैंकिंग में औरंगाबाद जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। लखीसराय में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से शिवनगर वनरोपण अभियान का आज शुभारंभ किया गया। किशनगंज में बीएसएफ की हीरक जयंती के अवसर पर आयोजित 10 दिवसीय स्पंदन स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट

0: फुटबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। फाइनल मुकाबले में पूर्णिया आदिवासी यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम विजेता बनी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। कहा, लोकतंत्र में संविधान सर्वोपरि। प्रदेश में आज से वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर बैठे भूमि प्लॉट और फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक निर्दलीय समेत चार प्रत्याशियों ने दाखिल किए पर्चे। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रशांत किशोर 13 जुलाई को करेंगे नामांकन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी और पूर्णिया समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुपौल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी।
4: सुपौल जिले में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। जिले के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही वर्षा से मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश के कारण खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है। इधर पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले दिनों कोसी का जलस्तर 1,85,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था, जो इस वर्ष अब तक का सर्वाधिक डिस्चार्ज है। ताजा अपडेट के अनुसार कोसी बराज से आज सुबह 10 बजे तक 1,07,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह से 86,250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। जल संसाधन विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के 91 में सुपौल जिले ने जून माह में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के 91 में उपलब्धियों के आधार पर जिलों की रैंकिंग निर्धारित मापदंडों और कार्य निष्पादन के आंकड़ों के आधार पर की गई। इसमें सुपौल जिले ने 89.61 अंक प्राप्त कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को बेमिसाल बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो भी वादे किए थे, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में सुपौल सांसद दिलेश्वर कामैत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विद्युत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद ने विभिन्न विद्युत योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिले में विद्युत संरचना से जुड़े निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सांसद ने सभी संबंधित अधिकारियों को विद्युत योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिले में निर्माणाधीन अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने बीते दिन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को आवासीय विद्यालय

0: परिसर में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण कर हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बीते दिनों जिले के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों का निष्पादन किया गया तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। इधर जिलाधिकारी सावन कुमार और अपर समाहर्ता सचिदानंद सुमन ने जिले के 29 नव नियुक्त जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति प्रदान की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी नव नियुक्त विक्रेताओं को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी तथा समयबद्ध तरीके से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जन वितरण प्रणाली गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है।
1: अभी आप सुन रहे थे सुपौल जिले की हलचल।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपाय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तिहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है कार्यक्रम और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार।
5: धन्यवाद
3: आनंद जी। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
4: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, लानीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती है, ये वीक पड़ जाती है। जब ये वीक हो जाती है तो क्या होता है, जो पानी था वहां जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं इकट्ठा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है, और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब भी आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे
6: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म ए फ्लैट का यह गीत। गायक कलाकार हैं कैलाश खेर, सुजान डी मेलो, बोल हैं विराग मिश्रा के और संगीत निर्देशन बप्पी लहरी का है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म ए फ्लैट का यह गीत कैलाश खेर एवं सुजान डी मेलो की आवाज़ में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के बीच आ गया। थैंक यू, बहुत सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो रिस्पांस दिखाया है उड़ान कार्यक्रम में। ढेर सारे सवाल पूछे गए जो हम नंबर देते हैं 7520800800। जी हाँ, 7520800800 पर आपने BCA और BBA के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हैं अपने करियर के लिए। और मानो ऐसा लगता है राजेश हूँ आपका, राजेश को, कि हमारा ये उड़ान कार्यक्रम लाना आर्किड बिजनेस कॉलेज की तरफ से सफल हो रहा है इस साल भी। हम हर साल आते हैं अभी ही और आपको जानकारियां देते हैं। सवाल ये भी पूछे गए कि BCA और BBA करके आप क्या कर सकते हैं। आपने पूछा कि हम क्या कर सकते हैं, हाँ, तो जवाब मिला कि आप वहां से भी रोजगार ले सकते हैं और अगर जो आगे पढ़ना चाहें तो MBA और MCA भी कर सकते हैं। और इसी आर्के बिजनेस कॉलेज जो इस कार्यक्रम को, जिनकी तरफ से हम लेकर आ रहे हैं, जो कि आर्य कुमार रोड राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना में है, उनका संस्थान है ABC कॉलेज ऑफ एडुकेशन। वहां से आप MCA और MBA भी कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ढेर सारे सवाल आए जिसके जवाब दिए गए, मन गद गद हो गया। और ये जो नंबर है ना 25208008008000, सचमुच अपनी प्रासंगिकता बना लिया। आप युवा साथियों की तरफ से फोन आए हमें भागलपुर से, सुपौल से, कटिहार से, बक्सर से, दरभंगा से, लहरिया सराय से, जी हाँ लहरिया सराय से, पटना से भी फोन कॉल्स आए, बहुत अच्छा लगा। और इसमें युवतियों, हाँ, छात्राओं, हाँ, के भी फोन कॉल आए, जो हमें और भी अच्छा लगा, जो एक उन्नत भविष्य है हमारे बिहार का ये दर्शाता है। बहरहाल BCA और BBA की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, आप कर सकते हैं। आज हमने बातचीत की है स्पेशली आप लोगों के लिए। आशीष जी आज नहीं होंगे, आज होंगे आर्किड बिजनेस कॉलेज के वैसे युवा और युवती जो BCA और BBA कर रहे हैं और फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्लानिंग लेकर बैठे हैं कि उन्हें करियर में ये मिल जाएगा और कितना कॉन्फिडेंट है। उनकी बातचीत जो हमारे से हुई, आपके राजेश से हुई, मैं आर्किड बिजनेस कॉलेज गया और उन लोगों से बात किया रैंडमली, इसने कि नहीं कि छाट लिया, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, हमने रैंडमली बातचीत किया। अभी उसके अंश आपको हम सुनवाएंगे। फिलहाल एक बात बता दें, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लीजिए लेकिन ये जरूर देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका, फैकल्टीज कैसे हैं, ये सारी बातें उन लोगों ने बोली है अपने अपने बातचीत में। और कहाँ से एफिलिएशन है, एफिलिएशन जो परमानेंट है या टेम्पररी है। आर्किड बिजनेस कॉलेज जो है ना, ये स्थायी मान्यता प्राप्त है BCA और BBA के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से। 27 वर्षों से

0: लगातार युवाओं के साथ काम कर रहा है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश सुनिए।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
0: और अब बारी आती है कि हम आज जिन युवाओं से हमने बातचीत की है उनके बात को आप तक पहुंचाएं। अमन हैं, हाँ अनुप्रिया हैं, खुशी हैं, अनुराग हैं, ढेर सारे लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की। तो आइए शुरुआत करते हैं अमन से, फिर अनुप्रिया, फिर अनुराग और फिर खुशी। और अगर समय बचेगा तो और भी बहुत सारे लोग अपनी बात आपको इस उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से, इस रेडियो के माध्यम से अंतिम युवा तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको निर्णय लेने में आसानी हो। आपका नाम?
4: अमन कुमार।
0: कहाँ के रहने वाले हो?
4: लखीसराय।
0: क्या कर रहे हो आप?
4: मैं आर्केड बिजनेस कॉलेज से BCA कर रहा हूँ।
0: BCA ही क्यों कर रहे हो?
4: BCA क्योंकि अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, जहाँ पे IT फील्ड इंटरफेयर ना कर रहा हो। तो अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, अगर आपको इस चीज से प्रेम है, तो आप फिलहाल BCA कर सकते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज से।
0: आर्केड बिजनेस कॉलेज को कैसे चुना?
4: यहाँ से मेरे मामा ने BCA किया था और आज वो गुड़गांव में TCS में जॉब कर रहे हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक जगह बनाती है कि अगर आप आर्केड से अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हो तो आप भी एक वेल प्लेस्ड हो सकते हो।
0: इस कोर्स को कर लेने के बाद अगर जो आप जॉब करना चाहते हैं तो आर्केड बिजनेस कॉलेज से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा आपका, कुछ चाहत होगी आपकी, क्या?
4: मैं अगर बताऊं तो पिछले साल की बात है कि एक मृणाल पाठक जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने TCS में जॉब लिया है, वो भी 8 लाख के पैकेज के साथ। तो कहीं ना कहीं ये बात तो बताती है कि आर्केड जॉब देती है। अब बच्चे में काबिलियत है कि नहीं, ये बच्चे पे डिपेंड करता है। तो अगर हम अपना पूरा टाइम अपने करियर को दें तो हम भी जॉब ले सकते हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज से।
0: बहुत अच्छी बात कही अमन आपने कि अगर आप में काबिलियत है, आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप खुद से नौकरी ले लेंगे। और आपने ये भी कहा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज से पढ़ने के बाद नौकरी मिलती है। बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट है आपका। एक बात अब हम आपसे कहना चाहेंगे, जो लोग सुन रहे हैं इस रेडियो प्रोग्राम को, पूरा बिहार सुन रहा है, उन युवा साथियों को थोड़ा मोटिवेट कीजिए, कुछ कहिए।
4: अगर आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि नौकरी मिल जाए तो फिर मत पढ़ो, मेरा यही कहना है। अगर पढ़ाई से प्रेम है, कर सकते हो, तो आके आर्केड बिजनेस में पढ़ो, क्योंकि आर्केड बिजनेस कॉलेज कहीं ना कहीं पहले दिन से ही ये सिखाता है कि इफ यू हैव द स्किल देन यू फिक्स्ड योर प्राइस।
0: अच्छा एक बात बताइए, क्या आप शुरू से ही क्षेत्र में जाने वाले थे या कहीं और जाना चाहते थे और वहाँ नहीं हुआ जिसकी वजह से आप इधर आए?
4: मैंने भी JEE का तैयारी किया था, मुझसे नहीं हुआ, मैं अच्छे कॉलेज पे नहीं जा पाया। तो मैं उनके लिए बता दूं कि आर्केड बिजनेस कॉलेज आपके लिए बहुत अच्छी जगह है अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हो। तो
0: चलते चलते आर्केड बिजनेस कॉलेज के विषय में कुछ कहना चाहिएगा?
4: इस कॉलेज को 27 वर्षों का अनुभव है और इस कॉलेज को किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार का नंबर 1 कॉलेज है, पाटलिपुत्र से परमानेंटली एफिलिएटेड है।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
3: आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़, पटना। कॉल करें 7520-800-800। याद रखें 7520-800-800।
0: उड़ान कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं BCA और BBA की। जी हाँ, BCA और BBA वो पढ़ाई है जिसको करके रोजगार मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आज हम कॉलेज की तरफ से या गार्जियन से या और किसी से, करियर काउंसलर से, किसी से बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं आर्केड बिजनेस कॉलेज के स्टूडेंट से। वो क्या सोचते हैं, हाँ क्या करते हैं, क्या फ्यूचर है उनका, उन्होंने क्यों चुना इस कोर्स को, ये जानना चाहते हैं। और आप युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा ये, अगर आप BCA और BBA करना चाहते हैं तो आर्केड बिजनेस कॉलेज, जो 27 वर्षों से लगातार आप युवाओं के साथ BCA और BBA के लिए काम कर रहा है, उनसे आपको बात करनी चाहिए। नंबर है 7520-800-800।

0: 75208000। और अब बेगूसराय की खुशी रस्तोगी क्या कहती हैं, इनसे सुनते हैं।
1: माय नेम इज खुशी रस्तोगी। मेरे एक दोस्त आर्केड में पढ़ता था, उसी ने मेरे को रिकमेंड किया आर्केड बिजनेस कॉलेज के लिए। यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके। और यहाँ पे बहुत अच्छे, मतलब यहाँ के फैकल्टीज वगैरह बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में जाए, या फिर आपको बीसीए वगैरह या आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में आना है तो उसमें आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल खुशी, टाइम वेस्ट तो कभी नहीं करना चाहिए। समय की बर्बादी अपनी बर्बादी है। आप पैसा फिर से कमा सकते हैं लेकिन गुजरा हुआ वक्त आपको फिर से वापस नहीं मिल सकता। अगर आपने एक बार गलत कोर्स का चुनाव कर लिया, गलत इंस्टीट्यूशन का चुनाव कर लिया, तो बहुत मुश्किल में पढ़ सकते हैं, सिर्फ वर्तमान में नहीं भविष्य में भी। इसीलिए बीसीए और बीबीए हम बार बार कहते हैं और सालों से इसी समय आते हैं उड़ान कार्यक्रम लेकर और आप सबों को मोटिवेट करते हैं। आर्केड बिजनेस कॉलेज की तरफ से ये कार्यक्रम लेकर आते हैं हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आप डायल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, 75208000 ये नंबर है, 7520800800। और अब आइए मिलते हैं।
2: मेरा नाम अनुराग कुमार है, मेरा घर सिवान हुआ। मैं यहाँ पटना आया था, मुझे आईटी फील्ड में ही काम करना था और उसी में जॉब करना था, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं बीसीए कर लेता हूँ। बीसीए एक अच्छा कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में अच्छा ग्रेजुएशन का कोर्स है। फिर मैंने इसको ऑनलाइन रिव्यू पे चेक किया कि पटना में सबसे अच्छा बीसीए के लिए कौन सा है। ऑनलाइन पता चला कि आर्केड बिजनेस कॉलेज अच्छा है, बाकी दो तीन कॉलेजेस भी आई। मैंने सबका ऑफलाइन रिव्यू भी चेक किया कि ऑनलाइन सच नहीं हो सकता है, कुछ भी डाल देगा लोग। मैंने ऑफलाइन भी चेक किया कि क्या क्लासेस रेगुलर चलती हैं, क्या काम होता है यहाँ पे, मैंने वो सब पता किया। मेरा एक मित्र भी था इसमें और उसको भी भेज के पता किया, हॉस्टल्स में भी बाकी पता किया, तब पता चला कि नहीं, सही में क्लासेस रेगुलर होती हैं और यहाँ के बच्चों पे दबाव बनाया जाता है। क्योंकि आजकल के मैं बच्चों में देखता हूँ कि आजकल के जो भी बच्चे होते हैं वो उन पे दबाव नहीं बनाया जाए तो वो बस कोर्स करे, ख़त्म करे, निकल जाए, बस वो ख़त्म करने आते हैं। कि बच्चे अगर जैसे सप्ताह में 5 दिन तो रेगुलर क्लासेस होते हैं, कभी कभी शनिवार को भी क्लासेस हो जाते हैं। जैसे सोमवार से शुक्रवार तो क्लासेस होते ही हैं, शनिवार को कभी कभी क्लासेस हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है कि बच्चों को अटेंडेंस बनाया गया कि 75% से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर उससे कम आ रहा है इसका मतलब कि बच्चों में कमी है, तो फिर उस एक हर महीने एक अटेंडेंस रिपोर्ट बनाया जाता है। वो रिपोर्ट पेरेंट्स ग्रुप में रहता है, पेरेंट्स ग्रुप जो कि बच्चों के ग्रुप से अलग होता है, उसमें कोई बच्चा नहीं रहता है, उसमें सिर्फ फैकल्टी मेंबर रहते हैं और पेरेंट्स रहते हैं। तो पेरेंट्स को डायरेक्ट पता चल जाता है कि मेरा बच्चा कॉलेज गया है कि नहीं गया है। तो इससे बच्चों पे दबाव बना रहता है कि हमेशा कॉलेज जाना है, कॉलेज में पढ़ाई करना है, कॉलेज ऐसा इन्वायरमेंट देता है। ये हमारा कॉलेज सुंदर सा है, छोटा सा है, अच्छा सा है, इतना अच्छा है कि इसमें जो इन्वायरमेंट वो बनता है, वो वातावरण बनता है पढ़ाई का, इससे बच्चों पे दबाव बनता है कि अगर मरने का मन नहीं भी करे, आगे सिर्फ बैठ भी जाओ तो सुन लेने से उतना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि आपको जॉब मिल सकता।
0: अच्छा, कहा जाता है कि प्लेसमेंट में या जॉब के लिए ये 100% असिस्टेंस देते हैं। आप लोगों को क्या पता चला यहाँ जॉब की क्या संभावनाएं हैं?
2: जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस कॉलेज में आने के बाद आप अगर इनकी बातों को मान ले, अपना कुछ भी दिमाग नहीं लगाए, सिर्फ इनकी बात मान ले, जो फैकल्टी मेंबर है, जो हमारी एचओडी मैम है, जो यहाँ के प्लेसमेंट सेल वाले हैं, सिर्फ उनकी बात मान ले, वो जो कह रहे हैं वो कर ले, सिर्फ उतना करने से आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है अच्छी कंपनी।
0: पूरा बिहार सुन रहा है इस कार्यक्रम को, आकाशवाणी के 6 रेडियो स्टेशन से हम पहुंच रहे हैं। आप हमें ये बताइए, बेगूसराय से आप पटना तो आ गए लेकिन बहुत सारे लोग अभी घर पर बैठे हैं, सोच रहे हैं, उनको बताइए कि आर्केड बिजनेस कॉलेज कैसा है, क्या है, कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा रह सकता है।
2: आर्केड बिजनेस वो कॉलेज है जो हमें वोकेशनल कोर्स के माध्यम से अच्छे जगह पर जॉब दे सकता है। आर्केड बिजनेस वो कॉलेज है जो हमें पढ़ाई के साथ साथ अदर स्किल्स पे भी ध्यान देने के लिए काफी प्रेशर बनाता है। आर्केड बिजनेस कॉलेज हमारे एंटरटेनमेंट को भी ध्यान में रखते हुए अदर कल्चरल एक्टिविटीज या फिर अदर को करिकुलम एक्टिविटीज भी कराते रहती है।
0: बहुत खूब, और अब बारी आई अनुप्रिया की। अनुप्रिया,
3: मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं आर्केड बिजनेस कॉलेज की छात्रा हूँ, बीसीए सेकंड।

0: ईयर में। मेरा घर नवादा डिस्ट्रिक्ट है। मेरे को बिहार में कॉलेज लेना था और मेरे को आईटी फील्ड में और टेक फील्ड में इंटरेस्ट था, तो मैंने सर्च किया और रिव्यूज़ देखा तो मेरे को पटना का बेस्ट कॉलेज आर्किड लगा। और यहाँ रेगुलर क्लासेस होते हैं जो कि मेरे को वो सबसे बेस्ट लगा, इसलिए मैंने एडमिशन लिया।
1: आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन कि आप उड़ान कार्यक्रम में आए और पूरे बिहार के युवा साथियों और उनके माता पिता तक सही बातें रखी। जी हाँ, बीसीए और बीबीए की पढ़ाई बहुत ही प्रोफेशनल है। उड़ान कार्यक्रम हर साल इसी समय हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस बार भी लगातार लेकर आ रहे हैं, सुनना नहीं भूलिएगा। और जो अगर आपके पास कोई सवाल है ना, तो इस कार्यक्रम को हम जिनकी तरफ से लेकर आते हैं, आर्किड बिजनेस कॉलेज 27 वर्षों से बीसीए और बीबीए की पढ़ाई करवा रहे हैं और लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचने में मदद कर रहे हैं। इनका नंबर है 75 20 800 800, 75 20 800 800। इस नंबर पर फोन करें और बात करें। तब तक राजेश को दे इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में।

हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा पर्यावरण कार्यक्रम। निर्माण एवं वाचन कल्याण कुमार झा का है। प्रस्तुत करता है असद दाऊद।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारा पर्यावरण के इस नए अंक के साथ मैं कल्याण कुमार झा। श्रोताओं, आज के अंक में हम बातें करेंगे दो विषयों पर चर्चा के माध्यम से, जिसमें हमारी पहली चर्चा का विषय होगा हिमनद और पर्यावरण, तथा दूसरी चर्चा का विषय होगा ग्लेशियर यानी हिमनद का पिघलना और समुद्र जल स्तर तथा इससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव। साथ ही हम पर्यावरण से संबंधित कुछ रोचक जानकारियों से भी अवगत होंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में हम चर्चा करते हैं हिमनद और पर्यावरण विषय पर। श्रोताओं, हिमनद के विषय में बातें करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि हिमनद क्या होता है। श्रोताओं, हिमनद, जिसे अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं, ये बर्फ की नदियां होती हैं। ये उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां सर्दियों में बर्फ गिरती है और गर्मियों में पूरी तरह पिघलती नहीं है। हर साल बर्फ की एक नई परत नीचे की पुरानी परतों को ढक लेती है और उन्हें दबा देती है।

समय के साथ उन सारी बर्फ़ की नीचे की परतें ऊपरी बर्फ़ के वज़न से दबकर बर्फ़ का एक ठोस ब्लॉक बन जाती हैं। हिमनद पर्वतों की चोटियों पर या ध्रुवों के निकट पाए जाते हैं। इनका आकार फुटबॉल के मैदान जैसा सैकड़ों मील लंबा बर्फ़ का टुकड़ा हो सकता है या इससे बड़ा भी हो सकता है। विशाल हिमनद अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड को ढके हुए हैं। इन बड़े हिमनदों को हिमचादर भी कहा जाता है। श्रोताओ, चर्चा पर अल्पविराम लगाते हुए हम चलते हैं रोचक जानकारियों की ओर। श्रोताओ, भूमिगत दुनिया, जमीन के नीचे एक छिपा हुआ कवक नेटवर्क होता है जो पेड़ों को एक दूसरे से जोड़ता है और उन्हें आपस में पोषक तत्व बांटने में मदद करता है। मिट्टी में जीवन, हाँ, पृथ्वी पर मौजूद लगभग 59% प्रजातियाँ मिट्टी के भीतर रहती हैं, जो इसे जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र बनाता है। श्रोताओ, रोचक जानकारियों के बाद रुख करते हैं एक बार फिर से चर्चा की ओर। तो हिमनद न केवल गति के दौरान पदार्थों का परिवहन करते हैं, बल्कि वे अपने नीचे की भूमि को भी आकार देते हैं तथा काटते हैं। हिमनद का भार उसकी धीमी गति के साथ मिलकर सैकड़ों या हजारों वर्षों में भू आकृति को पूरी तरह से बदल सकता है। बर्फ भूमि की सतह को अपरदित करती है तथा टूटे हुए पत्थरों और मिट्टी के मलबों को उनके मूल स्थानों से बहुत दूर ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ रोचक भू आकृतियाँ बनती हैं। विश्व भर में पाई जाने वाली हिमनदी घाटियाँ संभवतः सबसे आसानी से दिखाई देने वाली हिमनदी भू आकृति हैं। फजार्स के समान ये गर्त के आकार की होती हैं, जिनमें अक्सर खड़ी लगभग ऊर्ध्वाधर चट्टानें होती हैं, जहाँ हिमनदों की गति से पूरे पर्वतों का भूभाग तराशा गया होता है। इस तरह हिमनद का निर्माण होता है और पर्यावरण में इन हिमनदों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हिमनद पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के आधार हैं। ये मीठे पानी के मुख्य स्रोत हैं जो नदियों के माध्यम से लाखों लोगों की प्यास बुझाते हैं। हिमनद और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। यह मीठे पानी और जलचक्र का आधार है। हिमनद पृथ्वी के मीठे पानी का लगभग 3/4 अर्थात 75% भाग सजोकर रखते हैं। गर्मियों और सूखे मौसम में जब अन्य जल स्रोत सूख जाते हैं, तब हिमनद पिघलकर नदियों में जल का स्तर बनाए रखते हैं और पर्यावरण को संतुलन प्रदान करते हैं। हिमनद जलवायु परिवर्तन का सूचक है। श्रोताओ, ग्लेशियर पर्यावरण में होने वाले तापमान परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। तापमान में मामूली वृद्धि भी हिमनदों के पिघलने की गति को बढ़ा देती है, इसीलिए इन्हें ग्लोबल वार्मिंग का अर्ली वार्निंग सिस्टम भी कहा जाता है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में हिमनद की भूमिका। श्रोताओ, हिमनद ठंडे वातावरण में रहने वाले कई जीवों और वनस्पतियों के लिए प्राकृतिक आवास हैं। हिमनदों से निकलने वाला ठंडा पानी नदी के तापमान

मन को नियंत्रित करता है जो जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। इसके पिघलने से यह नाजुक तंत्र प्रभावित होता है। भू आकृति के निर्माण में हिमनदों की भूमिका। हिमनद केवल बर्फ के टुकड़े नहीं होते, बल्कि इनमें भारी चट्टानें और मलबे होते हैं। ये अपने बहाव से घाटियों का अपरदन करते हैं, यू आकार की घाटियां बनाते हैं और पृथ्वी की सतह को नया आकार देते हैं। जलवायु और समुद्र के जलस्तर पर प्रभाव। ध्रुवों और पहाड़ों पर हिमनदों के तेजी से पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा होता है। इसके अलावा ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से समुद्री धाराओं में बदलाव आता है, जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। हाँ श्रोताओं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए हिमनद केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति, आध्यात्मिकता और जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनका गायब होना इन स्थानीय संस्कृतियों के लिए भी खतरा है। श्रोताओं, चर्चा पर अल्पविराम लगाते हैं और चलते हैं रोचक जानकारियों की ओर। रोचक जानकारी में हम जानते हैं महासागरों के फेफड़ों के बारे में। श्रोताओं, महासागरों की प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स पौधों जैसी नहीं दिखती हैं, लेकिन वे प्रकाश संश्लेषण करके हमारे ग्रह के लिए फेफड़ों की तरह काम करती हैं और ऑक्सीजन बनाती हैं। इसीलिए इन प्रवाल भित्तियों को महासागरों के फेफड़े कहे गए हैं। पेड़ों की उम्र की बात करें तो रोचक जानकारी में आज हम जानेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो लगभग 4600 साल पुराने हैं। हाँ श्रोताओ, दुनिया के सबसे पुराने जीवित पेड़ ब्रिस्टल कोन पाइन्स हैं, जो अमेरिका में पाए जाते हैं। रोचक जानकारियों के बाद एक बार फिर से रुख करते हैं चर्चा की दिशा में और बातें करते हैं हिमनद और पर्यावरण के संबंध में। श्रोताओ, हिमनदों के पिघलने से झीलों, नदियों और महासागरों में पोषक तत्व पहुंचते हैं। ये पोषक तत्व जलीय और समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं के आधार फाइटोप्लांकटन की प्रचुरता को बढ़ावा देते हैं। वहीं हिमनदों का धीरे धीरे पिघलना पौधों और जानवरों के लिए नदियों जैसी प्राकृतिक आवासों को बनाए रखता है। इस प्रकार हिमनदों का वन्य जीवों और मत्स्य पालन पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में ग्लेशियर लोगों और वन्य जीवों दोनों के लिए जीवनदायी जल के स्रोत हैं। उदाहरण के लिए मध्य एशिया की प्रमुख नदी आमू दरिया अपने जल का एक हिस्सा समुद्र के पिघलने से प्राप्त करती है। आजकल पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर अक्सर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, लेकिन हिमनद एक प्राकृतिक संसाधन भी है। पर्वतों के निकट शुष्क जलवायु क्षेत्रों में रहने वाले लोग वर्ष के कुछ भाग के लिए जल की आपूर्ति हेतु हिमनदों के पिघलने पर निर्भर रहते हैं। चीन, भारत और एशियाई महाद्वीप के अन्य भागों से होकर बहने वाली कई नदियां मुख्यतः हिमालय की बर्फ पिघलने से पोषित होती हैं। हिमनद फसलों की सिंचाई करते हैं। हाँ श्रोताओ, स्विट्जरलैंड की रोन घाटी में किसान सैकड़ों वर्षों से ग्लेशियरों से पिघले पानी को अपने खेतों तक पहुंचाकर अपनी फसलों की सिंचाई करते आ रहे हैं। एक लोक कथा के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान के ग्रामीणों ने चंगेज खान के आक्रमण को विफल करने के लिए ग्लेशियर उगाए थे। लोक कथाओं से परे हिंदू कुश हिमालय और काराकोरम पर्वत से

श्रृंखलाओं में सर्दियों में बर्फ जमा करने और वसंत ऋतु में बर्फ पिघलने पर फसल उगाने के लिए धीरे धीरे पिघले पानी को छोड़ने के लिए ग्लेशियर उगाने का इतिहास रहा है। भारत के लद्दाख में इंजीनियर चेवांग नोरफेल ने एक दर्जन से अधिक कृत्रिम ग्लेशियर बनाने के बाद आइसमैन का उपनाम अर्जित किया। हिमनद जल विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। नॉर्वे, मध्य यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हिमनदों के संसाधनों जैसे हिमनद के पिघले पानी को बांधकर बिजली उत्पन्न की है। यूं तो हिमनद आमतौर पर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तदोपरांत कुछ हिमनद शहरों या कस्बों के पास भी पाए जाते हैं और कभी कभी आसपास रहने वाले लोगों के लिए समस्या भी पैदा करते हैं। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर कई प्राकृतिक आपदाओं का मूल कारण बन सकते हैं। कभी कभी हिमनदों से हिमस्खलन जैसी घटनाएं जनजीवन के लिए खतरनाक होती हैं। श्रोताओं, चर्चा पर एक बार फिर अल्प विराम लगाते हुए रुख करते हैं रोचक जानकारियों की ओर और जानते हैं एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग से संबंधित रोचक तथ्य के बारे में। श्रोताओं, एक एल्यूमिनियम के डिब्बे को रिसाइकिल करने से इतनी बिजली बचती है कि हमारी टीवी लगभग 3 घंटे तक चल सकती है। एक कांच की बोतल को रिसाइकिल करने से इतनी ऊर्जा बचती है जिससे एक सामान्य बल्ब अर्थात फिलामेंट बल्ब को लगभग 4 घंटे तक जलाया जा सकता है। हालांकि कांच आसानी से विघटित नहीं होता, फिर भी इसका पुनश्चक्रण पर्यावरण के लिए अधिक लाभदायक हो सकता है। श्रोताओं, यदि हम किसी अमेरिकी राजमार्ग पर 1 मील पैदल चलते हैं तो हमें औसतन 1457 कूड़े के टुकड़े दिखाई देंगे। कीप अमेरिका ब्यूटीफुल संस्था के अनुसार अगर हर अमेरिकी एक ही समय में कूड़े के 152 टुकड़े उठा ले तो अमेरिका कूड़ा मुक्त हो जाएगा। रोचक जानकारियों के उपरांत एक बार फिर रुख करते हैं चर्चा की ओर। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब तक हम बातें करते रहे हैं हिमनद और पर्यावरण विषय पर, जिसके अंतर्गत हमने हिमनद के निर्माण, भू आकृतियों के निर्माण और हिमनद तथा पर्यावरण के बीच अंतर्निहित संबंधों के कुछ मुख्य तत्वों पर बातें की। अब बातें करते हैं आज के अंक की दूसरी चर्चा पर, जिसका विषय है ग्लेशियर अर्थात हिमनद का पिघलना और समुद्र जल स्तर तथा इससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव। श्रोताओं, ग्लेशियरों और हिमचादरों का पिघलना आज के समय की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। यूं तो सामान्य ताप पर ग्लेशियरों का पिघलना पर्यावरण और जैव विविधताओं के लिए हर दृष्टि से लाभदायक है, लेकिन कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयेत। ठीक इसी तरह जैसे जैसे तापमान सामान्य स्तर से ऊपर उठता है, हिमनदों के पिघलने की गति भी बढ़ती जाती है, जो पर्यावरण के लिए विनाशकारी होता जाता है। श्रोताओं, तापमान बढ़ने के साथ साथ ग्लेशियरों के बर्फ पिघलने से वैश्विक समुद्री जल स्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे लाखों लोगों का जीवन खतरे में पड़ रहा है। ग्लेशियर पिघलने का सबसे बड़ा कारण कार्बन उत्सर्जन से होने वाला जलवायु परिवर्तन है। वनों की कटाई और भूमि विकास से ग्लेशियरों को मिलने वाली बर्फ की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। हिमनदों का निर्माण हजारों वर्षों में बर्फ के जमा होने और ठोस बर्फ में परिणत होने से होता है। बर्फ की ये धीमी गति से बहने वाली नदियां भारी मात्रा में ताजे पानी का भंडार रखती हैं। जब हिमनद पिघलते हैं तो वह पानी समुद्र में बह जाता है, जिससे समुद्र का स्तर सीधे बढ़ जाता है।

ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक की बर्फ की चादरें पृथ्वी के दो सबसे बड़े हिम भंडार हैं। इनमें मिलकर दुनिया की 99% से अधिक मीठे पानी के बर्फ समाहित हैं। यदि ग्लेशियर काफ़ी मात्रा में पिघलती हैं तो वैश्विक स्तर पर समुद्र जल स्तर में भारी वृद्धि हो सकती है। एक आम गलत धारणा यह है कि समुद्री बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। यह पूरी तरह सच नहीं है। इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे पानी के एक गिलास में बर्फ के टुकड़े मात्र रखने से जब वह पिघलता है तो बस बर्फ का जो आयतन होता है उसी अनुपात में पानी बनता है। इसी तरह समुद्री बर्फ के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ने में ज़्यादा योगदान नहीं होता, जबकि ग्लेशियर और बर्फ की चादरें अलग होती हैं क्योंकि वे ज़मीन पर स्थित होती हैं। जब वे पिघलती हैं तो वे समुद्र में अतिरिक्त पानी मिला देती हैं जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है। श्रोताओं, ग्लेशियरों का पिघलना केवल समुद्र के जलस्तर में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका प्रभाव पूरे ग्रह पर श्रृंखलाबद्ध पड़ता है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय शहरों पर इसका खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। न्यूयॉर्क, मियामी और न्यू ऑरलियंस जैसे शहरों में ऊंची लहरें, अधिक शक्तिशाली तूफान और स्थायी रूप से भूमि का कटाव हो सकता है। समुद्र में जल स्तर बढ़ने से ज्वार का स्तर और भी चरम पर पहुंच जाता है। इसका अर्थ है कि तूफान के कारण समुद्र में ऊंची लहरें उठती हैं, बाढ़ अधिक बार आती है तथा चक्रवातों का आगमन और उससे होने वाले नुकसान भी बढ़ जाते हैं। पिघले हुए हिमनदों का पानी मीठा होता है जो खारे और मीठे पानी के संतुलन पर निर्भर समुद्री धाराओं को बाधित कर सकता है। इससे विश्व भर में मौसम के पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं जिससे कुछ क्षेत्र अधिक नम तो कुछ क्षेत्र अधिक शुष्क हो सकते हैं। श्रोताओं, चर्चा पर अल्प विराम लगाते हैं और रोचक जानकारियों में जानते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को। श्रोताओं, हम ये तो जानते हैं कि एक कांच की बोतल को प्राकृतिक रूप से विघटित होने में बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन कितना लंबा समय तो पर्यावरण में एक कांच की बोतल को विघटित होने में 10,00,000 साल से भी अधिक समय लग सकता है, और यदि वह किसी लैंडफिल में हो तो शायद इससे भी अधिक समय लग सकता है। इसका अर्थ है कि 5,000 साल से पहले निर्मित और इस्तेमाल किया गया कांच आज भी पर्यावरण में मौजूद हो सकता है। इसलिए इसे पुनश्चक्रित करने से पहले बार बार उपयोग करना बेहतर है। श्रोताओं, हर 3 महीने में अमेरिकी लोग कचरे के ढेर में इतना एल्यूमिनियम फेंक देते हैं जिससे भारत जैसे किसी देश के पूरे वाणिज्यिक हवाई बेड़े का निर्माण किया जा सकता है। रोचक जानकारियों के बाद फिर से रुख करते हैं चर्चा की ओर। श्रोताओं, वैश्विक तापमान में दिनानुदिन हो रही वृद्धि से ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर ईस्वी सन 2003 की तुलना में 4 गुना तेजी से पिघल रही है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादरें प्रतिवर्ष लगभग 150 अरब टन बर्फ खो रही हैं। सन 1900 ईस्वी से अब तक समुद्र का जल स्तर लगभग 8 इंच यानी 20 सेंटीमीटर बढ़ चुका है।

तथा आने वाले दशकों में इसके और भी तीव्र गति से बढ़ने का अनुमान है। आइसलैंड के ग्लेशियर भी इसके अपवाद नहीं हैं। आइसलैंड में ग्लेशियरों का पिघलना एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है तथा वत्नाजुकुल, लैंगजोकुल और होफ्सजोकुल जैसे ग्लेशियर खतरनाक दर से पीछे हट रहे हैं, अर्थात सिमट रहे हैं। यदि यही रुझान जारी रहा तो आइसलैंड अगले 200 वर्षों में अपने सभी ग्लेशियर खो सकता है। यदि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पूरी तरह पिघल जाए तो इससे वैश्विक समुद्र जल स्तर लगभग 20 फीट अर्थात 6 मीटर बढ़ सकता है। यदि अंटार्कटिक की बर्फ की चादरें पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र जल स्तर 200 फीट अर्थात 60 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे

0: आए तो इससे वैश्विक समुद्र जल स्तर लगभग 20 फीट अर्थात 6 मीटर बढ़ सकता है। यदि अंटार्कटिक की बर्फ की चादरें पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र जल स्तर 200 फीट अर्थात 60 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे दुनिया भर के तटों का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि उत्तराखंड के गढ़वाल में 2035 ईस्वी तक ग्लेशियर गायब हो सकते हैं, तो वहीं वर्ष 2100 ईस्वी तक दुनिया के एक तिहाई से अधिक ग्लेशियरों के पिघलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यदि कार्बन उत्सर्जन अर्थात पर्यावरण प्रदूषण पर नकेल न कसी गई तो 2040 ईस्वी तक गर्मियों में आर्कटिक से बर्फ गायब हो सकती है। श्रोताओं, पुनः एक बार हम लेते हैं चर्चा में अल्पविराम और चलते हैं रोचक जानकारियों में और जानते हैं कुछ रोचक तथ्यों को। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष एक सुपरमार्केट औसतन 60 मिलियन पेपर बैग का उपयोग करता है। एक बार उपयोग होने वाले बैगों जैसे कागज और प्लास्टिक दोनों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है बार बार उपयोग होने वाले थैलियों यानी बैगों का उपयोग करना। प्रतिदिन विश्व भर में लगभग 27,000 से अधिक पेड़ काटे जाते हैं। विश्व में 3.04 से अधिक पेड़ हैं। हालांकि टॉयलेट पेपर बनाने के लिए प्रतिदिन 27,000 पेड़ काटे जाते हैं। इसका अर्थ है कि वार्षिक लगभग 9.8 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। रोचक जानकारियों के बाद आते हैं चर्चा की ओर। श्रोताओं, ग्लेशियर पिघलने से भारत के जल संसाधनों, कृषि और तटीय क्षेत्रों पर गंभीर और दूरगामी प्रभाव पड़ रहे हैं। इसके कारण पहले बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाएं आती हैं और बाद में नदियों के सूखने से भीषण जल संकट और कृषि को नुकसान का खतरा पैदा होता है। भारत पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों को हम इस तरह जान सकते हैं। जल संकट और कृषि को खतरा। श्रोताओं, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु जैसी प्रमुख नदियों का मुख्य स्रोत ग्लेशियर हैं, जिन पर भारत की 70% कृषि सिंचाई निर्भर है। शुरुआत में ग्लेशियर पिघलने से बाढ़ आती है, लेकिन ग्लेशियर खत्म होने पर नदियों का प्रवाह कम हो जाएगा, जिससे उत्तर भारत में पीने के पानी और खाद्य सुरक्षा का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। आपदाओं में वृद्धि, तेजी से पिघलता बर्फ पहाड़ों में खतरनाक हिमनद झीलें बना रहा है। इनके फटने से उत्तराखंड और हिमालयी क्षेत्रों में अचानक भयंकर बाढ़ और भूस्खलन आते हैं। इससे जान माल का भारी नुकसान होता है। समुद्र का जल स्तर बढ़ना, पिघलते ग्लेशियर समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, जिससे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय शहरों में जमीन डूबने, तटीय कटाव और समुद्री तूफान आने का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। मौसम और मानसून में बदलाव। हिंदू कुश क्षेत्र के ग्लेशियर भारत के दक्षिण पश्चिम मानसून को नियंत्रित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ग्लेशियरों के तापमान असंतुलन से मानसून चक्र प्रभावित होता है, जिससे कभी सूखा तो कभी अत्यधिक वर्षा जैसी स्थिति बनती है।
1: अभी आप हमारा पर्यावरण कार्यक्रम सुन रहे थे। निर्माण एवं वाचन कल्याण कुमार झा का था। प्रस्तुतकर्ता थे असद दाऊद। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नगोई द्वीप से लगभग 400

0: मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789155237143714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
3: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च

0: चाहे अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का 4th संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के 4th चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9-सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at

0: ये सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोक गीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियाँ थोड़ी बदल रही हैं, या कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो यो
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नव दिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को

0: बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवायत कार्य करते हैं।
1: शाल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्रीगुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है। फांसी, इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यही रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुरू दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञामण आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुरू किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती है, पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
3: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनुसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जो की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक पथी पांचन होता है, आम, केला, पनस, सपुरी, सपटा, ये 5 प्रकार फल भोग होता है, पथी होता है, मूंग और नारियल का पूरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा द्वितीय तिथि में,

0: रथ का ऊपर जाएगा।
1: अणसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अणसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
2: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार

0: प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
1: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निष्णानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है, पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दबद्ध करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिन्ना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की। आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती, बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं, बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परम्परा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास हैं।
2: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सकें। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है, और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे, और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कम्प्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई हैं आम की। पूसा सूर्या है, पूसा रुनिमा, पूसा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में हैं। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है,

0: लिए अम्रपाली और संचेशन के संकरण से बना है, पर कुछ किस्में उसमें दशहरी और लाल सिंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं, ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखिए दिल्ली एक जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए आंध्र में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। वैसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ।
2: ऊर्जा ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
3: मेरा नाम रामकिशोर मौर्य है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेषकर जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
4: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
5: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नटारी ये थे हमारे ध्रुव वही के जन्म है मोर। कुछ दिन हमन अटारी में रहें, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमार लालन पालन हुई। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुकलाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़ी लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लड़का ला छोड़ के चल देवे। भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन

छह भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं। हमर दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेते रहे हूँ। माँ गावे आरू

0: या जनकारे राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सुर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के धनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एकर आवाज, और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारत है। अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी गावे। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एकर दिल में लगाव है। तो सुने पर आते कि के वो छोटे से चटाई निकाली, सो कथे में बैठ बेटा, इमें बैठ। अब कतका कन सुने ऐसे कि के कही, तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा, मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सकी हूँ इसी की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गा था। तो

ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ल सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है उमन रोना शुरू कर देते, हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देथन ते हमला कई कौन सी मिट्टी में बना के हमला भेजी घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे। ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है आगे बार मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तब तो दुगुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण हुई है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हैं तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला ऐति तेती बहका सकत रहे हूँ, वो मैं अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते अच्छा बोले भूर यारो बोल चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत है अच्छा लगते, लेकर मुला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरला भेट्यो और नरसिंह ला भेट्यो खंभा भुईर बिनत सौरी ला भेट्यो क्योटल भेट्यो गंगा मां।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता

0: और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
1: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था, उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की, लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामवरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती

0: रामवर को विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामवरपु सारद बाबू एंड लेट श्रीमती रामवरपु विजय लक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। She began her training in Veena at an early age under the guidance of her mother, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Ee Mani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: In tonight's concert, Dr. Ramavarapu Madhuri Devi is accompanied by Sri Mahadasu Yedukondalu on the mridangam and Sri Mavadooru Suryaprasad on the ghatam.
0: Dr. R. Madhuri Devi, aaj ke karyakram ka aarambh nataraag mein Muttaya Bhagavatar ki rachna Shakti Ganapatim se kar rahi hain, jo ki rupak taal mein nibadh hai.
1: Dr. Ramavarapu Madhuri Devi begins her concert with Shakti Ganapatim, a composition of Muttaya Bhagavatar in Nataragam Rupak Talam.

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नो विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: शिनेक्स प्रेजेंट्स अ कंपोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रीति गौड़ रागम त्रिपुट तालम.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमालीय जीआर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

0: का तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येड़ुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्प माधुरी देवी, आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना से कर रही हैं, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Sri Mahadasu Erukondalu and on the Ghatam by Sri Mavuduru Surya Prasad. Dr. Ramavarapu Madhuri Devi concludes her performance this evening with a Tillana of Dr. Mangalampalli Balamurali Krishna. It is in Behagragam Aditalam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 11:10 पर समय होगा आपकी फरमाइश कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
3: पश्चिम बंगाल सरकार

0: अपने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Mr. Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long. Defence Minister Rajnath Singh today said that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. Mr. Rajnath Singh said this while addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth Project 17.